मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की दूसरी तिथि तदनुसार 24 जुलाई सन 2026 स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 6 बजने वाले हैं, लीजिए सुनिए समाचार जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने से कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर और जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना थी कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए और तत्काल परीक्षाएं आयोजित करना जरूरी था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक छोटा मुद्दा नहीं है और ये लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों से फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
2: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अपना अनशन समाप्त किया। वांगचुक की पंक्ति गीतांजलि आंगमू और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे थे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। एक सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने ईश्वर से श्री वांगचुक के स्वस्थ बने रहने की प्रार्थना की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान और मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर

इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पाकिस्तान से संचालित 480 सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया गया है। पुलिस के अनुसार ये हैंडल छात्रों और युवाओं को गुमराह करने के लिए अफवाहें और झूठी जानकारी फैला रहे थे। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया 7 दशकों से अधिक समय से घनिष्ठ और स्थायी मित्रता साझा करते आ रहे हैं, जो आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंबंधों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि भारत रोमानिया साझेदारी समय के साथ लगातार मजबूत हुई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उन्होंने और राष्ट्रपति निकोसो डैन ने सार्थक और उपयोगी चर्चा की और हाल के वर्षों में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक सुविधा और एआई जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत ने मानवाधिकारों का सम्मान करने और सभी के लिए अवसर सृजित करने वाली सुरक्षित, समावेशी और न्याय संगत खेल प्रणालियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल में खेल प्रशासन, खिलाड़ी कल्याण और संस्थागत क्षमता के विस्तार के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहन ने किया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने कल शाम हरारे में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियो वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05 हो रहे हैं। ये वक्त है भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना का। श्रोताओं, लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। श्रोताओं, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। शंकर भगवान को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती है, वो सिर्फ एक लोटा जल और एक बेलपत्र से ही खुश हो जाते हैं। और आराधना कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल के स्वर में गाए इस भक्ति रचना को।

भोलेनाथ हमें जीवन में धैर्य, कर्म और भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। बाबा का आशीर्वाद हर मुश्किल परिस्थिति में साहस देता है। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं हरिहरण के स्वर में गए इस भक्ति रचना को।

0: ना कार्यक्रम में रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, अपने रेडियो सेट के रहिएगा करीब।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: संदेश के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आकाशवाणी की प्रयागराज केंद्र में। और श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। ओम में ही आस्था, ओम में ही विश्वास, ओम में ही शक्ति, ओम में ही सारा संसार, ओम से ही होती अच्छे दिन की शुरुआत। श्रोताओं, जय शिव शंकर। और अब हम आपको सुनवाते हैं सोनू निगम के स्वर में गाए इस भक्ति रचना को।

0: श्रोताओं, इसी भक्ति संगीत के साथ आराधना कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा। गांधी चर्चा कार्यक्रम में आज आप बापू के बारे में पंडित गोविंद बल्लभ भाई पंत के विचार सुनेंगे।
1: आज के ही दिन 5 साल महात्मा गांधी का निधन हुआ था। तब से 365 दिन व्यतीत हो गए। प्रतिदिन महात्मा जी की हम लोग याद करते रहे। हर एक कदम में, हर क्षण में हमको महात्मा जी की अनुपस्थिति से जो क्षति और हानि हुई उसका बोध होता रहा। उनके न होने से जितने जटिल और कठिन प्रश्न हमारे सामने आए, उनको यदि वह होते तो हम किस तरह से हल करते, यह हर एक के मन में विचार प्रतिदिन आते रहे। आज हम महात्मा जी की प्रथम वर्षी को मना रहे हैं। यह अवसर है जब हमको सबको महात्मा जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। आज महात्मा जी के चर्चा को सभी लोग कर रहे हैं। आज प्रातः काल से इस समय तक जहाँ भी जावें राम धुन सुनाई देता है, या महात्मा जी के जीवन चरित्र की गाथाएं और महात्मा जी के उपदेशों की बातें सब जगह सुनने में आती। ऑल इंडिया रेडियो से और रेडियो के और स्टेशनों से भी महात्मा जी के ही बारे में हम लोगों को बहुत सी बातें फिर याद कराई जा रही हैं। अभी अभी यहाँ लखनऊ में भी इसका आज का कृत्य मनाया गया। करीब 2 घंटे हुए दिल्ली में भी आज राजघाट में बड़ा भारी जनसमूह उमड़ कर जमा हुआ था। करीब 4 बजे आज मुझे भी राजघाट में जाकर महात्मा जी के चरण कमलों की स्मृति में पुष्पांजलि अर्पित करने का अवसर मिला था। यहाँ पर आज हम फिर महात्मा जी ने जो हमारा उपकार किया, जो महात्मा जी ने हमारे देश को और संसार को वरदान दिया, और ऐसे समय में जबकि सर्वत्र कलह की, एटम बम की, आपस में संग्राम और युद्ध और एक दूसरे के

शोषण की बातें चल रही थी। एक महान आत्मा ने इस संसार में आकर हमको सच्ची विभूतियों का बोध कराया और बतलाया कि किस तरह से हमारा और संसार का कल्याण हो सकता है। महात्मा जी के कोटि के उच्च पुरुष संसार में बहुत ही कम पैदा होते हैं और यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश ने जिसने कि राम और कृष्ण को, गौतम बुद्ध को, पाणिनि वाल्मीकि को और अनेक क्षेत्रों के नायकों को उत्पन्न किया, उसी देश ने इस युग में जबकि हम अंधकार में पड़े हुए थे, जब हम पराधीनता की बेड़ियों से जकड़े हुए थे, हमारे प्राण और रक्षा के लिए महात्मा गांधी को जन्म दिया। महात्मा गांधी ने हमको पराधीनता से मुक्त कराया। उन्होंने इस जर्जरित और मूर्छित देश में नवजीवन का संचार कराया, एक नई बिजली पैदा कर दी और जो लोग असहाय पड़े हुए थे, जिनको अपना भविष्य कुछ दिखता नहीं था, उनको फिर सजीव करके, उनकी आत्मा को सजग करके भारत को स्वतंत्र कराया। पर स्वतंत्रता ही नहीं, महात्मा जी का क्षेत्र तो असीम था, बड़ा विस्तृत था। उसमें जितने भी शुभ कार्य हो सकते थे उन सब का सम्मिश्रण था। महात्मा जी ने हमारे समाज में एक उथल पुथल पैदा की। वो उन्होंने एक सबसे बड़ी क्रांति हमारे देश में उत्पन्न की, पर उस क्रांति को एक माधुरी से, एक प्रेम से और एक अद्भुत अलौकिक रीति से उन्होंने उत्पन्न किया। उन्होंने हमारे देश में केवल यही नहीं कि हमें स्वतंत्र कराया, पर उन्होंने भारतीयता का पुनरुद्धार किया। उन्होंने ऐसे समय में जबकि हम लोग अपने भूतकाल को बिल्कुल भूल चुके थे, जबकि हमको यह मालूम होता था कि दूसरों पर ही निर्धारित होकर, दूसरों पर ही निर्भर रहकर हम अपना भला कर सकते हैं, यह बतलाया कि भारत की एक आत्मा है, भारतीयता एक सजीव स्रोत है जिसके अमृतपान से प्रत्येक भारतीय अपने को भी अमर कर सकता है, अपने देश को अमर कर सकता है और संसार को भी जागृत और उच्च कर सकता है। उस भारतीयता का पाठ महात्मा जी ने हमको पढ़ाया और उन्होंने हमको बतलाया कि सच और अहिंसा के ही आधार पर हमारे देश का और संसार का कल्याण हो सकता है। ऐसे समय में जबकि एटम बम का आविष्कार हो रहा था, जबकि संसार में विध्वंसकारी आयोजनों को उत्पन्न करने में औरों की सारी शक्ति लगी हुई थी, भारत ने एक ऐसे महापुरुष को उत्पन्न किया जिसने संसार को बतलाया कि इस किस्म के खूनरेजी से, रक्तपात से कोई भला नहीं हो सकता। केवल शांति के आधार पर, केवल अहिंसा के आधार पर, केवल आपस के सद्भाव से ही संसार का कल्याण हो सकता है। महात्मा जी भारत के महान रत्न थे, पर महात्मा जी का क्षेत्र सारा संसार था। वो सारे मानव समाज के हितैषी थे। वो ईश्वर पर अटल विश्वास रखते थे और उनके सामूहिक प्रार्थना में सभी धर्म ग्रंथों की चर्चा होती थी। वो गीता के अनाशक्ति योग का पाठ रोज कराते थे, पर उसी के साथ साथ बाइबिल, कुरान, दंडावस्था आदि और भी धार्मिक ग्रंथों का वहाँ पर पाठ हुआ करता था। वो सब धर्मावलंबियों से एक सा प्रेम करते थे। वो संसार के सभी देशों के रहने वालों के हित को चाहने वाले थे। वो खासकर जो लोग पिछड़े हुए थे और जहाँ भी जो संकट और दुख में थे उनको सहायता पहुँचाना चाहते थे। यही उन्होंने अफ्रीका में किया, यही उन्होंने भारत में किया। वे दरिद्र नारायण के उपासक थे और इस देश में सबसे जो पिछड़े हुए दलित जाति के लोग थे उनको उन्होंने सबसे अधिक अपनाया, उनके साथ अपना विशेष संबंध स्थापित किया और हरिजन की उपाधि देकर उनको इस देश में सबसे ऊंचा करने का यत्न किया। महात्मा जी का तमाम कार्यों का आधार

सत्य पर था। वो छल और कपट को बुरा समझते थे। वो राजनीति में भी किसी कपट का स्थान नहीं रखते थे। उन्होंने हमको बतलाया और सिखलाया कि केवल सत्य के आधार पर हम अपना और संसार का भला कर सकते हैं, और यही हमें सिद्धांत अपने सामने रखना है। चाहे हम कुछ भी करें, हमें कोई छिप कर बात करनी नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा जहाँ तक हो एक समन्वय और संधि करके हमें सब कार्यों को करना है। यही भारत की प्राचीन रीति चली आई, यही महान आत्माओं का उपदेश हमारे लिए रहा, और आज भी जब हमारा देश स्वतंत्र हो रहा है, हमें इस उपदेश को अपने सामने रखना है, ताकि हमारा देश आजकल की जो पाश्चात्य जगत की गिरी हुई रीतियां हैं उनको न अपनावे, और अपने स्वतंत्रता के युग में भी अपने प्राचीन आध्यात्मिकता के आधार को अपने सामने रखकर उसी में अपने नए मंदिर की रचना करने में सफल हो। हमने

हमारा देश आजकल की जो पाश्चात्य जगत की गिरी हुई रीतियां हैं उनको न अपनावे और अपने स्वतंत्रता के युग में भी अपने प्राचीन आध्यात्मिकता के आधार को अपने सामने रखकर उसी में अपने नए मंदिर की रचना करने में सफल हो। हमने जो कुछ भी किया वह महात्मा जी के आदेश से किया। महात्मा जी के बतलाए हुए मार्ग पर जितने हम चले उतने ही सफल हुए और जब कभी भी हम उससे विचलित हुए हम गिरे। हमारा कल्याण महात्मा जी के बतलाए हुए मार्ग पर चलने से ही हो सकता। महात्मा जी ने हमसे कहा, बार बार कहा कि सांप्रदायिकता को जगह मत दो, इससे कोई लाभ और हित नहीं होगा, फिर से वाराना बातों से नुकसान होता है। हिंदू मुसलमान ईसाई सब में एकता होनी चाहिए, पर एक ऐसे समय में जबकि एक तरह का पागलपन हमारे देश में छा गया, उनके इन सब उपदेशों को लोगों ने ठुकरा दिया और परिणाम क्या हुआ आप जानते हैं। लाखों हमारे भाई अपने घरों को छोड़कर दूर दूर आए, लाखों को हर तरह के कष्ट पहुँचे और आज भी लाखों हर तरह की व्यथा उसके कारण भुगत रहे हैं। कई स्थानों में हजारों मारे गए, परंतु ऐसी अवस्था में भी जबकि मार काट यूं चल रही थी, महात्मा जी निर्भीक होकर जहां मुसलमानों के अड्डे थे उन जगहों में जाते थे और उन्होंने पूर्वी बंगाल में क्या किया, उन्होंने कलकत्ते में क्या किया, उन्होंने दिल्ली में क्या किया, उससे आप सब परिचित हैं। फिर महात्मा जी ने हमारे देश का उपकार अपने जीवन का प्रतिक्षण देकर किया और वही उपकार महात्मा जी ने अंत में अपने जीवन का बलिदान देकर किया। हमारा देश बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो जाता, हमारी स्वतंत्रता दो दिन का स्वप्न होकर दूर होकर गायब हो जाती, परंतु महात्मा जी ने रक्षक के तौर पर हमारा त्राण किया और हमारे 30-40 करोड़ नर नारियों के रक्षा को का भार अपने ऊपर लेकर इस संसार में हत्या को भी सहन किया और हमें वो उपदेश दे गए जो कि उनकी अमर कीर्ति को बनाए रखेगा। परंतु हमें ऐसे अवसर पर जबकि हम महात्मा जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके उपदेशों को सामने रखकर उनके अनुसार चलने का यत्न करना। आज हमको कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की ओर से जो संदेशा मिला है उसको सामने रखना है। सर्वोदय दिवस के तौर पर आज के दिन हमको बतलाया गया है कि हम सबको अपने अपने तौर से कार्य करना है। महात्मा जी किसी से घृणा नहीं करते थे, किसी से बैर नहीं रखते थे। यदि किसी बात से महात्मा जी को दुख और वेदना सबसे अधिक होती थी तो वह अकर्मण्यता से, भीरुता से और ऐसी बातों से जिससे कि मनुष्य ऊंचा उठने के बजाय नीचा गिरे। इसलिए हमको महात्मा जी के उन उपदेशों को सामने रखकर साहस से कार्य करना है, पर कार्य करना है। महात्मा जी कर्मयोगी थे और उन्होंने हमें कर्म का पाठ पढ़ाया। एक क्षण भी किसी को खराब करना नहीं है। अपने जीवन का प्रतिक्षण जो कि सबसे बहुमूल्य वस्तु मनुष्य के लिए है उसको सत्कार्य में लगाना। और हमें यह याद रखना है कि महात्मा जी जब युद्ध भी करते थे, जब वह सत्याग्रह करते थे, तब भी वह शांति को बनाने में अपनी सारी शक्ति लगाते थे और कहीं भी जरा अशांति होती थी तब आंदोलन को स्थगित कर देते थे। अब जबकि हम स्वतंत्र हो गए हैं, हमें यह भूलना नहीं है कि केवल शांति और अमन के ही आधार पर हम अपने समाज का निर्माण कर सकते हैं। और इसको भी याद रखना है कि महात्मा जी का सबसे ज़्यादा जोर था रचनात्मक कार्य पर। महात्मा जी घरेलू धंधों को, ग्रामोद्योगों को और सब चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते थे और वह चाहते थे कि और भी कुछ न हो तो मनुष्य कम से कम एक घंटे तो चरखा तब भी चला ले, परंतु कभी कोई अकर्मण्य होकर न रहे। इसलिए आज जब भारत में हमको बहुत सी चीज़ों का उत्पादन करना है
जबकि हर एक

0: की कमी है। प्रत्येक स्त्री और पुरुष को इस बात का ध्यान रखना है कि महात्मा जी के उपदेश को सामने रखते हुए वह अपने प्रशिक्षण का सदुपयोग करे और कुछ न कुछ उत्पादन करने में वह अपने समय को लगावे। ऐसे समय में हमको याद रखना है कि महात्मा जी का भारतीयता पर अटल विश्वास था। महात्मा जी का धर्म था भारतीय संस्कृति। उस संस्कृति में, उसके शुद्ध प्रवाह में जितनी भी आज तक यहाँ नदियाँ आईं, जितनी भी छोटी छोटी धाराएं आईं, वो सब मिश्रित हो गईं और आज हजारों बरस का हमारा पुराना संस्कृति का जो अमृत का प्रवाह हो रहा है, उसका पवित्र जलपान हरेक को करना है और सबको यह समझना है कि प्राचीन काल से लेकर वैदिक समय से लेकर जब राम और कृष्ण, गौतम बुद्ध और अशोक, हर्षवर्धन, पाणिनि, अकबर, ये सब भारत के भारतीयता के सूत्रों के बनाने वाले और उनमें गूंथे हुए हैं।
1: श्रोताओं, गांधी चर्चा कार्यक्रम में अभी आप बापू के बारे में पंडित गोविंद बल्लभ पंत के विचार सुन रहे थे। इसी के साथ विचार बिंदु कार्यक्रम अब समाप्त क्षमा कीजिएगा श्रोताओं, इसी के साथ गांधी चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। लीजिए सुनिए कृषि जगत कार्यक्रम।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में आज हमारे किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर यतीन्द्र कुमार से मनोज कुमार सिंह की बातचीत। बातचीत का विषय है शाक सब्जियों के खेती की तैयारी और सावधानियां।
1: जो देखे कहा जाता है ना कि खान पान में साग सब्जी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, और कौने ढंग से साग सब्जी का खेती किया जाए, कौने ढंग से होकर तैयारी किया जाए, कौन कौन सावधानी रखा जाए, यह विषय में जानकारी देवे बदे आज अपने बीच आए हैं भैया, उपस्थित हैं डॉक्टर यतीन्द्र कुमार। भैया वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र प्रतापगढ़ में। तो भैया डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत बा। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहें ना कि सेहत बरे सब्जी का महत्व का बा।
2: नमस्कार किसान भाइयों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सब्जियों का हमारे जीवन में इतना ज़्यादा महत्व है कि इनसे हमको जो पोषक तत्व मिलता है ये हमको हर तरीके से रोगों से लड़ने में हमको सहायता प्रदान करता है, और साथ ही साथ हर तरीके से हमको जो पोषक तत्व मिलता है इस पोषक तत्व से हमको जैसे हमारा जो जीवन चक्र पूरा होता है।
1: बिल्कुल भाई, देखा यही लिए कहा जाता है कि साग सब्जी का बड़ा महत्व बा। अगर सेहत के बढ़िया रखे के बाद संतुलित अगर भोजन लेवे के बाद आहार लेवे के बाद तो ओके काफी पूर्णता प्रदान करत है ये सब्जी। भैया देखा ये जौन समय चलत बा, यह समय में कौन कौन सब्जी का बुआई का समय बा और ओकरी बड़े खेत का तैयारी कौने ढंग से किया जाए, कौने ढंग से किसान फसल का अच्छी तैयार कर पावे अपन फसल, आप बतावे करी बार।
2: जी किसान भाइयों, इस समय जो ये जुलाई का अंतिम और अगस्त का प्रथम जो सप्ताह चल रहा है, इस सप्ताह में हम अगर सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में बेल वाली सब्जियों में करेला है, लौकी है, नैनुआ है, कद्दू है, खीरा है, और अगर हम द्विवर्षीय सब्जियों की बात करें तो इसमें हमारा परवल है, और ये जो खिस्ता है वो आता है, कुंदरू है, ये आते हैं।
1: अच्छा अच्छा।
2: और हरी सब्जियों में हमारा ये इस समय जैसे टमाटर बैगन, इनकी नर्सरी पड़ने का समय है। दूसरा इस समय जड़ वाली सब्जियों में मूली गाजर का बहुत ही सलजम का ये समय है, और गोभी वर्गीय सब्जियों में फूल गोभी की इस समय अगेती फूल गोभी की रुपाई का समय है जिसके लिए नर्सरी तैयार की जा रही है। पत्तेदार सब्जियों में पालक और धनिया है।
1: अच्छा।
2: और बात अगर की जाए खेत की तैयारी की तो ये खेत की तैयारी बहुत ही महत्व तो रखता है, क्योंकि अगर खेत की तैयारी हमें सब्जी को लगाने से पहले नहीं अच्छी की है तो इसका उत्पादन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमको गहरी जुताई कर लेनी चाहिए।
1: अच्छा,
2: गहरी
1: अच्छा।
2: जुताई के लिए हमको 2 से 3 बार कम से कम कल्टीवेटर से जुताई करें और उसके बाद में पाटा।

0: लगा के उसको भुरभुरा बना ले। अंतोगत्वा उसमें गोबर की खाद लास्ट जुताई के समय हमको 8 से 10 टन प्रति एकड़ के हिसाब से मिला लेनी चाहिए, और जल निकास की व्यवस्था बहुत ही अच्छी रखनी चाहिए।
1: हाँ, कहें कि भाई देखा बुद्धि बरसात का समय हो तो उसे जल भराव भी हो जाते
0: जी।
1: हैं।
0: और उसके साथ ही साथ जैसे ऊंची जो क्यारियां हैं, हमको हमेशा इस गर्म जो बरसात की सब्जियां होती हैं इनको हमेशा हमको रेज्ड बेड पे हमको थोड़ा सा ऊंची हुई जो क्यारियां हैं उनमें हमको बुवाई करना चाहिए। और उर्वरकों को हमको, चूंकि हम लोग जो फॉलियर स्प्रे में स्प्रे करते हैं तो वो उर्वरक पौधों को नहीं मिलता है, तो हमको वेसल में उर्वरक को प्रयोग करना चाहिए मिट्टी में मिला।
1: अच्छा। भैया देखें, एक चीज़ कहा जाता है ना कि खेती किसानी लाभप्रद फायदेमंद तब्बे हुई जब होकर लागत कम हुई। तो भैया कम लागत में अधिक उत्पादन हो के और साथे साथे अपन जो फसल है पैदावार है ओमन गुणवत्ता ज़्यादा हो के, तो कौन कौन भैया तकनीक अपनावे किसान भाई जोने से कि लागत उनकर कम हो सके।
0: जी, किसान भाइयों के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर वो अच्छी जो गुणवत्ता युक्त सब्जियों को चाहते हैं तो उसके लिए उनको कुछ ऐसी तकनीकियां अपनानी चाहिए जिनको जिनमें सबसे पहली तकनीकी की बात करें तो मृदा का परीक्षण। ये
1: अच्छा
0: मिट्टी
1: अच्छा
0: का परीक्षण बहुत ही आवश्यक है। अगर किसान भाई मिट्टी का परीक्षण करा लेते हैं तो उससे उनको मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिल जाता है, उसके आधार पर जब उसमें पोषक तत्व का वो प्रयोग करते हैं तो हमारी फसल बहुत अच्छी रहती है। दूसरी बात, एक महत्व है कि आप बीज का चयन, किस तरह के आप बीज का चयन कर रहे हैं, क्योंकि सब्जियों में बहुत सी प्रकार के बीज आते हैं, लेकिन आपको अपने सब खेत के अनुसार और आपको समय के अनुकूल ही सब्जियों की प्रजातियों का चयन करना है।
1: जी,
0: तो दूसरी बात एक और है कि उसमें सब्जियों में जब हमको क्या क्या प्रयोग करना है, क्योंकि सब्जियां हम ऐसी हैं कि हम डायरेक्ट उनको खाते हैं, कुछ सब्जियां ऐसी भी हैं जिनको धुलने के बाद में हम डायरेक्ट खा लेते हैं, काटते हैं, सलाद के रूप में प्रयोग करते हैं, तो हमें प्रयोग रसायन को कम से कम जैविक खाद का प्रयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो हमको
1: हाँ
0: हमेशा जैविक खाद का प्रयोग करना है, जिसके लिए 8 से 10 जो है सड़ी गोबर की खाद का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, और हमेशा पोषक तत्वों को मृदा परीक्षण के आधार पर एवं संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन का प्रयोग करना चाहिए। तीसरी एक तकनीक है कि आपको हमेशा जब भी सब्जियां लगानी है तो सब्जियां लगाने के लिए हमको जल निकास के साथ में हमको रेज्ड बेड, उठी हुई क्यारियों का प्रयोग करना है।
1: अच्छा,
0: उठी
1: मतलब
0: हुई,
1: तो से उचास पर
0: हाँ,
1: रहेगी
0: हल्का
1: बिल्कुल।
0: सा उठी हुई क्यारियां जब हम प्रयोग में जब उनमें सब्जियां लगाते हैं तो हमारी सब्जियों की जो नर्सरी है उसमें जल भराव की स्थिति नहीं रहती है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पौधे का अच्छा विकास होता है। और साथ ही साथ हमको इसमें रेज बेड के साथ में एक मल्चिंग तकनीकी है जिसमें उठी हुई क्यारियों को हम मल्चिंग करते हैं, उनकी क्यारियों के ऊपर हम पूरी एक पॉलीथीन से या कोई जैविक जैसे हमारा पुआल है इससे हम उसको कवर करते हैं, मल्च कर देते हैं, ताकि हमारे खरपतवार ना हो, हमारे पोषक तत्वों का ह्रास ना हो और नमी का भी किसी तरीके से ह्रास ना हो। साथ ही साथ हमको पोषक तत्व प्रबंधन में सूक्ष्म पोषक तत्वों पर भी बहुत विशेष ध्यान देना होता है।
1: हाँ, बिल्कुल भैया। तो भैया हम कहीं कि देखा अगर यह तरीके से लोग तकनीक का ध्यान दें तो निश्चित रूप से उनकर पैदावार बढ़िया हुई और लागत भी कम हुई। भैया प्रमुख किस्म कौन कौन बाज उनसे कि ज़्यादा उत्पादन होते हैं।
0: जी, इस समय खास तौर से अगर बात की जाए तो ये जो समय चल रहा है ये फूल गोभी की नर्सरी डालने का समय चल रहा है, तो अगेती फूल गोभी की अगर प्रजाति की बात करें तो इसमें पूसा दीपाली है, पूसा मेघना है, पूसा शरद है, पूसा कार्तिकी है, पूसा और ये अगहनी है, पंत गोभी 3 है, पूसा सिंथेटिक है, और ये समर क्वीन है, पूसा स्नोवाल के वन है। ये प्रजाति ऐसी है पूसा स्नोवाल की, ये अगर धूप पड़ती है तो इसकी पत्तियां अपने से इसके कर्ण को कवर कर लेती हैं।
1: अच्छा,
0: और इसके साथ में अगर बात, चूंकि नर्सरी इस समय टमाटर की भी पड़ रही है, तो नर्सरी की बात की जाए तो इस समय टमाटर की प्रजातियों में काशी विशेष है, लालिमा है, पंत टमाटर 3 है, और काशी अमृत है, पूषा रूबी है, पंत बहार है, अर्का सौरभ है, अर्का विकास है। ये प्रजातियाँ बहुत अच्छी हैं जो देसी प्रजातियाँ हैं। और
1: बिल्कुल भैया हम कहीं कि देखा अगर ये प्रजाति का लोग चयन करिए तो निश्चित रूप से उनका पैदावार बढ़िया हुई। सबसे जरूरी होता है रोग और कीट का नियंत्रण। तो भैया कौन कौन एमन रोग लग सकते हैं, कौन कौन कीट का, और कौन ढंग से होकर उपचार करे, बचाव करे, का सावधानी रखे किसान भाई।
0: ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब हमारी फसल तैयार हो जाती है तो क्या होता है कि बहुत से रोग एवं कीट हमारी किसान की फसल पर अपना प्रकोप हो जाता है, तो ऐसी

0: से बचने के लिए हमको विशेष ध्यान देना है कि हमको रोग और कीटों से पहले से सावधानी रखनी है। इसके लिए जैसे रोगों की बात करें तो सब्जियों में और इस बरसात की सब्जियों में खास तौर से एक रोग आता है डैम्पिंग ऑफ, जो नर्सरी का गलन बोलते हैं, पौध गलन, और ये बहुत ही ज़्यादातर नर्सरी में ही आ जाता है। तो इससे बचाव के लिए हमको हमेशा थोड़ा सा मृदा का शोधन करके ही नर्सरी को डालना चाहिए। दूसरा रोग एक झुलसा भी आता है इसमें, जो झुलसा खास तौर से ये सोलेनेसी जो फैमिली के पौधे होते हैं, जैसे ये आपका टमाटर है, मिर्च है, बैंगन है, इनकी जब नर्सरी में बड़े हो जाते हैं, जब पौधा मेन फसल में लगाते हैं, तो वहाँ ये झुलसे का प्रकोप भी आता है, तो इसका भी बचाव रखना होता है। दूसरा एक पाउडरी मिल्ड्यू भी इस फसल में आता है, इस सीजन की फसलों में, और डाउनी मिल्ड्यू है, जीवाणु झुलसा भी आता है, कुछ वायरस रोग भी आ जाते हैं। साथ ही साथ कीटों में ज़्यादातर अगर देखा जाए तो सफ़ेद मक्खी है और माहू आ जाता है। सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण को बहुत ही
1: बिल्कुल भैया,
0: ध्यान
1: देखा
0: रखना
1: काफ़ी जो
0: चाहिए।
1: है कि नुकसानदायक होता है। भैया डॉक्टर यतेंद्र कुमार आप आएन और साग सब्जी का खेती कोने ढंग से किया जाए, कोने ढंग से तैयारी किया जाए, ये विषय में बहुत अच्छी जानकारी दिए। आपके जानकारी के बदले बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे शाक सब्जी की खेती की तैयारी और सावधानियां, और इस विषय पर डॉक्टर यतेंद्र कुमार से बातचीत किया मनोज कुमार सिंह ने। इसी के साथ कृषि जगत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। लीजिए सुनिए स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज आप डॉक्टर नीरज शर्मा की वार्ता सुनेंगे। वार्ता का विषय है डेंगू और चिकनगुनिया का आयुर्वेदिक उपचार।
1: डेंगू तथा चिकनगुनिया बुखार एक वायरल ज्वर है। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी आम भाषा में कहा जाता है। यह एक संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे में आसानी से फैलता है। यह फ्लेवी तथा एल्फिनोरिन नामक वायरस से होता है। डेंगू ज्वर तो एडीज नामक मच्छर के द्वारा फैलता है जो वर्षा ऋतु में अधिक पाया जाता है। यह जल भराव वाली जगह जैसे डिब्बे आदि में गंदे पानी रहने के कारण या पुराने टायर, नारियल के खोल आदि में बहुत तेजी से पनपते हैं। इसके अंडे पृथक पृथक व सिगार की आकृति के होते हैं। प्रौढ़ मच्छर गहरे काले रंग का होता है और शरीर पर तथा उसकी टांगों पर सफ़ेद धारियां होने के कारण उसे आम भाषा में लोग टाइगर मच्छर भी कहते हैं। डेंगू हो या चिकनगुनिया, इसके ज्वर एकाएक चढ़ता है तथा यह चार या पाँचवें दिन कुछ कम होकर एक दो दिन में धीरे धीरे उतर जाता है और इसके पश्चात एकाएक शीत लगकर ज्वर चढ़ता है। ज्वर के साथ साथ कनपट्टियों की शाखागत अस्थियों एवं शरीर की अन्य अस्थियों में तीव्र पीड़ा होती है। ऐसा लगता है जैसे हड्डियां टूटी जा रही हों। अस्थियों के संधि स्थल सूज जाते हैं। चलने फिरने में या उठने बैठने में अधिक पीड़ा होती है। ज्वर तीव्र होता है तथा उल्टी भी महसूस होती है। सिर दर्द, निद्रानाश, बेचैनी के लक्षण दिखने लगते हैं। दर्द हाथ की अंगुलियों से प्रारंभ होकर एक स्थान से दूसरे में हट हट कर होने लगता है। रोगी को पीड़ा सहन नहीं होती है। उसकी जांघों में भी असहनीय दर्द होता है। चेहरा रक्तिम तथा आंखें लाल हो जाती हैं। ज्वर तीसरे दिन उतर जाता है परंतु पुनः दो या तीन दिन पश्चात फिर चढ़ जाता है। इस बीच एक रोमांतिका रूपी विस्फोट हाथ या पैर के पृष्ठ भाग में निकल आता है और ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। कभी कभी नाक या अन्य स्थान से रक्तस्राव भी होने लगता है। हेमरेजिक डेंगू एक गंभीर किस्म है जो बच्चों को प्रभावित करती है। जब रोगी चिकित्सा के अभाव में शॉक की स्थिति में आ जाता है तो रोगी को जान का खतरा भी हो सकता है। वैसे यह रोग प्रायः सभी उम्र के व्यक्तियों में हो सकता है। रोग की पहचान लक्षणों के आधार पर आसानी से हो जाती है, परंतु रक्त परीक्षण में श्वेत कोशिकाएं अल्प रूप में मिलती हैं। रोगी में प्लेटलेट्स की मात्रा काफ़ी तेजी से गिरने लगती है। सामान्य व्यक्ति में प्लेटलेट्स 2 लाख के ऊपर होता है, परंतु यदि यह गिरते गिरते 25,000 से 30,000 तक आ जाए तो यह जानलेवा भी हो सकता है, परंतु उचित उपचार मिलने पर यह प्लेटलेट्स बहुत तेजी से बढ़ता है। आवश्यकता पड़ने पर रोगी को प्लेटलेट्स चढ़ाया भी जाता है। डेंगू ज्वर तथा चिकनगुनिया का आयुर्वेद का उपचार भी बहुत कारगर सिद्ध होता है। पपीते की पत्ती को डंठल से अलग कर लें और उन पत्तियों को पीसकर उसका जूस 2-2 चम्मच दिन में 3 बार देने से 3 से 6 घंटे में ही प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ने लगती है। मकरध्वज

0: बसंत माल्ती 60-60 मिलीग्राम, प्रत्येक प्रवाल पिष्टी 125 मिलीग्राम, नवायस लौह 250 मिलीग्राम, सीतोपलादी 1 ग्राम की एक एक मात्रा शहद में मिलाकर सुबह शाम देना चाहिए। इसके उपरांत भोजन के बाद अश्वगंधा रिष्ट या द्राक्षसों के 2-2 चम्मच बराबर जल में मिलाकर देना चाहिए। दर्द वाले जोड़ों पर लहसुन को पीसकर उसमें लौंग का तेल मिलाकर कपड़े की सहायता से बांधने पर संधिशोथ तथा दर्द में आराम मिलता है। अंगूर को गाय के गुनगुने दूध के साथ पीने पर चिकनगुनिया के वायरस मर जाते हैं। तीव्र ज्वर होने पर सिर पर बर्फ की थैली रखनी चाहिए। बेताल रस 120 मिलीग्राम, मृत्युंजय रस 120 मिलीग्राम, कृष्ण चतुर्भुज भुज रस 120 मिलीग्राम, गुड़ची सत्व 500 मिलीग्राम की 3 मात्राएं बनाकर इसे भुनी अजवाइन के चूर्ण में मधु मिलाकर दिन में 3 बार देना चाहिए। ज्वर मोक्ष के बाद पौष्टिक और बलकारक योगों का प्रयोग करना चाहिए। शरीर में जल की कमी होने पर रोगी को तरल पदार्थ जैसे फलों का रस, नारियल का पानी, दूध आदि देना चाहिए। शारीरिक दुर्बलता पर नियंत्रण हेतु सुपाच्य पौष्टिक आहार जैसे दलिया, चावल, आलू, दालें, फल आदि देना चाहिए। कच्ची गाजर खाने से रोगी को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। रोग की समाप्ति पर 1-2 सप्ताह तक रोगी को कोई भी शीतल खाद्य या पेय पदार्थ नहीं देना चाहिए। डेंगू फीवर में विटामिन सी की मात्रा जैसे आंवला, मौसमी, संतरा अधिक मात्रा में लेना चाहिए। इससे उसका सुरक्षा चक्र मजबूत होता है, इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है। डेंगू फीवर में गिलोय और बेल की डंडी को पीसकर उसका रस देने से भी प्लेटलेट्स की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ती है।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप डॉक्टर नीरज शर्मा की वार्ता सुन रहे थे। वार्ता का विषय था डेंगू और चिकनगुनिया का आयुर्वेदिक उपचार, और इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। सबसे पहले हम आपको जानकारी दे दें दिल्ली केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। संसद समीक्षा सुनिएगा रात 8 बजे, रात 10 बजे संसद में प्रश्नकाल के कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनिएगा। दोनों कार्यक्रम का प्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। और अब लीजिए सुनिए प्रयागराज केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। श्रीरामचरितमानस से संगीत मय पाठ सुनिएगा सुबह 7 बजे, और फिल्मों से भजन कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा 7:10 पर। सुबह 7:30 बजे, दोपहर 12:15 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप ऋषि मिश्रा का ख्याल गायन सुनेंगे। नमस्कार प्रयागराज कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा सुबह 8:45। प्रस्तुति अभयकांत तिवारी की है। सुबह 9:50 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप मल्लिका चटर्जी के स्वर में गाए भजनों का आनंद लेंगे। वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम का वक्त होगा सुबह 10:05। सुबह 10:30 लोकगीत कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं विष्णु राजा, प्रभा सिंह और विभय शंकर और साथी। एक ही कलाकार कार्यक्रम सुनिएगा दिन में 11:00। प्रस्तुति दीपक राय की है। दिन में 11:30 आप सुनेंगे यूथ एक्सप्रेस कार्यक्रम। आपके फरमाइशी गीतों के साथ हम उपस्थित होंगे दोपहर 12:30 कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। प्रस्तुति मधु कुमार की है। दोपहर 1:15 हेलो गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में शेरशाह और बाटला हाउस के फिल्म के गीतों का आनंद लीजिएगा। श्रोताओं दोपहर 1:15 हेलो गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में आप फोन कर सकते हैं।

0: शाम 5 बजे नैनी दुनिया कार्यक्रम में बच्चे सुनेंगे अच्छे श्रोता बनो, साथ ही जानेंगे क्यों चुंबक लोहे को खींचता है लेकिन लकड़ी को नहीं। शाम 5:15 बजे युवाणी कार्यक्रम में चर्चा होगी युवाओं में बढ़ता अवसाद पर। प्रेरणा पुंज में विक्रम साराभाई पर होगी बातचीत। पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 बजे किसान भाई बात सुनेंगे आयकर दिवस पर। लोकगीत सुनेंगे छेदीलाल और साथियों के स्वर में। शाम 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम में डॉक्टर मनीष जुगरान की वार्ता कौटिल्य अर्थशास्त्री सैन्य विज्ञानम आप सुनेंगे। रात 8:30 बजे अंग्रेजी कार्यक्रम में वार्ता सुभाष चंद्र बोस द विजनरी लीडर ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल आप सुनेंगे। टाकर हैं कस्तूरी डे। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणस्य अनन्तरं गत अर्धत्रिमासे अनेके महत्वपूर्णाः उपायाः कृताः। दोषिणः गृहीत्वा कारागारे स्थापिताः सन्ति। गतरात्रौ प्रसारिते एकस्मिन् दृश्य श्रव्य सन्देशे श्रीमोदी अवदत् यत् प्रशासनस्य प्रथमं उत्तरदायित्वं विद्यार्थिनां शैक्षणिकवर्षस्य संरक्षणम् आसीत्। अत एव परीक्षाणाम् अविलम्बेन आयोजनम् अत्यावश्यकम् आसीत्। असौ एतदपि उक्तवान् यत् प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशनं न लघु विषयः, अपि तु एतेन लक्षशः विद्यार्थिना तेषाम् अभिभावकाश्च अत्यन्तं पीडिताः अभवन्। रोमानिया देशस्य आधिकारिक यात्रारता राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य बुखारेस्ट नगरस्य विक्टोरिया पैलेस इत्यत्र रोमानिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणा इली बोलोजान इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। सा रोमानिया देशस्य राष्ट्रपतिना निकुसोर दारी इत्यनेन सह भारत रोमानिया बिजनेस फोरम सम्मेलनम् अपि सम्बोधयिष्यति। तदनन्तरं राष्ट्रपतिः मुर्मुः रोमानिया देशस्य संसदि गमिष्यति, यत्र सा सिनेट इत्यस्य अध्यक्षा मर्सिया अब्रुडीन तथा चेम्बर ऑफ डेप्यूटीज इत्यस्य अध्यक्षा सोरिन ग्रिंडेनु इत्यनया च सह वार्तालापं करिष्यति। दिल्ली उच्च न्यायालयेन सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 इत्यस्य अन्तर्गतं प्रकरणानां श्रवणार्थं तक्षण प्रभावेण नूतनः फास्ट ट्रैक इति शीघ्र न्यायालयः स्थापितः। उच्च न्यायालयस्य अधिसूचनानुसारं राउज एवेन्यू न्यायालये न्यायाधिकारिणः अनु ग्रोवर बलीगा इत्यस्याः न्यायपीठं विशेषरूपेण नाम निर्दिष्टः शीघ्र न्यायालयः भविष्यति। अत्र सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम संबद्ध प्रकरणानां तथा तैः सह संबद्धानां अपराधानां श्रवणं भविष्यति। 30,000 न्यायालयस्य मध्यस्थता केन्द्रस्य प्रभारयुक्ता न्यायाधीशा अनु ग्रोवर बलीगा अस्य प्रयोजनस्य कृते विशेष न्यायाधीशरूपेण राउस एवेन्यू न्यायालयं स्थानान्तरिता। अस्य निर्णयस्य उद्देश्यं सार्वजनिक परीक्षासु अनुचित साधन संबद्ध प्रकरणानां शीघ्र निर्णयं सुनिश्चेतुम् अस्ति। एषा अधिसूचना प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणेषु संलिप्तानां व्यक्तिनां शीघ्रं कठोर दण्ड विधानार्थं शीघ्र न्यायालय स्थापनायाः घोषणानन्तरं कतिपय होरानन्तरम् एव प्रख्यापिता। केन्द्रेण विभिन्नेषु मन्त्रालयेषु विभागेषु च सचिवाः नियुक्ताः सन्ति। विनीत जोशी यः सम्प्रति शिक्षामन्त्रालयस्य उच्चशिक्षासचिवः अस्ति, सः पञ्चायतीराजमन्त्रालयस्य सचिवः अभवत्।

0: नरेशपालः गंगवारः नूतनः उच्चशिक्षा सचिवः भविष्यति। टीके अनिलकुमारः विद्यालय शिक्षायाः साक्षरतायाः च सचिवः भविष्यति। आवासन नगर कार्य विभागस्य सचिवः कटी किथला श्रीनिवासः पूर्वोत्तर क्षेत्रस्य विकास मंत्रालयस्य सचिवत्वेन नियुक्तः अभवत्। केशवचंद्रा इत्येषः खनन मंत्रालयस्य सचिवः भविष्यति। चंद्रभूषण कुमारश्च श्रमाजीविका मंत्रालयस्य सचिवः भविष्यति। सुशील कुमार लोहानी इत्येषः पशुपालनस्य दुग्ध व्यवसायस्य च सचिवः भविष्यति। सतेन्द्र सिंहः नगर विकास विभागस्य सचिवत्वेन भविष्यति। पीयूष गोयलः राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगस्य महासचिवः भविष्यति। मंत्रिमंडलस्य नियुक्ति समित्या एतेषां नियुक्तिः स्वीकृता अस्ति। दिल्ली मेट्रो रेल निगमः DMRC इत्येषः सूचितवान् यत् अद्य प्रातः 7:30 राष्ट्रिय राजधान्यां सुरक्षाकारणात् अग्रिम निर्देशपर्यन्तं 17 मेट्रो स्थानकानि पिहितानि भविष्यन्ति। एतेषु स्थानकेषु लोककल्याणमार्गः राजीव चौक पटेल चौक आश्री रामकृष्ण आश्रम मार्गः बाराखंभा मार्गः सर्वोच्च न्यायालयः सेवातीर्थादि स्थानकानि सन्ति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं सुबह के 7 बज रहे हैं, लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ। गायक कलाकार हैं सुरेश वाडेकर और संगीत दिया है सतीश भाटिया ने।

श्री रामचरितमानस की रचना के प्रारंभिक प्रसंगों में व्यास आदि श्रेष्ठ कवियों की वंदना करते हुए तुलसीदास ने रामायण के प्रणेता ऋषि वाल्मीकि के चरणों में सिर नवाया है। कहते हैं आदि कवि के रामायण खरदूषण सहित होने पर भी अत्यंत सुंदर और सर्वथा दोष रहित है। भक्त कवि ने फिर चार वेदों की वंदना की है जो भव सागर पार करने के लिए जलयान के समान है। साथ ही प्रणम में है ब्रह्मा जिन्होंने भव सागर की रचना की, जिसमें से एक ओर अमृत चंद्रमा तथा कामधेनु जैसे जीवनदायी निकले तो दूसरी ओर मनुष्य रूपी विष तथा मदिरा। तुलसीदास को विश्वास है कि देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके ही उनके मनोरथ पूरे होंगे। सरस्वती देव नदी गंगा शिव पार्वती आदि के सम्मुख सिर नवाकर ही वो श्री राम के निर्मल चरित्र का वर्णन कर सकेंगे, तभी उनकी भाषा तथा कविता का जो प्रभाव उन्होंने कहा है सत्य हो सकेगा।

श्रोताओं, अभी आप श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ सुन रहे थे। गायक कलाकार थे सुरेश वाजिकर और संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। और अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्मों से भजन कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला भजन हम आपके लिए लेकर आए हैं शागिर्द फिल्म से, और इस भजन को अपनी खूबसूरत सी आवाज़ से सजाया है लता मंगेशकर जी ने। मजरू सुल्तानपुरी जी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया है। तो ये भजन चला आपके रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, दिन की शुरुआत अगर भजन से की जाए तो पूरा दिन सुख और शांति से व्यतीत होता है। और इसी क्रम में हम आपको सुनवाते हैं लगान फिल्म का ये भजन। इस भजन को अपने स्वर से सजाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण जी ने। जावेद अख्तर जी की रचना है, AR रहमान ने संगीत दिया है।

0: साथ फिल्मों से भजन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। वीडियो संदेश जारी कर इससे संबंधित बिल को यथाशीघ्र सदन में पारित कराने के प्रयासों के प्रति जताई सरकार की प्रतिबद्धता। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 6-लेन फ्लाईओवर सहित 995 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से समृद्ध होगा प्रदेश। और बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने से गंगा, घाघरा और शारदा नदी उफान पर। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई हिस्सों में जताया बारिश का पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने कल मध्यरात्रि एक वीडियो संदेश जारी करके इस मामले में सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक वीत कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो, तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही है। लेकिन हम वहाँ पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के पेपर लीक के विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के फैसले को राष्ट्र की निर्णायक आवाज बताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि नए भारत में युवाओं का हित सर्वोपरि है, उनके भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को कानून शीघ्र और कठोर दंड देगा। प्रधानमंत्री के फैसले का विद्यार्थियों ने स्वागत किया है। बाराबंकी के छात्र निहाल अग्रवाल ने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगाने की सरकार की ये पहल सराहनीय है।
3: इस चीज से मैं बहुत खुश हूँ, कम से कम सरकार अकाउंटेबिलिटी ले रही है। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि आगे चीजें ऐसी ना हो, इसके लिए मोदी

0: जिन्ना ट्वीट किया है कि वो फास्टैग कोड बनाएंगे, जो जिम्मेदार है उन पे एक्शन लेंगे। हमारी यही मांग थी कि जो भी अकाउंटेबल लोग हैं, जिनसे गलती हुई है, जिन्होंने ऐसा काम किया है, उनको सजा मिले। हमारी सरकार से यही मांग की सरकार हमारी मांग पूरी कर दे।
1: इस बीच केंद्र सरकार ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बिना समाधान नहीं निकलेगा।
2: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं, आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से अपील की है कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्दी से जल्दी अपने सामान्य वजन को प्राप्त करें। एक सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने ईश्वर से सोनम वांगचुक के स्वस्थ बने रहने की प्रार्थना की है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में 26 दिनों से चल रहा अपना उपवास समाप्त कर दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में जिले के पहले 6-लेन फ्लाईओवर के सहित 995 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 14 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आवागमन को आसान बनाने का माध्यम है।
3: ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आवागमन को आसान बनाने का एक माध्यम है। आवागमन का माध्यम जितना तेज होगा, जितना समय की बचत होगी, उतनी ही तीव्र गति से प्रगति भी होगी, और प्रगति होगी तो समृद्धि अपने आप ही आएगी, फिर समृद्धि को कोई रोक नहीं सकता है।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि नए उत्तर प्रदेश में सड़कों की कनेक्टिविटी काफी बेहतर हुई है।
3: याद करिए, हमारी लखनऊ से गोरखपुर की जो कुल दूरी हो गई है, या 3.25 घंटे के अंदर हम पूरा कर सकते हैं। 9 साल पहले, 10 साल पहले इस दूरी को तय करने में 7 से 8 घंटे लगते थे। गोरखपुर से वाराणसी की दूरी तय करने में मात्र 2.5 घंटे का समय लग रहा है। आज यहाँ से कुशीनगर की दूरी तय करने में 1 घंटा लगता है, इससे पहले लगता था 2.5 से 3 घंटा। यानी ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, रोड की कनेक्टिविटी कितनी बेहतर हुई है, यह भी आपके सामने।
1: मुख्यमंत्री गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कल से गोरखनाथ मंदिर में शुरू हुए सप्त दिवसीय श्री राम कथा के शुभारंभ कार्यक्रम में भी शामिल हुए। अयोध्या में कल विश्व हिंदू परिषद और स्थानीय संत समाज की बैठक हुई। मणिराम दास छावनी में हुई इस बैठक में श्री रामलला मंदिर की धार्मिक व्यवस्था पर भी चर्चा हुई।
4: बैठक में संतों ने ट्रस्ट द्वारा धार्मिक समिति के पुनर्गठन का स्वागत किया। बुधवार को हुई श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में मंदिर परिसर में पूजा अर्चना की परंपरागत प्रामाणिकता और शुद्धता बनाए रखने के लिए धार्मिक समिति का पुनर्गठन किया गया था। कल हुई बैठक से संत समाज ने स्पष्ट संदेश दिया कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावे में अनियमितता मामले में हो रही जाँच पर भरोसा रखा जाए और जाँच पूरी होने से पहले किसी भी निष्कर्ष न पहुंचा जाए। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
1: सावन माह में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश के कई जिलों में तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही हैं। हापुड़ में यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने 17 कांवड़ मोबाइल बाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मोबाइल बाइक पुलिसकर्मी कांवड़ मार्गों, प्रमुख चौराहों, भीड़भाड़ वाले संवेदनशील स्थानों पर सक्रिय रहकर निरंतर पेट्रोलिंग करेंगे। वहीं वाराणसी में शिव भक्तों और कांवड़ यात्रियों की संभावित भीड़ के मद्देनजर वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा, स्वच्छता, यात्रियों की सुविधाओं और भीड़ प्रबंधन के विशेष इंतजाम किए गए हैं। कल राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। कल ही के दिन

वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी पड़ा। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रसार भारती देश विदेश में दर्शकों के लिए हर तरह की मनोरंजक, सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री लाना जारी रखेगा। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर उफान पर है। बाराबंकी में घाघरा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जबकि लखीमपुर खीरी में शारदा और बदायूं में गंगा का जलस्तर भी खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित

0: वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रसार भारती देश विदेश में दर्शकों के लिए हर तरह की मनोरंजक, सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री लाना जारी रखेगा। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर उफान पर है। बाराबंकी में घाघरा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जबकि लखीमपुर खीरी में शारदा और बदायूं में गंगा का जलस्तर भी खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। वीडियो संदेश जारी कर इससे संबंधित बिल को यथाशीघ्र सदन में पारित कराने के प्रयासों के प्रति जताई सरकार की प्रतिबद्धता। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 6 लेन फ्लाईओवर सहित 995 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से समृद्ध होगा प्रदेश। और बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने से गंगा, घाघरा और शारदा नदी उफान पर। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई हिस्सों में जताया बारिश का पूर्वानुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीठी वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं सुबह के 7:30 बज रहे हैं। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप श्री ऋषि मिश्र का ख्याल गायन सुनेंगे। राग है अहिर भैरव। विलंबित ख्याल एक ताल में बोल हैं विपत हरो तुम नाथ हमारो। द्रुत रचना है तीन ताल में। बोल हैं जागो गोपाल नंद के लाल। आपके साथ तबले पर संगत किया है आरुष मिश्र ने और हारमोनियम पर हैं अनुराग मिश्र।

Say the Pamagarega, need the Pamagarega.

Sarega ma ba da ni, sarega ma bu ma ga re, sa ni da ba ma ga re.

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं अभी आप श्री ऋषि मिश्र का ख्याल गायन सुन रहे थे। राग था अहिर भैरव, आपके साथ तबले पर संगत किया था आरुष मिश्र और हारमोनियम पर थे अनुराग मिश्र। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। सुबह के 8 बजने वाले ही समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
3: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए।
5: पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक वीत कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिए गए हैं।
5: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
4: वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है।

0: दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत में लोक परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक से जुड़े मामलों की जल्दी सुनवाई के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिसूचना के अनुसार यह अदालत लोक परीक्षाएं, अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 और उससे जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई करेगी। यह अधिसूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा में पेपर लीक के मामलों में शामिल लोगों को शीघ्र और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए देश भर में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद जारी की गई। रोहन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अनशन समाप्त कर दिया। एक रिपोर्ट।
2: इस दौरान सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक ने कहा कि उन्होंने विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद अनशन समाप्त किया है। उन्होंने सभी से किसी भी प्रकार की हिंसा न होने देने के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही की मांग को लेकर अनशन पर थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशोर डांड के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट।
2: प्रेस वक्तव्य में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से ज्यादा से गहरा और मजबूत संबंध रहा है, जो आपसी भरोसे, सम्मान और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों पर टिकी है। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। बुखारेस्ट रोमानिया से शुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव होंगे। भारत ने 350 किलोग्राम के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है।

0: इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE ने विकसित किया है। एक रिपोर्ट।
1: रक्षा मंत्रालय ने कहा कि DRDO की डिजाइन पर आधारित इस जटिल प्रणाली की डिलीवरी भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दर्शाती है। ये वर्षों की सटीक इंजीनियरिंग, उन्नत विनिर्माण और भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदाय के बीच घनिष्ठ साझेदारी का परिणाम है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि जेट इंजन प्रौद्योगिकी को विश्व के सबसे परिष्कृत इंजीनियरिंग विषयों में से एक माना जाता है। इस इंजन को बुधवार को आजाद इंजीनियरिंग द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया और GTRI को सौंपा गया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: DRDO ने आज ओडिशा तट के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO और संबंधित पक्षों को बधाई दी है। ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडिचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की वापसी यात्रा कराई जाएगी।
2: पुरी के पवित्र शहर गहरी भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह से भर गया है। लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की घर वापसी की बाहुड़ा यात्रा को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्र की ताल के बीच देवताओं की पहंडी जुलूस से समारोह पूर्वक ले जाया जाएगा और उनके शानदार रथों पर विराजमान किया जाएगा। यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसीमा मंदिर में रुकेगा, जहाँ भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश समाचार।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इस बीच गुजरात में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशालवाहक लवलीना बोरगोहेन के नेतृत्व में भारतीय दल ने तिरंगे लहराते हुए स्पोर्ट्स एरेना में प्रवेश किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
4: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
5: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
3: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
4: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद विशाल। पेपर लीक की गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा आज के अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के शब्दों को दिया है पेपर लीक पर कड़ा कानून बनेगा, आज कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा मसौदा। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है वांगचुक ने आधी रात तोड़ा अनशन, केंद्रीय मंत्रियों ने जूस पिलाकर तोड़वाया अनशन। वहीं आंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच बातचीत पर नवभारत टाइम्स का कहना है वेन्यू पर अटकी सरकार से वार्ता। अमर उजाला की सुर्खी है UPSC की तरह NTA परीक्षाएं होंगी फुल प्रूफ, शुरू हुए बड़े बदलाव, गड़बड़ी पर नपेंगे अधिकारी, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की भी होगी समीक्षा। परीक्षा सुधार जरूरी शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन परीक्षा सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा को साकार करने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ परीक्षा तंत्र से जुड़े लोगों की भी होनी चाहिए। 2 साल के अंतर की शर्त लगाकर नहीं रोक सकते मातृत्व अवकाश, सरकारी कर्मियों के मातृत्व अवकाश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय न्यायालय की टिप्पणी दैनिक जागरण में है। न्यायालय ने कहा, पहले और दूसरे बच्चे के बीच

0: वर्ष का अंतर होने की शर्त लगाकर मातृत्व अवकाश देने से नहीं किया जा सकता इनकार। आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने वालों को नतीजे भुगतने होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का ये बयान जनसत्ता में है। फिलीपींस के मनीला में 33वीं आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक में विदेश मंत्री ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग सुरक्षित और निर्बाध से खुले रहने चाहिए।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod. The headlines. Prime Minister Narendra Modi promises new law to tackle paper leaks. Today's cabinet meeting to come out with stricter measures to deal with the issue. Delhi High Court sets up special fast-track court for paper leak cases after PM Modi's announcement. Activist Sonam Wangchuk ends his hunger strike in presence of Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh. India develops its first expendable turbojet engine of 350 kilograms thrust class. India and Romania sign 3 agreements in the fields of science and technology, education and sports. And 23rd Commonwealth Games begin in Glasgow, Scotland with spectacular and colourful opening ceremony. Prime Minister Narendra Modi has said that he directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts to tackle paper leaks, and they worked continuously and submitted the draft to him late last night. In a video message last night, Mr. Modi said this draft includes provisions for fast-track courts and stringent punishment will be discussed by the cabinet today. He said after incorporating the suggestions of cabinet colleagues, it will be given its final shape. The Prime Minister said, as the second week of Parliament begins on Monday, the government will make every effort to get this bill passed by the House at the earliest.
3: मैंने fast track court के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। Fast track court और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
2: The Prime Minister said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. Mr. Modi said government's foremost responsibility was to ensure that students did not lose an academic year, and it was essential to conduct the examinations immediately.
3: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक वीर कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया।
2: The Delhi High Court has constituted a fast-track court to hear cases under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The move is aimed at ensuring speedy disposal of cases related to unfair practices in public examinations. More from our correspondent.
4: The newly designated fast-track court will function at the Ross Avenue Courts under the charge of Judicial Officer Anu Grover Baliga. According to a notification issued by the Delhi High Court, the court will hear cases registered under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024, along with the connected offences. Ms. Baliga, who was serving as the judge in charge,

0: India develops its first expendable turbojet engine of 350 kilograms thrust class. India and Romania sign 3 agreements in the fields of science and technology, education and sports. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक होने के मामलों से निपटने के लिए नए कानून का वादा किया है। इस मामले के सिलसिले में आज की काबीना मीटिंग में और ज्यादा सख्त इकदामात का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ऐलान के तनाजुर में दिल्ली हाई कोर्ट ने पेपर लीक केसों के सिलसिले में खसूसी फास्ट ट्रैक अदालत कायम की है। सरगर्म कारकुन सोनम वांगचुक ने मरकजी वजीरों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट जुमरे का पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन तैयार किया है। भारत और रोमानिया ने साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम और खेलों के शोबों में 3 समझौतों पर दस्तखत किए हैं और 23वें दौलत मुश्तरका खेल स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में शानदार रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ शुरू हो गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने पेपर लीक होने के मामलों से निमटने की खातिर मुतल्लिका महकमों को फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने के लिए एक तजवीज़ तैयार करने की हिदायत दी थी और इन महकमों ने लगातार काम किया और कल रात देर गए उन्हें इसका मुसव्वदा पेश कर दिया। कल रात एक वीडियो पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि इस मुसव्वदे में फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने और सख्त सज़ा की गुंजाइश शामिल है और इस पर आज होने वाली काबीना की मीटिंग में गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि काबीना साथियों की तजवीज़ें शामिल करने के बाद इसे हतमी शक्ल दी जाएगी। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि पीर के रोज़ पार्लियामेंट इजलास का दूसरा हफ्ता शुरू होने के साथ ही सरकार मस्कूरा बिल को ऐवान में जल्द से जल्द मंजूर कराने की भरपूर कोशिश करेगी।
2: मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पेपर लीक होने के वाक़े के बाद से गुज़श्ता 2.5 महीने के दौरान कई इकदाम किए गए हैं। कसूरवार अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो जेल में बंद हैं। जनाब मोदी ने कहा कि सरकार की अव्वलीन जिम्मेदारी इस बात को यकीनी बनाना था कि तलबा का तालीमी साल ज़ाय ना हो और इसीलिए बिला ताखीर इम्तहानात कराना ज़रूरी था।
2: मैं जानता हूँ कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया।
1: दिल्ली हाई कोर्ट ने पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीके अख्तियार करने की रोकथाम से मुतालिक एक्ट 2024 के तहत केसों की समाअत के लिए एक फास्ट ट्रैक अदालत कायम की है। इस इकदाम का मकसद इम्तिहानात में नामुनासिब तौर तरीकों से मुतालिक मामलात को तेजी के साथ निपटाना है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: नई तश्कील दी गई यह फास्ट ट्रैक अदालत जुडिशल अफसर अन्नो ग्रोवर बालिगा की सरबराही में राउस एवेन्यू कोर्ट्स में काम करेगी। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक ये अदालत इम्तहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक 2024 के एक्ट के तहत दर्ज किए गए केसों और दीगर मुतालिका मामलात की समाअत करेगी। मस्कुरा इकदाम का मकसद इम्तहानात में नामुनासिब तौर तरीकों के इस्तेमाल से वाबस्ता मामलात को तेजी के साथ निपटाना है। इम्तहान के पर्चे लीक होने के मामलात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ तेजी के साथ सख्त

0: सज़ा को यकीनी बनाने की खातिर फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने के मरकज के फैसले के बारे में वज़ीर आज़म के ऐलान के चंद घंटों के अंदर ही ये उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दिल्ली से रोहन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: सरगर्म कारकुन सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में मरकजी वुजरा जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में 26 रोज के बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। इससे पहले मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से वाबस्ता पार्लियामेंट के 65 अराकीन उनके पास आ चुके थे या भूख हड़ताल खत्म करने की अपील करते हुए खतों पर दस्तखत कर चुके थे। जनाब वांगचुक ने कहा कि मुख्तलिफ सूरतेहाल पर तवील बातचीत के बाद ऐसा हुआ है। उन्होंने कहीं भी किसी भी तरह का तशद्दुद न होने देने के लिए हर किसी से बहुत मुस्तैद रहने पर जोर दिया। जनाब वांगचुक ने निज़ाम तालीम में असलाहत और पेपर लीक के सिलसिले में जवाबदेही तय करने के मुतालबात करते हुए पिछले महीने की 28 तारीख को भूख हड़ताल शुरू की थी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि पाकिस्तान से काम करने वाले उन 480 सोशल मीडिया हैंडल्स की निशानदेही करके उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है जो एक मुनज्जम तरीके से गलत जानकारी फैलाने की मुहिम में मुलव्वस थे। दिल्ली पुलिस के DCP सुमित झा ने बताया कि ये सोशल मीडिया हैंडल्स तलबा और नौजवानों को गुमराह करने के लिए अफवाहें और झूठे दावे फैलाने में मुलव्वस थे। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो किसी भी तरह की जानकारी पर भरोसा करने और उसे शेयर करने से पहले जानकारी की तस्दीक कर लें।
2: हमने नोटिस किया है कि सोशल मीडिया में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं जो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए फेक कंटेंट और र्यूमर्स स्प्रेड कर रहे हैं, उनको ब्लॉक कराया जा रहा है। ये वही सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक्टिव थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को भड़काना और स्पेशली स्टूडेंट्स का ध्यान भटकाना। मेरी आपसे अपील है कि बच्चों की सेफ्टी के लिए किसी भी फेक पोस्ट, एडिटेड वीडियोस या एनोनिमस हैंडल से किया हुआ कोई भी पोस्ट के भड़कावे में ना आए।
1: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कहा है कि कौमी राजधानी में सिक्योरिटी वजूहात से 17 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से मजीद हिदायत जारी होने तक बंद हैं। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। DMRC ने अलबत्ता ये भी कहा है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर ट्रेन बदलने की सहूलत दस्तियाब रहेगी। मरकज ने मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में सेक्रेटरियों की तकरीरी की है। विनीत जोशी जो इस वक्त तालीम की वजारत में आला तालीम के सेक्रेटरी हैं, उन्हें पंचायती राज की वजारत में सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। नरेश पाल गंगवार आला तालीम के नए सेक्रेटरी होंगे। TK अनिल कुमार स्कूली तालीम और खानदगी के सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए हैं। केशव चंद्र कानून की वजारत जबकि चंद्रभूषण कुमार मेहनत और रोजगार की वजारत में सेक्रेटरी होंगे। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने अंदरून मुल्क वसाइल से 350 किलोग्राम थ्रस्ट जुमरे का पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन तैयार किया है। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO के गैस टर्बाइन तहकीक ई इदारे ने इसे तैयार किया है। वजारत दिफा ने कहा है कि DRDO के डिज़ाइन पर मबनी इस तरह के कॉम्प्लेक्स निज़ाम की दस्तियाबी से मुल्क की दिफाई सनत की बढ़ती हुई तकनीकी सलाहियत की अक्कासी होती है। भारत की साइंसी और सनती बरादरी के दरमियान करीबी साझेदारी और कई बरसों की इंजीनियरिंग और जदीद मैन्युफैक्चरिंग के नतीजे में ये कामयाबी हासिल हुई है। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO ने तवील दूरी के ज़मीन से फिजा में वार करने वाले मिज़ाइल कुशा की पहली कामयाब आजमाइश की है। ये तजुर्बा ओडिशा के साहिल के नज़दीक APJ अब्दुल कलाम जजीरे पर किया गया। वजारत दिफा ने कहा है कि ये पहली आजमाइश बुलंदी पर तेज़ रफ्तार इलेक्ट्रॉनिक हदफ को निशाना बनाकर कामयाबी के साथ अंजाम दी गई। वजारत ने कहा है कि कुशा मिज़ाइल निज़ाम लड़ाका जेट, हवाई जहाज़ों, मिज़ाइलों, ड्रोन और दुश्मन के बड़े हवाई जहाज समेत फिजा में मुख्तलिफ तरह के खतरात को नाकारा बनाने की सलाहियत रखता है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस कामयाबी के लिए DRDO और दीगर मुतल्लिका इदारों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर मौसूफ ने कहा कि ये कामयाबी भारत की दिफाई तहकीक और तरक्की में एक अहम संग मील है। भारत और रोमानिया ने साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम और खेलों के शोबों में इश्तराक की खातिर 3 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारी

0: में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और उनके रोमानिया के हमनसब निकोसर डैन के दरमियान वफ्त सतह की बातचीत के बाद दस्तखत किए गए। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अपने प्रेस बयान में सदर जमहूरिया ने कहा कि शराकत दारी ज्यादा मकासद, मुस्तहकम इश्तराक और मुस्तकबिल के लिए एक मुश्तरक नज़रिए के साथ एक नए मरहले में दाखिल हो रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने और उनके हम मनसब ने एक बामानी और सूदमंद तबादला ख्याल किया और हालिया बरसों में हुई पेशरफ का जायज़ा लिया गया। सदर मुर्मू ने कहा कि दोनों ममालिक ने अपनी मुतल्लिका तरजीहात से मुताबिकत रखते हुए मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर रजामंदी जाहिर की है।
2: हम व्यापार और निवेश को बढ़ावा देंगे, सप्लाई चेन को मजबूत बनाने तथा दोनों देशों के उद्योग जगत के बीच घनिष्ठ सहयोग को प्रोत्साहित करने पर सहमति व्यक्त की। हमने अगले 3 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है।
1: उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया ने आइंदा 3 बरस में बाहमी तिजारत को दुगुना करने का हदफ रखा है। सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत यूरोपीय यूनियन आज़ाद तजारती मुहिदा सनतों और हुनरमंद पेशावर अफराद के लिए बेशुमार इम्कानात पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया ने मैनुफैक्चरिंग, अद्वियात, सेहत की देखभाल, काबिल तजदीद तवानाई, ग्रीन हाइड्रोजन, ज़रई पैदावार, खाद, साइंस टेक्नोलॉजी, डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। रोमानिया के बुखारेस्ट से सुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: ओडिशा के पवित्र साहिली शहर पुरी में आलमी शोहरत याफ्ता बहुधा यात्रा का अहतमाम किया जा रहा है। इसके तहत भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन श्री गुंडिचा मंदिर में 1 हफ्ते के क्याम के बाद वापसी का सफर करते हुए श्री जगन्नाथ मंदिर में वापस आएंगे। इस तरह सालाना यात्रा अख्ताम पजीर हो जाएगी। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज मशरकी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में बहुत शदीद से इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात की एजेंसी ने आइंदा 2 रोज के दौरान हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। इधर गुज़श्ता 48 घंटों में गुजरात में मुसलसल मूसलाधार बारिश से अहमदाबाद, सूरत, नवसारी और वलसाड़ समेत वस्ती और जनूबी खित्तों के मुख्तलिफ अजला में शदीद तौर पर पानी जमा हो जाए और अचानक सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। 23वें दौरे मुश्तरका खेलों का शानदार और रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आगाज हो गया है। इन 10 रोज़ा खेल मुकाबलों में 74 मुल्कों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत की परचमबरदार मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन भारतीय दस्ते की क्यादत करते हुए भारतीय तिरंगा लहराते हुए OVO हाइड्रो अरीना में दाखिल हुई। इफ्तिताही तकरीब से पहले ही दौलत मुश्तरका खेलों में तमगों के मामले में भारत ने अपना खाता उस वक्त खोला जब ओलंपिक में मेडल जीत चुकी मुक्केबाज लवलीना सीधे खवातीन के 75 किलोग्राम के जुमरे के सेमीफाइनल में पहुंच गईं। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारों ने पेपर लीक मामले में वज़ीर आज़म मोदी के ज़रिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के ऐलान को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप ने वज़ीर आज़म के हवाले से सुर्खी लगाई है, पेपर लीक के मुलजमान को जल्द सख्त सज़ा देने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें कायम की जाएंगी। अखबार ने मरकजी वजारत दाखिला के इस बयान को नुमाया किया है कि वो सैलाब से मुतासर रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को ज़रूरी इमदाद फ्राहम कर रही है। अखबार इनकलाब लिखता है, आसाम में सैलाब से हलाकतों की तादाद 41 हो गई, 6 लाख अफराद मुतासिर। अखबार प्रताप ने हुकूमत की इस वजाहत को सफ़े अव्वल पर जगह दी है कि E20 पेट्रोल महफूज है, इंजन पर मनफी असरात का कोई साइंसी सबूत नहीं।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक होने के मामलों से निपटने के लिए नए कानून का वादा किया है। इस मामले के सिलसिले में आज की काबीना मीटिंग में और ज़्यादा सख्त इकदामात का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ऐलान के तनाजुर में दिल्ली हाई कोर्ट ने पेपर लीक केसों के सिलसिले में खसूसी फास्ट ट्रैक अदालत कायम की है। सरगर्म कारकुन सोनम वांगचुक ने मरकजी वजीरों JP नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट जुमरे का पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन तैयार किया है। भारत और रोमानिया ने साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम और खेलों के

0: शोबों में 3 समझौतों पर दस्तखत किए हैं और 23वें दौरे मुश्तरका खेल स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में शानदार रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
1: मीजी में 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 8:45:17 हो रहे हैं। ये वक्त है आपके अपने कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज का। तो कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। वेरी गुड मॉर्निंग श्रोताओं, मैं आपकी रेडियो हमरा नीलम श्रीवास्तव कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज इस कार्यक्रम में ना हम किसी विशेष दिन की बात करेंगे ना किसी दिवस की। आज हम बात करेंगे उनकी जिन्होंने फिल्मों को नया आयाम दिया, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। जब उन्होंने फिल्मों में भगत सिंह का किरदार निभाया तो लोगों में देश प्रेम की भावना की लहरें हिलोरी मारने लगी। वहीं उपकार फिल्म में उन्होंने किसान के दर्द से लोगों को परिचित करवाया। पूर्व पश्चिम फिल्म में उन्होंने एक ऐसे नौजवान की भूमिका अदा किया जो अपने देश से बेहद लगाव रखता था। और अभिनेता दिलीप कुमार की फिल्म शबनम को देखकर उन्होंने अपना नाम ही बदल डाला। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अभिनेता, निर्देशक, पटकथा लेखक मनोज कुमार जी की। हाँ, वही जिन्हें दर्शकों ने प्यार से भारत कुमार कहा। और ये गलत भी नहीं है, मनोज कुमार जी की फिल्में देश प्रेम से ओतप्रोत रहती थीं। उनकी फिल्मों में एक ख़ास बात ये होती थी कि वो जीवन के करीब, बेहद करीब होती थीं। समाज में एक सामान्य नागरिक किन परिस्थितियों से जूझता है, अपने दैनिक जीवन में ये दिखाया उन्होंने अपनी अभिनीत फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में। शोर फिल्म में उस पिता का दर्द छलका जो अपने बेटे के मुख से पिता शब्द सुनने के लिए कितने कठिन दौर से गुजरता है। आज हम सबके प्यारे अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक का जन्मदिन है। 24 जुलाई सन 1937 में एबटाबाद में जन्मे मनोज कुमार जी के जन्मदिन की उनके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: चलने का नाम है। श्रोताओं, रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, अपने रेडियो सेट के रहिएगा करीब, क्योंकि मनोज कुमार के बारे में बातें और भी बहुत सी हम करेंगे। तो रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
4: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: संदेश के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र में। और श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। और नमस्कार प्रयागराज कार्यक्रम में आज हम बातें कर रहे हैं मनोज कुमार जी की। मनोज कुमार जी का हम आपको वास्तविक नाम बता देते हैं। इनका वास्तविक नाम है हरे कृष्ण गिरी गोस्वामी। बतौर अभिनेता उन्होंने 1957 में फिल्म फैशन से शुरुआत किया, पर पहचान मिली 1960 में बनी फिल्म कांच की गुड़िया से। 60 के दशक में उन्होंने हरियाली और रास्ता, वो कौन थी और हिमालय की गोद में जैसी रोमांटिक और सस्पेंस फिल्मों में भी काम किया।

सन 1965 में बनी शहीद फिल्म में जब उन्होंने भगत सिंह की भूमिका अदा किया तो लोगों ने उन्हें देशभक्त अभिनेता का नाम दे दिया। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये गीत ये फिल्म जब लोगों ने देखा तो मनोज कुमार जी को भरत कुमार के नाम से नवाजा और ये उपलब्धि ये प्यार मनोज कुमार जी को हमेशा प्रोत्साहित करती थी कुछ नया कुछ विशेष करने के लिए। 1968 में बनी उपकार फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्मफेयर पुरस्कार जहां आपने जीता, वहीं 1972 में बेईमान फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार आपको मिला। '92 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हुए और 2015 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सरकार ने नवाजा। इतनी कामयाबी, काम के प्रति इतनी श्रद्धा और लगाव और फिल्मी दुनिया के इस चमक दमक ने कभी भी मनोज कुमार की सादगी पर अपना प्रभाव नहीं डाला। वो हर किसी से मिलते थे, उनकी बातें ध्यान से सुनते थे जैसे एक पिता एक भाई एक बेटा या दोस्त सुनता है। और 4 अप्रैल सन 2025 को 87 वर्ष की अवस्था में मनोज कुमार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और उस अनवरत यात्रा पर चले गए जहां से कोई नहीं लौटता, लौटती हैं तो सिर्फ यादें और उनकी खूबसूरत यादें हमारे दिलों दिमाग में जिंदा हैं। आज भी मनोज कुमार की यादें तरोताज़ा हो रही हैं।

ये माटी पूजने योग्य ही है श्रोताओं, जहाँ ऐसे ऐसे कलाकारों ने जन्म लिया। श्रोताओं, कल फिर मिलने के वादे के साथ अब अपनी रेडियो हमरा नीलम श्रीवास्तव को कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दें। प्रस्तुति अभयकांत तिवारी की थी। नमस्कार प्रयागराज। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था।

0: हमारे अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
3: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
4: जी,
3: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
4: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
3: पर ये होगा कैसे?
4: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
3: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
4: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
3: बस
4: बस
3: समझ गया।
4: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: दिल आपको रेडियो सेट के करीब ले आया।
1: सलाम,
0: आप सभी को मेरा भी सलाम कबूल हो। ये गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं उमरा जान फिल्म से। अलका याग्निक की खूबसूरत सी आवाज़ है और इस गीत की रचना की है जावेद अख्तर ने, अनु मलिक जी का संगीत।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं दुश्मन फिल्म से, और इस गीत को अपने स्वर से सजाया है उदित नारायण और लता मंगेशकर जी ने। आनंद बख्शी जी की रचना है, उत्तम सिंह का संगीत है। हम तो आपको कब से आवाज़ दे रहे हैं कि आ जाइए रेडियो सेट के और करीब और सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से।

श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत जिसे हम लेकर आए हैं सावन फिल्म से, और इस गीत को अपने स्वर से सजाया है शान और सुनिधि चौहान ने। सावन कुमार ने ही इस गीत की रचना की है और आदेश श्रीवास्तव का संगीत है। तो भाई सावन का मौसम आ रहा है तो क्यों ना उसके स्वागत में हम और आप सभी मिलकर सुने ये गीत।

सावन में तो सब कुछ बदल ही जाएगा श्रोताओं, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की हलचल।

0: हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बांदा और एटा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बांदा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार निगम का।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 जुलाई को बांदा में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनपद को 710 करोड़ की 229 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इसके अलावा उन्होंने शहर के कालूकुआ चौराहे में वीरांगना अवंतीबाई की मूर्ति का अनावरण भी किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बांदा और बबेरू विधानसभा की 229 परियोजनाओं की शिलान्यास के लिए मुझे इस वीरांगना की धरती में आने का सौभाग्य मिला है। अब मुझे बुंदेलखंड आने में गर्व महसूस होता है। आज बुंदेलखंड के हर क्षेत्र में विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले बुंदेलखंड का पिछड़ापन यहाँ के पलायन का कारण था। बुंदेलखंड में पहले ना तो कनेक्टिविटी थी, ना सिंचाई और ना ही पेयजल की व्यवस्था थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने अब बुंदेलखंड को बेहतरीन कनेक्टिविटी से जोड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी को योजनाओं का लाभ दे रही है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही बांदा में खेत बचाओ कार्यक्रम में शामिल हुए। विगत 2 जुलाई को कृषि मंत्री ने बांदा में मंडल के चारों जनपदों से आए हुए किसानों को संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कृषि मंत्री ने किसानों से कम पानी में तैयार होने वाली फसलों को लगाने की अपील की, साथ ही रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल की बजाय प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए कहा। बाद में मीडिया से बात करते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण पर कहा कि सरकार मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: योगी आदित्यनाथ जी ने उसके ऊपर SIT बनाई है, दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी उसके लिए उत्तरदायी होगा उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
1: जनपद में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक संचारी रोग और दस्तक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत संचारी रोग से संबंधित बीमारियों जैसे मच्छर जनित रोग, डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया और वायु जनित रोगों के बारे में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के द्वारा घर घर जाकर उन्हें इन बीमारियों से बचाव के बारे में जागरूक किया जा रहा है। संचारी रोग अभियान के बारे में जनपद के CMO डॉक्टर बृजन सिंह ने बताया कि संचारी रोग अभियान सरकार की प्राथमिकताओं में से एक प्रमुख अभियान है।
3: संचारी रोग अभियान जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है और वर्ष में ये 3 बार 3 राउंड होते हैं। वर्तमान में अब जो सेकंड राउंड हो रहा है इस वर्ष का वो जुलाई है, तो जुलाई में 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक ये कार्यक्रम चलना होता है। इसमें 13 हमारे जो डिपार्टमेंट हैं अलग, वो 13 डिपार्टमेंट का इसमें सहयोग रहता है और हम लोग इस कार्यक्रम को चलाते हैं इस पर्पज से कि साफ सफाई रहे, कहीं पर भी पानी का भराव ना हो ताकि मक्खी मच्छर वहाँ पर पनपे।
1: इसमें स्वास्थ्य विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है, लेकिन इसके साथ ही अन्य विभाग भी सहायक विभाग के रूप में कार्य कर रहे हैं। अभियान के तहत आशा और आंगनवाड़ी घर घर पहुंचकर इन रोगों के फैलने के कारणों और उनसे बचाव के बारे में लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रही है। जनपद के रेल यात्रियों के लिए अब दक्षिण भारत का सफर आसान होगा। उत्तर मध्य रेलवे ने 5 अगस्त से प्रयागराज और यशवंतपुर के बीच एक नई स्पेशल साप्ताहिक ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है, जिससे अब बांदा से दक्षिण भारत की ओर यात्रा करने के लिए सीधे ट्रेन उपलब्ध होगी। प्रयागराज यशवंतपुर स्पेशल ट्रेन प्रत्येक बुधवार को प्रयागराज से यशवंतपुर के लिए रवाना होगी, जो बुंदेलखंड के चित्रकूट, बांदा, महोबा और खजुराहो होते हुए यशवंतपुर पहुंचेगी। ट्रेन बुधवार को शाम 6 बजे प्रयागराज से रवाना होकर रात्रि 11:10 पर बांदा पहुंचेगी। ट्रेन में कुल 23 ICF कोच होंगे, जिसमें 7 सामान्य, 11 स्लीपर, 2 AC थर्ड, 1 AC सेकंड और SRRD कोच भी शामिल रहेंगे। दक्षिण भारत के लिए जनपद से सीधे ट्रेन मिलने से यहां के स्थानीय लोगों में काफी प्रसन्नता है, क्योंकि बांदा से बेंगलुरु जाने वाले यात्री काफी हैं, जिनको पहले यहां से कोई सीधी ट्रेन उपलब्ध नहीं थी, जिसकी वजह से इन लोगों को दक्षिण भारत की यात्रा करने के लिए बहुत ज्यादा समस्या होती थी।
0: बांदा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं एटा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मिथिलेश कुमार का।

जनपद में विद्यार्थियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला विद्यालय परिवहन यान सुरक्षा समिति एवं जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी प्रशासन संगम लाल ने की। बैठक में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन शिवम यादव ने बताया कि मिशन सेफ फ्यूचर अभियान के अंतर्गत विद्यालयी वाहनों का व्यापक निरीक्षण किया गया। अभियान के दौरान सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले 65 विद्यालयी वाहनों का चालान किया गया, जबकि गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर 43 वाहनों को सीज किया गया। बैठक में निर्देश दिए गए कि सभी विद्यालय अपने वाहनों में वैध फिटनेस परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र, अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक उपचार किट और जीपीएस जैसी सभी अनिवार्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में ब्लैक स्पॉट्स के सुधार, हेलमेट और सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग, ओवरलोडिंग एवं ओवर स्पीडिंग पर प्रभावी नियंत्रण और जन जागरूकता कार्यक्रमों को और अधिक सशक्त बनाने के निर्देश दिए गए। जनपद में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत खुरपका, मुंहपका यानी FMD टीकाकरण अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर से मोबाइल टीकाकरण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया। ये अभियान 22 जुलाई से 8 सितंबर तक संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लगभग 5,70,000 पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। इस अभियान के लिए 20 मोबाइल वाहन और 32 प्रशिक्षित टीकाकरण टीमें गठित की गई हैं, जो गांव-गांव और घर-घर जाकर पशुओं का टीकाकरण कर रही हैं। टीकाकरण के साथ जियो टैगिंग और पोर्टल पर फोटो अपलोड की व्यवस्था भी की गई है, जिससे अभियान की निगरानी प्रभावी ढंग से हो सके। जिलाधिकारी ने कहा कि पशुधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और स्वस्थ पशु ही किसानों की समृद्धि का आधार हैं। उन्होंने पशुपालकों से अपील की कि वे अपने सभी पात्र पशुओं का समय पर टीकाकरण अवश्य कराएं। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RP शर्मा ने बताया कि खुरपका, मुंहपका एक अत्यंत संक्रामक रोग है, जिससे पशुओं का दूध उत्पादन प्रभावित होता है और पशुपालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए समय पर टीकाकरण ही इस बीमारी से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा 2026 को सुरक्षित और व्यवस्थित और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में यात्रा मार्गों की सुरक्षा, साफ सफाई, पेयजल, चिकित्सा, विद्युत और यातायात व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग को यात्रा मार्गों पर विद्युत पोलों की सुरक्षा, खुले ट्रांसफार्मर की बैरिकेटिंग और झूलते बिजली के तारों को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग को मार्गों की मरम्मत और झाड़ियों की सफाई, जबकि नगर निकायों को स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, मोबाइल, शौचालय और पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एटा में 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर रोजगार मेला, तकनीकी प्रदर्शनी और कौशल विकास पर आधारित तमाम गतिविधियों का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को रोजगार परक शिक्षा, आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों से जोड़ना था। कार्यक्रम में प्रशिक्षार्थियों की ओर से तैयार किए गए तकनीकी मॉडल और जॉब वर्क प्रदर्शित किए गए, जिनकी अतिथियों ने सराहना की। सफल प्रशिक्षुओं, उद्यमियों और संस्थान के सेवानिवृत्त कार्यदेशक को भी सम्मानित किया गया। बृहद पौधारोपण अभियान के अंतर्गत जनपद के विद्यालयों, ग्राम पंचायतों, सरकारी संस्थानों, सड़कों के किनारे, नहरों और तालाबों के आसपास बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया गया। इस दौरान अतिथियों एवं लाभार्थियों को सहजन यानी मोरिंगा के पौधे वितरित किए गए, साथ ही ढाक और पलाश के पौधे भेंट कर उनके संरक्षण का संकल्प भी दिलाया गया। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की कि पौधारोपण के साथ साथ पौधों के संरक्षण की जिम्मेदारी भी निभाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, स्वस्थ और हरित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। जिले के मुख्य

0: के विकास अधिकारी राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने बताया कि इस बार जनपद में तय लक्ष्य 31,36,000 से भी ज्यादा वृक्षारोपण किया गया है।
1: हरियाली का कवर यहां बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में यहां पर लक्ष्य वृक्षारोपण का था 31,36,400 और जिसके सापेक्ष 32,94,000 पौधरोपण हुआ है। शासन स्तर से भी और बड़े बड़े पैचेस को हम लोगों ने प्राथमिकता दिया। हर ब्लॉक में 15 से 20 पैचेस ब्लॉक्स बड़े थे, ब्लॉक प्लांटेशन जहां पर अच्छा हुआ है, और हम लोगों ने तरह तरह के जैसे कपी वन करके प्लांटेशन कराए गए हैं।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए देश गान।

किया जा रहा था। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: आकाशवाणी लखनऊ के मरकज से।
1: आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर है आपका मेज़बान मोहम्मद सईद अख्तर। आदाब कबूल फरमाए सामाइन, उर्दू शायरी सिर्फ जज्बात और एहसासात का इजहार नहीं बल्कि रूह की पाकिजगी, इश्क हकीकी, इंसान दोस्ती, अखलाक और मारिफत का भी एक खूबसूरत सफ़र है। तसव्वुफ़ ने उर्दू शायरी को वह वसअत अता की है जिसमें मोहब्बत, रवादारी, उख़ुव्वत और खुदा से क़ुर्बत का पैगाम नुमाया नज़र आता है। हजरत अमीर खुसरो, मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द, गालिब, अल्लामा इकबाल और दीगर कई शुआरा ने

मोहब्बत मोहब्बत लिखा है, और जहां हमको लिखना था एहराज अरमान, जहां हमको लिखना था एहराज अरमा, वहां हमने भारत ही भारत लिखा है, हकीकत हकीकत हकीकत लिखा है। और इसी के साथ चार मिसियरों मुलाहिजा फरमाए कि आई हुई बलाओं को इस तरह टाल दो, आई हुई बलाओं को इस तरह टाल दो, सिक्का किसी गरीब के कासे में डाल दो, आई हुई बलाओं को इस तरह टाल दो, सिक्का किसी गरीब के कासे में डाल दो, और अपने बदन के सारे लहू को निचोड़ कर, अपने बदन के सारे लहू को निचोड़ कर वतन अजीज हिंद के कदमों में डाल, अपने बदन के सारे लहू को निचोड़ कर वतन अजीज हिंद के कदमों में डाल दो। और चार मिसरे ये भी गुर्बत पे कहने की कोशिश की, मुलाहिज़ा करें कि आके रोती हैं बिल्लियाँ अक्सर, आके रोती हैं बिल्लियाँ अक्सर, छत पे उड़ती हैं झिल्लियाँ अक्सर, आके रोती हैं बिल्लियाँ अक्सर, छत पे उड़ती हैं झिल्लियाँ अक्सर, मैंने गुर्बत की लाज रखने को, मैंने गुर्बत की लाज रखने को मुंह में रखी हैं गुठलियाँ अक्सर, मैंने गुर्बत की लाज रखने को मुंह में रखी हैं गुठलियाँ अक्सर। और एक कताब मुलाहिज़ा फरमाए कि किताब इश्क पर बस यही उन्वान लिखूंगा, किताब इश्क पर बस यही उन्वान लिखूंगा, मैं हिंदी हूँ जमाने में यही पहचान लिखूंगा, किताब इश्क पर बस यही उन्वान लिखूंगा, मैं हिंदी हूँ जमाने में यही पहचान लिखूंगा, और जिसे करना है शक करता रहे मेरी वफाओं पर, जिसे करना है शक करता रहे मेरी वफाओं पर, कलम जब भी उठाऊंगा तो हिंदुस्तान लिखूंगा, कलम जब भी उठाऊंगा तो हिंदुस्तान लिखूंगा। और आखिरी चार मिसरों में लहजा फरमाए कि अपने ज़मीर व ज़र्फ को रुसवा नहीं किया, अपने ज़मीर व ज़र्फ को रुसवा नहीं किया, गुर्बत का अपनी मैंने तमाशा नहीं किया, अपने ज़मीर व ज़र्फ को रुसवा नहीं किया, गुर्बत का अपनी मायने तमाशा नहीं किया, और दौलत तो दे रहा था मुझे भी अमीर शहर, दौलत तो दे रहा था मुझे भी अमीर शहर, मेरी अना ने सामने कासा नहीं किया, मेरी अना ने सामने कासा नहीं किया। और इसी के साथ में ये गजल के दो चार पांच शेर है मुलाहिज़ा फरमाए के मतलब अर्ज किया है कि मेरे महबूब की जब मुझ पे इनायत होगी, मेरे महबूब की जब मुझ पे इनायत होगी, इश्क में पैदा उसी रोज हरारत होगी, मेरे महबूब की जब मुझ पे इनायत होगी, इश्क में पैदा उसी रोज हरारत होगी, और दिल की दहलीज पे आए हैं वो दस्तक देने, दिल की दहलीज पे आए हैं वो दस्तक देने, इससे बढ़कर भी भला क्या मेरी किस्मत होगी, इससे बढ़कर भी भला क्या मेरी किस्मत होगी। और ये भी शेर मुलाहिज़ा फरमाए कि आज ये शख्स जो दीवाना नजर आता है, आज ये शख्स जो दीवाना नजर आता है, हुस्न वालों की जरूर इसमें शरारत होगी, हुस्न वालों की जरूर इसमें शरारत होगी, और नाज बरदारी पे जब इश्क उतर आया है, नाज बरदारी पे जब इश्क उतर आया है, हुस्न में पैदा भला क्यों ना नजाकत होगी, हुस्न में पैदा भला क्यों ना नजाकत होगी। और आओ हम भी चलो ऐलान मोहब्बत कर दें, आओ हम भी चलो ऐलान मोहब्बत कर दें, आओ हम भी चलो ऐलान मोहब्बत कर दें, दूर इस तरह जमाने से ये नफरत होगी, दूर इस तरह जमाने से ये नफरत होगी, बस यही बात तो बेचैन किया करती है। बतौर खास शेर मुलाहिज़ा की बस यही बात तो बेचैन किया करती है, बस यही बात तो बेचैन किया करती है, उनको हमसे भला किस रोज मोहब्बत होगी, उनको हमसे भला किस रोज मोहब्बत होगी, और हमको मालूम न था ऐसी भी घड़ी आएगी, हमको मालूम न था ऐसी भी घड़ी आएगी, गैर तो गैर हैं अपनों को शिकायत होगी, गैर तो गैर हैं अपनों को शिकायत होगी, हमको मालूम न था ऐसी भी घड़ी आएगी, गैर तो गैर हैं अपनों को शिकायत होगी, और मोम तो मोम है
पत्थर भी पिघल सकता है। मोम तो मोम है, पत्थर भी पिघल सकता है। बात करने की अगर तुम में लिया

0: ये संदेश
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

संदेश के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र में। और श्रोताओं, इस वक्त आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप मल्लिका चटर्जी के स्वर में गाए भजनों का आनंद लेंगे। तो आइए सुनते हैं मल्लिका चटर्जी के स्वर में गाया ये भजन।

श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप मल्लिका चटर्जी के स्वर में गाए भजनों का आनंद ले रहे थे। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने वाले ही कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों की भूख हड़ताल समाप्त कर दी। श्री वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमू और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे मुलाकात की थी या पत्र लिखकर भूख हड़ताल समाप्त करने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस समाप्त करें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और उनके भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कल रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात की और छात्रों की चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन पोस्टों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के दौरान एक छात्र की मौत हो गई और पुलिस ने छात्र की मां की शिकायत के बावजूद FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए हैं। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री एली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। फिर रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू रोमानिया की संसद जाएंगी और सीनेट के अध्यक्ष मिर्चा अब्द्रोयान और चैम्बर ऑफ डिप्टीज के अध्यक्ष सोनिन गिनरेनु से मुलाकात करेंगी। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंताओं के चलते ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई हैं। ईरान पर अमरीकी हमलों के तेज होने और यमन में होती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में तेल टैंकरों पर हमले के बाद एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग खतरे में पड़ गया है। वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमतों में कल 6% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीवन में नेक और सदाचारी विचारों तथा कार्यों के महत्व पर बल दिया। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत कथन साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि व्यक्ति अपने कार्यों, विचारों और वाणी के माध्यम से जिस बात का निरंतर अनुसरण करता है वही उसके कल्याण को निर्धारित करता है। ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडिचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की वापसी यात्रा कराई जाएगी। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशाल वाहक लवलीना बोरगोहन के नेतृत्व में भारतीय दल ने लघु तिरंगे लहराते हुए स्पॉट से अरेना में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर

और FM 100.3 MHz पर। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हो रहे हैं। श्रोताओं, कुछ पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। ध्वनि दल के तरंगों पर मैं आपकी रेडियो हमरा नीलम श्रीवास्तव लेकर हाजिर हूँ आपका अपना कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करती हूँ। श्रोताओं, हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ और निरोगी रहे, हम कभी बीमार ना हों। इस वजह से हम तरह तरह के उपाय करते हैं, जिम जाते हैं, व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, मतलब अपने शरीर को हर तरह से निरोगी और स्वस्थ रखने की पुरजोर कोशिश करते हैं। पर थोड़ा रुकिए, पर क्या हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, बताइए। तो आज वॉइस ऑफ प्रयागराज में हम इस विषय पर बातचीत करेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य का क्या महत्व है हमारे जीवन में। कहते हैं ना, एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। बात भी सही है, शरीर स्वस्थ तो दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। पर हम अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए क्या करते हैं, आप बताइए। तो हम आपको, आप जब तक ये सोचिए कि आप अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या करते हैं, हम आपको बता दें कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है। एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचानता है, जीवन की सामान्य तनावों से निपटने का जज्बा रखता है, उत्पादकता और फलदायी रूप से काम कर सकता है और अपने समुदाय में योगदान देने में सक्षम होता है। मतलब मानसिक स्वास्थ्य भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है। भाई, बातें बहुत हो गई, अब चलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक पर। तब तक आप सोच लीजिए कि आप अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या करते हैं।

मौसम बदल रहा है, आवाज़ दे रहा है और आप इस वक्त सुन रहे हैं कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। और आज हम बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो भाई, दिमाग हमें प्रभावित करता है कि हम कैसा सोचते हैं, महसूस करते हैं और कार्य करते हैं। यह हमें तनाव का प्रबंधन करने, दूसरों से जुड़ने और निर्णय लेने में भी मदद करता है। मानसिक स्वास्थ्य जीवन के हर चरण में महत्वपूर्ण है। बचपन और किशोरावस्था से लेकर वयस्कता और बुढ़ापे तक यह जीवन की गुणवत्ता का एक अनिवार्य हिस्सा है। मानसिक स्वास्थ्य केवल मानसिक बीमारी की अनुपस्थिति नहीं, यह जीवन का आनंद लेने और जीवन की गतिविधियों और मनोवैज्ञानिकता

लचीलापन हासिल करने के प्रयास के बीच संतुलन बनाने की क्षमता है। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए कहा है कि यह सलामती की एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का एहसास रहता है कि वह जीवन के जो सामान्य तनाव हैं उनका सामना आसानी से कर सकता है, लाभकारी और उपयोगी रूप से काम कर सकता है, अपने समाज के प्रति योगदान करने में सक्षम होता है। और हम आपको बता दें कि आप अपने दिमाग को कैसे स्वस्थ रखें। आपने तो सोच ही लिया होगा, लेकिन कुछ छोटी मोटी जानकारी हम भी आपको दे देते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो भाई, नियमित व्यायाम करें, व्यायाम करिएगा, लेकिन रुकते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, अपने रेडियो सेट के रहिएगा करीब। हम अभी हाजिर होते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयाग को लेकर, प्रयागराज को लेकर।

श्रोताओं, आप डांस करने ही लगे होंगे भाई, ये भी व्यायाम करने का एक ख़ास तरीका है। तो अपने दिमाग को बेहतर रखने के लिए नियमित रूप से आप 30 मिनट का व्यायाम करें, 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। अच्छा, गहरी नींद से मेरा तात्पर्य ये है श्रोताओं कि बिल्कुल कुछ ना सोचें, एक सुकून भरी सांस लें और सो जाइए, कुछ भी नहीं। कभी कभी क्या होता है ना कि हम तो सो जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, शरीर रिलैक्स हो जाता है, बट दिमाग जागता रहता है, क्योंकि हम बहुत कुछ सोने से पहले सोचते रहते हैं। तो ऐसा ना करें, अपने दिमाग को भी आराम करने दें और गहरी नींद लें और संतुलित आहार लें। इसके अलावा ध्यान योग का अभ्यास करें। दिमाग में एंडोर्फिन का स्राव होता है जो तनाव को कम करता है, जिसे खुशी के हार्मोन्स कहा जाता है, और ये तभी होगा जब आप सक्रिय रहेंगे। अच्छा, एक बात मैं कहने जा रही हूँ कि कैफीन का सेवन कम करें। बहुत सारे लोग हैं ना जो बहुत सारी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, उनका उपयोग मत कीजिए। क्यों ही करना, आप अपने काम को किसी मतलब अपने मन को किसी और चीज़ में लगाइए। उन चीज़ों का उपयोग ही क्यों जो हमारे शरीर को हानि पहुंचा रहे हैं और हमारे दिमाग को ख़राब कर रहे हैं, यानी मूड को प्रभावित करते हैं। मन को शांत करने के लिए प्रतिदिन 10 से 15 मिनट माइंडफुलनेस या गहरी सांस लेने वाले प्राणायाम का अभ्यास करें। सोशल मीडिया और लगातार आ रही नकारात्मक खबरों से समय समय पर ब्रेक लें। भाई, बहुत सारे लोग हैं ना सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं, और ये वो सोचते ही नहीं है कि हमारा दिमाग कितना थक गया है। तो आप ब्रेक लें ताकि मानसिक शांति बनी रहे, यानी स्क्रीन टाइम सीमित करें और अपने मन की भावनाओं को अपने परिवार या दोस्तों के साथ साझा करें। किसी भी समस्या को अकेले ढूंढने की बजाय विश्वसनीय लोगों की मदद लें, यानी बातचीत करें। यदि आप किसी मानसिक परेशानी से या अवसाद चिंता से जूझ रहे हैं तो तुरंत मनोचिकित्सक की मदद लें। मनोचिकित्सक का मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है श्रोताओं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि अरे वहाँ क्यों जाना, हमें तो ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको एक राय देते हैं जिससे आप जीवन की तमाम तकलीफ़ों से बाहर निकल पाते हैं, जिससे आप सामान्य तौर से नहीं निकल पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं। वो आपको एक नियम बताते हैं कि आप अपने दिमाग को किस तरह से शांत रखें और उसे स्वस्थ रखें। ये जो युवाओं में तनाव और एग्रेसिवपन देखा जा रहा है ना, वो इसलिए कि वो एक समय में बहुत कुछ करने की चाह रखते हैं और कम समय में बहुत कुछ हासिल करने की ये चाहत उन्हें मानसिक रूप से थका दे रही है। तो युवाओं को ये समझने की आवश्यकता है कि वो एक समय पर केवल एक ही काम करें, सफलता और असफलता तो लगी रहती है। अपने दिमाग को शांत रखें। अच्छा श्रोताओं, अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए सबसे अच्छा और सरल माध्यम बताऊं? मुझे ये लगता है कि अपने दिमाग को सबसे शांत और उसको स्वस्थ रखने के लिए सरल माध्यम ये है कि एक मधुर सा संगीत लगा लीजिए, बजा दीजिए और बिल्कुल शांत होकर के सुनिए। उसके लिरिक्स, उसकी म्यूज़िक, मतलब सब कुछ उसको बहुत ध्यान से सुनिए, फिर देखिए आपका दिमाग कितना स्वस्थ हो जाता है।

मानसिक रूप से जब स्वस्थ रहेंगे तभी तो इस समाज में अपना योगदान दे पाएंगे, लोगों की विचारों और भावनाओं को समझ पाएंगे। इसलिए अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

वॉइस ऑफ प्रयागराज का आज का ये अंक आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और स्वस्थ रहिए, हंसते और मुस्कुराते रहिए इन्हीं शब्दों के साथ। अपनी रेडियो हमरा नीलम श्रीवास्तव को कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दें, प्रस्तुति अभयकांत तिवारी की थी। तो आप सभी को बाय बाय।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज, प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

श्रोताओं, सुबह के 10:30 बज रहे हैं। लीजिए सुनिए लोकगीत का कार्यक्रम। लोकगीत कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं विष्णु राजा, प्रभा सिंह, विभव शंकर और साथी। इन सभी के स्वर में गाए लोकगीतों का आज आप आनंद लेंगे। तो सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं विष्णु राजा के

में आज के कलाकार हैं विष्णु राजा, प्रभा सिंह, विभव शंकर और साथी। इन सभी के स्वर में गाए लोकगीतों का आज आप आनंद लेंगे। तो सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं विष्णु राजा के स्वर में गाया ये पचरा गीत।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं लोकगीत का कार्यक्रम और अब हम आपको सुनवाते हैं प्रभा सिंह के स्वर में गया ये देवी गीत।

और श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए विभय शंकर के स्वर में गया ये कहरवा गीत। विभय शंकर और साथियों ने इस कहरवा गीत को अपनी आवाज़ से सजाया है। लावे

श्रोताओं, अभी आप विभव शंकर और साथियों के स्वर में गाया ये दादरा गीत सुन रहे थे, और अब लीजिए सुनिए कहरवा गीत।

श्रोताओं, इसी गहरवा गीत के साथ लोकगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपनी रेडियो सेट के करीब।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज के कलाकार हैं विक्की कौशल।

विकी कौशल केवल एक बहुचर्चित अभिनेता नहीं बल्कि आधुनिक भारतीय सिनेमा में उस बदलाव के प्रतीक हैं जहां स्टारडम से अधिक तरजीह अभिनय की स्वाभाविकता और किरदार की गहराई को दी जाती है।

बॉलीवुड के शीर्ष शिखर तक पहुंचने की उनकी यात्रा कड़ी मेहनत, धैर्य और आदम्य प्रतिभा की एक अनूठी मिसाल है। विकी कौशल का आगमन उस दौर में हुआ जब दर्शक पारंपरिक नायक की जगह जमीन से जुड़े यथार्थवादी किरदारों को देखना पसंद कर रहे थे। उन्होंने दिखा दिया कि एक अभिनेता बिना किसी फिल्मी पृष्ठभूमि के भी अपनी बहुमुखी प्रतिभा के दम पर उद्योग में अपनी अमिट छाप छोड़ सकता है।

बनारस के घाटों पर बसे मसान के संवेदनशील दीपक से लेकर सरदार उधम के खामोश देशभक्त क्रांतिकारी और सैम बहादुर के निडर फील्ड मार्शल तक विकी ने हर भूमिका को न केवल जिया बल्कि उसमें अपनी आत्मा उड़ेल दी है।

विकी कौशल की शानदार अभिनय यात्रा को देश विदेश में अपार प्रशंसा और कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में मेजर विहान सिंह शेरगिल के असाधारण अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। फिल्मफेयर पुरस्कार उन्हें फिल्म संजू कमाली का किरदार और डंकी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता तथा सरदार उधम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विकी कौशल के बोले गए संवाद केवल फिल्मों तक सीमित नहीं रहे बल्कि जनमानस का हिस्सा बन गए। उरी का उनका ऐतिहासिक संवाद हाउस द जोश आज भी पूरे देश में देशभक्ति और ऊर्जा का संचार करता है।

अपनी सफलता और पुरस्कारों पर बात करते हुए विक्की हमेशा विनम्रता व्यक्त करते हैं। एक पुरस्कार समारोह के दौरान दिए गए अपने भावनात्मक भाषण में उन्होंने कहा था, ये सम्मान मेरे लिए केवल एक सफलता नहीं बल्कि एक भारतीय के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। मैं जो भी हूँ अपने परिवार और प्रशंसकों के असीम प्यार की बदौलत हूँ। विक्की कौशल ये साबित करते हैं कि जब लगन सच्ची हो और अभिनय में ईमानदारी हो तो दर्शक आपको अपने सिर आंखों पर बिठाते हैं। ये केवल एक स्टार नहीं है, वे एक ऐसे कलाकार हैं जो भारतीय सिनेमा के भविष्य को नई ऊंचाइयां और दिशा की ओर ले जा रहे हैं।

इसी के साथ आज का एक ही कलाकार कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे, यूथ एक्सप्रेस।

के साथ आपका फेवरेट शो यूथ एक्सप्रेस। आज का सफर होने वाला है दिल से ख्यालों तक और सपनों से सोच तक। आज बात करेंगे पावर ऑफ पॉजिटिविटी, थिंकिंग दैट चेंजेस लाइफ, ड्रीम्स, डिटर्मिनेशन एंड डेस्टिनी। जरा सोचिए, अगर हमारी सोच ही पॉजिटिव हो जाए तो दुनिया भी कितनी खूबसूरत लगने लगती है ना दोस्तों। पॉजिटिविटी ना कोई मैजिक नहीं है, ये एक हैबिट है, एक ऐसी आदत जो हर दिन हमारी सोच को शेप देती है। जैसे सुबह की एक मुस्कुराहट या किसी दोस्त का इट विल ओके यार कह देना। बेशक ये एक छोटा सा जेस्चर है, पर इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। मुझे याद है एक बार कॉलेज में एक कंपटीशन हार गई थी, दिल टूटा था, पर एक दोस्त ने कहा फेलियर भी तो एक सिग्नल है सक्सेस के रास्ते का। और सच कहूँ तो वही थॉट मुझे आज तक अपलिफ्ट करता है और मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है, क्योंकि गलतियों से हम सीखते हैं कि कैसे खुद को और बेहतर बनाना है। तो चलिए इसी थॉट के साथ सुनते हैं अपने प्रोग्राम का ये पहला।

रास्ते का, और सच कहूँ तो वही थॉट मुझे आज तक अपलिफ्ट करता है और मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है, क्योंकि गलतियों से हम सीखते हैं कि कैसे खुद को और बेहतर बनाना है। तो चलिए इसी थॉट के साथ सुनते हैं अपने प्रोग्राम का ये पहला

मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। दोस्तों ये जो गाना है ना, मुझे ऐसा लगता है हर कोई इससे रिलेट करता है, क्योंकि ये भी उस जिस समय ये आया होगा उस समय के युवाओं के लिए ये भी गाना कितना प्रेरित करता होगा, उनको कितना इंस्पायर करता होगा, कितना मोटिवेट करता होगा कि वो भी अपनी ज़िंदगी में यूं ही आगे बढ़ते चले चले, है ना। और मुझे लगता है कि ये जो गाने हैं ये एवरग्रीन सॉन्ग्स हैं, हर किसी को इन गानों से प्यार है और इन गानों को सुनते ही ना नॉस्टैल्जिया भी होता है और अच्छा भी लगने लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है ना दोस्तों कि गाने भी हम सबको एक तरीके से पॉजिटिव थॉट्स ज़रूर देते हैं, क्योंकि जो होते हैं ना हम युवा हैं, हर कोई जो भी है, वो इंसान दिल से जब कोई बात निकलती है या सुनता है वो अपनी आवाज़ को अपने अंदर के थॉट को सुनना चाहता है, पर कहीं ना कहीं

ऐसी चीज़ों में उलझ जाते हैं जब हम उन चीज़ों को सुन नहीं पाते और हम वही चीज़ करते चले जाते हैं जो सब कर रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने सपनों को देखिए, उनको साकार करिए और उन पर काम ज़रूर करिए। ये गाना हर उस इंसान के दिल से भी निकलता है जो सपने देखना जानता है। सपने वो जो छोटी छोटी आँखों में पलने वाले ख्याल होते हैं, और डिटर्मिनेशन वो ताकत जो गिरने के बाद भी उठने पर मजबूत करती है, और डेस्टिनी शायद वही हमारी जर्नी का डेस्टिनेशन होती है। एक लाइन है कि सपनों को सच करने से पहले भरोसा करना पड़ता है। दोस्तों, क्या आपको पता है वॉल्ट डिज्नी को 300 बार नो बोला गया था मिकी माउस अप्रूव होने से पहले, लेकिन उन्होंने कभी अपने सपनों को नहीं छोड़ा या उसे गलत स्केच की तरह फाड़ कर नहीं फेंका। उन्होंने अपने ड्रीम्स को डिटरमाइन किया और आज देखिए उनकी डिज्नी दुनिया भर के बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बन गई है। तो अगर लाइफ आपको नो कह रही है तो शायद यूनिवर्स कह रहा है नॉट येट। दोस्तों, पॉजिटिविटी सिर्फ सेल्फ हेल्प बुक्स तक लिमिटेड नहीं है, ये वो एनर्जी है जो हम अपने आसपास क्रिएट करते हैं। कभी किसी दोस्त को इनकरेज करना या खुद को एक और चांस देना, बस यही तो पॉजिटिविटी का मैजिक है। पॉजिटिव माइंड और मन को शांत रखना जो ये है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। और इसमें ना जो हमारे दोस्त होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ज़िंदगी के हर फेज़ में। हम सबको एक ऐसा दोस्त चाहिए होता है, कोई जो हमारी बात जज ना करे, वो हमारी बात को सुने, कोई जो हमें खुद पे भरोसा करने में मदद करे। फ्रेंडशिप एक ऐसी पॉजिटिविटी का सोर्स है जो कभी ख़त्म नहीं होती। तो क्या आपके पास भी ऐसा कोई फ्रेंड है जिसे मिलकर लगता है लाइफ इज़ गुड अगेन? बिना फ्रेंडशिप के पॉजिटिविटी इनकम्प्लीट सी लगती है ना दोस्तों? और अगर दोस्तों के साथ थोड़ा सेल्फ बिलीव मिल जाए तो सपने भी रियलिटी बन जाते हैं। कभी कभी हम लाइफ के रश में भूल जाते हैं कि कितना ज़रूरी है ग्रैटिट्यूड फील करना अपने फ्रेंड्स के लिए और सबसे इम्पॉर्टेंट खुद के लिए।

दोस्तों, फ्रेंडशिप ही वो लाइफ का असली पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि फ्रेंड्स ही हमारी पॉजिटिव एनर्जी का शीशा होते हैं। अगर आपके दोस्त हर वक्त सिर्फ शिकायत करते हैं तो आप भी वही करोगे, क्योंकि कोशिश करनी चाहिए कि आपके आसपास ऐसे लोग रहें जो आपको इंस्पायर करते रहें, ना कि ड्रेन। तो दोस्तों, आपके लिए पॉजिटिव मंत्रा ये है कि जस्ट स्टार्ट, परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो, जो है जहां हो वहीं से शुरू करो, क्योंकि हर दिन एक मौका है। वो कहते हैं ना, समय सब कुछ बदल देता है, लेकिन सच्चे दोस्त वो कभी नहीं बदलते। हाँ, शायद बातें कम हो जाती हैं, पर जब भी मिलते हैं बॉन्ड और वाइब बिल्कुल सेम रहता है। सो आज यूथ एक्सप्रेस पर हम आपको एक छोटा सा पॉजिटिव चैलेंज देना चाहते हैं। आज किसी एक दोस्त को कॉल करें सिर्फ ये कहने के लिए कि थैंक्स फॉर बीइंग इन माय लाइफ। छोटी सी बात है, पर दिल से निकलेगी तो इसका असर ज़रूर बहुत बड़ा होगा। दोस्तों, अपने आसपास ऐसे लोगों को ज़रूर रखें जो आपको लाइट फील कराएं, जो आपको प्यार से चैलेंजेस दें और सचमुच आपको सफल होते देखना चाहते हों, और बदले में उनके लिए वही व्यक्ति भी आप बने। बहुत ही छोटी सी बात है दोस्तों, कि जो हमारा फ्रेंड सर्कल होता है वो ऐसा होना चाहिए कि आपके बीच में, हम सब हमेशा कंपटीशन से दूर भागते हैं कि हमें किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कंपटीशन होना भी बहुत ज़रूरी है, पर वैसा कंपटीशन नहीं जो एक दूसरे को एक दूसरे का दुश्मन बना दे।

वो कंपटीशन जो एक हेल्दी कंपटीशन जिसे हम कहते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमें एक मोटिवेट भी करता है, हमें अंतर क्षमता देता है कि हम किसी काम को और मेहनत, लगन और इच्छा से करें। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें, और जो मैंने कहा है कि अपने किसी एक दोस्त को कॉल ज़रूर करें, तो ये भी एक छोटी सी पहल है, वो आप ज़रूर कर सकते हैं।

दोस्तों, आजकल की हम सबकी जिंदगी ना रेस जैसी हो गई है। डेडलाइंस, मीटिंग्स, नोटिफिकेशंस, लेकिन वीकेंड हमसे कहता है थोड़ा रुक जाओ, सांस लो और जिंदगी को महसूस करो, क्योंकि जिंदगी की दौड़ में थोड़ा थम जाना भी जरूरी है, मुस्कुराहट के रंग का महकना भी जरूरी है। तो आज अपने लिए एक मोमेंट जरूर छोड़े, चाय के चुस्के के साथ सनराइज देखें या किसी पुराने दोस्त को कॉल करें, बिकॉज रिलैक्सेशन इज नॉट लेजीनेस, इट्स हीलिंग। और हाँ, अगर आप चाहें तो मुझे बताएं हाउ डू यू रिलैक्स ऑन वीकेंड्स, मैसेज कीजिए हमारे नंबर पर, हमारा नंबर है 8004926250, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर yuvvaniald@gmail.com। तो हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, कभी कभी ना रिलैक्स करते हुए हम अपने आप से मिलते हैं, और यही तो है वीकेंड का मैजिक, यानी सेल्फ कनेक्शन। तो आइए अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, अपने वीक के मोमेंट्स को देखना, समझना किसी चीज़ से थका या किसी चीज़ से खुशी जो भी हमें मिलती है उसे समझना, उसे देखना और उस पूरे वीक को एनालाइज करना, ये भी एक रिफ्लेक्शन का एक पार्ट है। तो दोस्तों, हम सब गलतियां करते हैं, पर रिफ्लेक्शन उन्हें सीख में बदल देता है, और कभी कभी सिर्फ एक शांत पल भी दिल को सब कुछ बता देता है, जो शब्दों से कहना बहुत मुश्किल होता है। तो आइए एक छोटी सी एक्टिविटी ट्राई करते हैं, आंखें बंद करिए और सोचिए इस वीक का एक ऐसा मोमेंट जो आपको प्राउड फील कराता है, और एक ऐसा मोमेंट जहां आपको लगता हो नेक्स्ट टाइम आई विल हैंडल इट बेटर। अब आपको फील होगा कि लाइफ थोड़ी मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं जो इम्पॉसिबल हो। आप अपने खुद की खामियों को समझेंगे, अपने खुद की जो आपके पावर पॉइंट्स हैं कि हाँ, मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, मैंने यहाँ पे ये चीज़ गलती की लेकिन मैंने यहाँ पे अच्छा भी किया, तो आप उन चीज़ों को समझेंगे तो हो सकता है कि आप आगे और ज़्यादा अच्छा कर पाएँ।

दोस्तों, जब अपना मन शांत कर लेते हैं ना हम, तो दिल के कोने में एक नई रोशनी जगती है। वो कहती है, अब बस नई एनर्जी के साथ नई शुरुआत करो। वीकेंड के दिन बस यही करना है, कुछ नया सीखना, अपने आप को पैम्पर करना और लाइफ के ग्रैटिट्यूड फील करना। थोड़ी सी मुस्कुराहट, थोड़ा सा सुकून, बस यही तो है वीकेंड का जुनून। तो दोस्तों, आज के यूथ एक्सप्रेस के सफ़र में हमने सीखा अपनी सपने देखना ज़रूरी है, अपने उन सपनों पर विश्वास करना और डिटर्मिनेशन, वो फ्यूल होता है जो डेस्टिनी तक लेके जाता है, और पॉजिटिविटी वो स्टीयरिंग व्हील होती है जो हमें डायरेक्शन देती है। और साथ ही अपने वीकेंड को ऐसे वीकेंड मत समझिए, उसे अपने वेलबींग का एक फेस्टिवल बनाइए। सो थिंक पॉजिटिव, ड्रीम फियरलेस एंड लिव फुल। और याद रखिए, हर नया दिन एक नई कहानी लिखने का मौका देता है। मैं हूँ आपकी दोस्त ज्योति, और ये था आज का एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट यूथ एक्सप्रेस के सफर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम यूथ एक्सप्रेस। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
2: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रश्न पत्र लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट्रैक कोर्ट के निर्णय की सराहना की है।
3: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से

0: संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और उनके भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कल रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात की और छात्रों की चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने श्री वांगचुक को रचनात्मक संवाद और सकारात्मक हस्तक्षेप का आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने का फैसला किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध और विद्यार्थियों के प्रदर्शन को लेकर दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
2: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है।
1: श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर भी सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है। राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित हो गई है, लोकसभा की कार्यवाही जारी है। भारत ने कल हरारे में 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 50 रन की शानदार पारी खेली। भारत ने महज 14वें ओवर में 126 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 719 अंक गिरकर 75,672 जबकि निफ्टी 196 अंक गिरकर 23,673 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Both Houses of Parliament have been adjourned till 12 noon following opposition protest over the NEET paper leak case and student protest. When the Lok Sabha assembled for the day at 11 a.m, the House paid tributes to the martyrs of the Indian Armed Forces who gave the supreme sacrifice during the Kargil War. Later, when the Speaker tried to take up the question hour, the opposition members started sloganeering, demanding resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan. Mr. Birla urged opposition members to cooperate in running the House, but they did not pay heed to the advice of the Speaker, which led to the adjournment of the House till 12 noon. The upper house also observed silence as a mark of respect to the memory of the martyrs. After that, the chairman tried to take up zero hour and allowed Leader of Opposition Mallikarjun Kharge to speak. Mr. Kharge raised the issue of NET paper leak and student protest over the matter. As uproar continued from the opposition and treasury benches, the chairman adjourned the house till 12 noon. Prime Minister Narendra

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 12:15 पर श्री ऋषि मिश्र का ख्याल गान हम आपको सुनवाएंगे। 12:30 पर श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा हेलो फरमाइश, प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। 1:15 हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम हेलो गृहलक्ष्मी। 2:30 NCERT की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम होगा। 5:00 नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम सुनेंगे नन्ही दुनिया।

5:15 बजे यूजन का अपना कार्यक्रम होगा युग वाणी। 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे छेदी लाल और साथियों के स्वर में लोकगीत।

7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे डॉक्टर मनीष जुगरान की वार्ता कौटिल्य अर्थशास्त्री सैन्य विज्ञानम।

रात 8:30 बजे अंग्रेजी कैंटीन में गांधी को सुभाष चंद्र बोस द विजनरी लीडर ऑफ इंडिया फ्रीडम स्टिगर कस्तूरी डे और रात 9:30 बजे पर गजलों पर आधारित कार्यक्रम होगा कहकशां।

रात 8 बजे संसद समीक्षा और 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग, ये दोनों कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शिक्षा मनुष्य में आत्मविश्वास जगाती है। खुद शिक्षित बनिए और दूसरों को साक्षर बनाइए। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्री ऋषि मिश्र का ख्याल गायन राग देसी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्री ऋषि मिश्र के ख्याल गायन राग देसी। इनके साथ तबले पर संगत की श्री आरुष मिश्र ने, हारमोनियम पर श्री अनुराग मिश्र ने, विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध थे, बोल थे नैया मुरी पुरानी भई, द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध थे और बोल थे राधे बिन श्याम। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो फरमाइश। प्रस्तुति है मधु कुमार की।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: छत्रपाल सिंह पटेल, पूर्व प्रधान सल्लापुर, थाना करौंती, जिला प्रयागराज।
0: जी छत्रपाल जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मिलन फिल्म का मैम, सावन का महीना, पवन करे शोर, जीरस घूम ऐसे जिसे मन में नाचे मोर।
0: मन में नाचे मोर, तो भैया ये
1: सावन का,
0: सावन से संबंधित ये गाना आपने चुना है, तो चलिए।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: हम गुलाब चंद मिश्रा, ग्राम पचोखर, रामगंज, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं।
0: जी गुलाब जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: हम फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का गीत सुनना चाहते हैं, यशोमती मैया से बोले नंदलाला।
0: राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला।
1: हाँ,
0: बहुत ही अच्छा गीत चुना है, लता जी की आवाज में ये गीत है और गुलाब जी की पसंद का है, तो सुनवाएं गुलाब जी आपको।
1: कुछ लोगों का नाम ले लीजिए।
0: हाँ जी बिल्कुल ले लीजिए।
1: अजीत कुमार, सुशील कुमार, सुनील कुमार, रिंकू, टिंकू, भग्गू, जग्गू, जग्गू, संतोष पटेल और राजन।
0: जी जी जी, तो आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: हेलो फरमाइश, मैं राजू यादव, ग्राम उपरहका श्रीरामपुर डेरा सरीला राठ मुस्करा हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हमारी प्यारी बहना जी को मेरा प्यार भरा प्रणाम।
0: नमस्कार जी। नमस्कार राजू यादव जी, बुंदेलखंड से हमारे साथ हैं। तो राजू जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: हम गाना सुनेंगे गली गली भौरा बेईमान, मनचली मूवी का,
0: मनचली फिल्म का गाना, तो राजू जी की पसंद का। राजू जी, नाम तो नहीं लेने आपने किसी के?
1: हाँ, हमारे मित्र हैं रामचरण विश्वकर्मा जी हैं, छोटे यादव जी हैं, श्री शारदा प्रसाद जी हैं, श्री टेकचंद अग्रवाल जी हैं, सतीश रघुवंशी जी हैं, और हेलो फरमाइश एकता ग्रुप के श्री गुणवंत कड़ू जी हैं, गौतम राय भोले जी हैं, लोकेन वर्मा जी हैं।
0: तो आपको सुनवाने जा रहे हैं मनचली फिल्म का ये गाना, लीजिए सुनिए।
2: कभी कहा

0: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो फरमाइश, और मैं हूं मधु। आपके गीतों के साथ अपना नाम बता दीजिए।
1: आदरणीय मधु दीदी को सादर से प्रेम प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार।
1: मैं आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवानिया बोल रहा हूँ दीदी
0: जी। आगरा से राजू जी हमारे साथ हैं, तो राजू जी आज आपकी पसंद का कौन सा गाना है?
1: और गाने के बोल हैं भीगा भीगा मौसम, भीगी भीनी भीनी खुशबू।
0: अच्छा, तो लता जी की आवाज में आपने बड़ा ही अच्छा सा गाना सुनना चाहा है, तो आइए आपको सुनवाते हैं लता जी की आवाज में सुराग फिल्म का ये गाना।

0: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से समय श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो फरमाइश और मैं हूं मधु आपके गीतों के साथ। अपना नाम बताइए।
1: परम आदरणीय मधु दीदी, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति राधा सिटी मथुरा से करता हूँ सादर सप्रेम प्यार है। नमस्कार।
0: नमस्कार जी। नमस्कार शारदा प्रसाद प्रजापति जी ने मथुरा से कॉल की है, तो कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आज आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है दामिनी
0: जी।
1: गवाह है चांद तारी गवाह है।
0: बहुत ही अच्छा गीत चुना है आपने, दामिनी फिल्म का ये सुपरहिट गाना है और शारदा प्रसाद प्रजापति जी की पसंद का है, तो आपको सुनवाते हैं ये गीत, लीजिए सुनिए।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए।
1: नमस्कार मैडम जी,
0: नमस्कार।
1: हम राकेश सिंह भैया मेजा प्रयागराज से बोल रहे हैं।
0: जी राकेश जी, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: हमको अजय फिल्म गाना सुना दीजिए, इसमें गाने का बोल है छमक सल्लू जरा धीरे चलो, ये सभी श्रोताओं को हम सुनाना चाह रहे हैं।
0: अच्छा अच्छा, तो भाई राकेश सिंह जी ने ये गाना चुना है और हम आपको सुनवाने जा रहे हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के फोन स्कोर पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुत थी मधु कुमार की। अब ये कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
2: फास्ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट्रैक कोर्ट के निर्णय की सराहना की है।
3: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली

0: डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और उनके भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कल रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोना वांगचुक से मुलाकात की और छात्रों की चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की, जिसके बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने का फैसला किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण बार बार बाधित हुई। दोपहर 12 बजे दोनों सदनों के फिर से शुरू होने पर विपक्षी दलों ने सदन को सुचारू रूप से न चलने दिया, जिसके बाद लोकसभा को सोमवार 11 बजे तक और राज्यसभा को आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के पटियाला जिला कार्यालय के एक प्रवर्तन अधिकारी को रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। सीबीआई के सूत्रों के अनुसार 22 जुलाई को एक शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई। सीबीआई ने आरोपी को शिकायतकर्ता से 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। निदेशालय ने कहा है कि जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के उस मामले से संबंधित है, जिसमें लगभग 450 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी शामिल है। मामले की जांच जारी है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.3% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 248 अंक गिरकर 76,143 पर, जबकि निफ्टी 75 अंक गिरकर 23,795 पर पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिज्क को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बाब समय से खेलेंगी। भारत ने कल हरारे में 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 50 रन की शानदार पारी खेली। भारत ने महज 14वें ओवर में 126 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 125 रन बनाए। श्रृंखला का दूसरा मैच कल इसी मैदान पर खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has said he has directed departments to prepare a proposal for fast-track courts to tackle paper leaks, and they worked continuously and submitted the draft late last night to him. In a video message last night, Mr. Modi said this draft, which includes provisions for fast-track courts and stringent punishment, will be discussed by the Cabinet today. He said after incorporating the suggestions of Cabinet colleagues, it will be given its final shape.
3: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक वीत कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए, इसका प्रबंध किया।
2: The Lok Sabha has been adjourned till Monday as ruckus continued in the House for the 5th consecutive day today. When the House met after the first adjournment at 12 noon, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government is ready to discuss the NEET paper leak issue from day one. He said due to certain conditions being imposed by the Congress, the discussion has not been able to proceed. Mr. Rijiju said it is the collective sentiment of all the members that there should be a

0: meaningful discussion on the issue. The minister said in the cabinet meeting today, decisions will be taken on strict measures and the introduction of a strong law to address this paper leak issue. Earlier, when the Lok Sabha assembled for the day at 11 a.m, the House paid tributes to the martyrs of the Indian Armed Forces who gave the supreme sacrifice during the Kargil War. The Rajya Sabha has also been adjourned till 2 p.m. over the NEET issue. When the House met after the first adjournment at 12 noon, Chairman C.P. Radhakrishnan tried to take up the question hour, but the opposition continued with their sloganeering, demanding the resignation of the Union Education Minister. The Delhi police has informed that 480 Pakistan-based social media handles involved in coordinated misinformation campaigns have been identified and blocked. Delhi Police DCP Sumit Jha said these social media handles were involved in spreading rumours and false claims to mislead the students and youth. He urged people to always verify information before trusting and sharing them. Activist Sonam Wangchuk has ended his hunger strike after 26 days at a private hospital in Gurugram last night in the presence of Union Ministers J.P. Nadda and Jitendra Singh. Sonam Wangchuk's wife, Gitanjali Angmo, and senior leaders of the apex body of Leh Ladakh were also present at the hospital when he ended his fast. The Enforcement Directorate, ED, conducted searches at 8 locations today across Delhi, Uttar Pradesh and Punjab in connection with a money laundering case linked to an alleged bank fraud. ED said the investigation arises from a CBI case relating to fraud involving approximately 450 crore rupees. Further investigation is underway. BJP National President Nitin Naveen has said the government stands firmly with the citizens affected due to heavy rainfall and flood situation in Gujarat. In a social media post, the BJP president stated today that the Bharatiya Janata Party stands firmly with the affected citizens in the spirit of service and dedication and is actively providing cooperation in the relief efforts. In Jammu and Kashmir, amid the continued closure of the Jammu-Srinagar National Highway due to heavy rainfall and landslides, the Northern Railway yesterday introduced a special train between Srinagar and Sri Mata Vaishno Devi Katra to facilitate stranded passengers. The special service helped evacuate over 600 passengers affected by disruption in road connectivity. India's Anahat Singh has entered the semi-finals of the World Junior Squash Championships after beating Egypt's Habiba Rizk in the quarterfinals. With this win, Anahat has become the first Indian to reach back-to-back semi-finals in the championship. Five-time world champion Vishwanathan Anand has taken charge of the International Chess Federation as interim president after its Russian head was placed on the latest European Union sanctions list. And with that, we end this news bulletin.
1: अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक केस में मुलव्वस अफराद को फौरी और सख्त सज़ा देने को यकीनी बनाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों के क़याम का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कल रात एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए इस मामले पर हुकूमत के अज़्म का आदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुतल्लिका महकमों को हिदायत की गई है कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के लिए तजावीज़ तैयार करें।
2: पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक वीर कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो, तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही है। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।

0: इससे कबल वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट कायम करने के वज़ीर-ए-आज़म के फैसले को कौम के फैसला को नावाज करार दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि नए हिंदुस्तान में नौजवानों के मफादात सबसे अहम हैं और कानून उनके मुस्तकबिल के साथ छेड़छाड़ करने वालों को तेजी से और सख्त सजा देगा। दरी असना मरकजी हुकूमत ने नीट इम्तिहान के पेपर लीक के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हुकूमत तमाम मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि मजाकरात के बगैर कोई हल नहीं मिलेगा।
1: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं, आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री JP नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने समाजी कारकुन सोनम वांगचुक से अपील की है कि वो डॉक्टरों के मशवरे के मुताबिक अपने रोजमर्रा के मामूलात पर अमल करें और जल्द अज जल्द अपना मामूल का वजन बहाल करें। एक सोशल मीडिया पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने सोनम वांगचुक की मुसलसल अच्छी सेहत के लिए खुदा से दुआ की। समाजी कारकुन सोनम वांगचुक ने मरकजी वुजरा जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में अपना 22 रोजा अनशन खत्म किया। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के लिए रियासत के कई अजला में तैयारियां तेजी से मुकम्मल की जा रही। हापुड़ में यात्रा के बाहिफाजत तकमील को यकीनी बनाने के लिए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने 17 कांवड़ मोबाइल बाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मोबाइल बाइक पुलिस एहलकार एक्टिव रहेंगे और कांवड़ के रास्ते बड़े चौराहों और भीड़ वाले हसास मकाम पर मुसलसल गश्त करते रहेंगे। वाराणसी में शिव भक्तों और कांवड़ यात्रियों के मुतवक्के भीड़ के पेश नजर कैंट रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी, सफाई, मुसाफिरों की सहूलियात और भीड़ के इंतजाम के लिए खसूसी इंतजाम किए गए हैं। भदोही के जिला मजिस्ट्रेट कुमार ने बताया कि इंतजामिया ने 30 जुलाई से 28 अगस्त तक चलने वाली कांवड़ यात्रा के महफूज तकमील को यकीन बनाने के लिए ड्यूटी लगा दी है। कांवड़ रूट्स लालगंज नगर टोल प्लाजा पर वाकई ढाबों, रेस्टोरेंट, रिफ्रेशमेंट शॉप्स पर खाने पीने की अशिया के मियार हिफ्जानियत का मुआयना करते हुए खाना और मशरूबात सिर्फ मुकर्रर कीमत पर फरोख्त करने की हिदायत दी गई है। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में मुनक़िदा जनता दर्शन के दौरान तकरीबन 150 लोगों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। इस मौके पर उन्होंने मुतासरीन को उनके मसाइल पर मौसर कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो शिकायत और मसाइल को फौरी हल करें। उन्होंने कहा कि तमाम मसाइल का हल मुनसिफाना और बरवक्त होना चाहिए। वज़ीर-ए-आला ने पुलिस अफसरान को जराइम और ज़मीनों पर कब्जे से मुतालिक शिकायत पर सख्त कार्रवाई करने की हिदायत की। जिला इंचार्ज उत्तर प्रदेश के वजीर ज़रात सूर्य प्रताप शाही ने अयोध्या जिला अस्पताल और श्री राम अस्पताल का मुआयना किया। दौरे के दौरान उन्होंने सफाई, इलाज, मुआवजे के इंतजाम और मरीजों से बातचीत करते हुए सेहत की खिदमात का जायजा लिया। मुआयने के बाद वजीर ने योगी हुकूमत की सेहत खिदमात की तारीफ करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ हुकूमत रियासत में बुजुर्गों और बीमारों के बेहतर और मुफ्त इलाज को यकीनी बनाने के लिए इंतहाई हसासियत के साथ काम कर रही है। बारिश और डैमों से पानी छोड़ने की वजह से रियासत में कई नदियों की सतह आब बढ़ रही है। बाराबंकी में दरियाए घाघरा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि लखीमपुर खीरी में शारदा नदी और बदायूं में गंगा भी खतरे के निशान पर पहुंच गई। महकमे मौसमियात ने आज रियासत के मगरबी और मशरकी हिस्सों में बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की पेशेंगोई की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हेलो गृहलक्ष्मी।
3: दिल की धड़कने जब सुरों से मिलती हैं तो एक प्यारा सा नगमा बनती है, और जब वही नगमा आप तक पहुंचता है तो चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठती है।
4: सुरों का साथ अगर मौसम भी दे दे तो पूरा माहौल ही खुशगवार हो जाता है, क्योंकि बरसती बूंदों का अपना ही सुर, लय और ताल होती है जिससे पनपता है मन को सुकून देने वाला संगीत।
3: और इसी मुस्कान, इन्हीं मीठी बातों और आपके पसंदीदा गीतों का गुलदस्ता सजाने आए हैं हम, मैं दीप्ति मिश्रा
4: और मैं कंचन पांडे,
3: और आपके अपने इस पसंदीदा कार्यक्रम हेलो गृहलक्ष्मी में नमस्कार
4: नमस्कार स्वागत।

0: करते हैं हम अपने सभी श्रोता साथियों का उनके चहेते कार्यक्रम में। इस बार हम जो दो फिल्में लेकर आए हैं वो है 2019 में प्रदर्शित फिल्म बाटला हाउस और 2021 में प्रदर्शित फिल्म शेरशाह। तो इन दो फिल्मों से अपने मनपसंद गीतों की फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है
1: 0532-2423-649 और दूसरा नंबर है हमारा 0532-2970-462। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपनी फरमाइशों को। हमारा नंबर है 8004962-50 पर।
0: और देखिए, हमें संकेत मिल रहा है अपने पहले कॉलर का जिन्होंने हमें फोन मिलाया है। हेलो हेलो हेलो
2: हाँ हेलो
0: जी हाँ, अपना शुभ नाम बताएं।
2: हाँ मैडम नमस्ते, मैं संगम नगरी प्रयागराज हवेलिया झुमकी से महेंद्रनाथ कुशवाहा बोल रहा हूँ।
0: अच्छा महेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में और आज के आप हमारे पहले श्रोता हैं, तो हाँ, बताइए कैसा लगता है आपको हमारा कार्यक्रम?
2: अरे मैडम कार्यक्रम हेलो सहेली हो चाहे वाली हो, मतलब प्रयागराज के कार्यक्रम सभी अच्छे लगते हैं। चाहे हेलो अनुरोध हो, लोग माधुरी वगैरह कोई भी हो, गाने सब बढ़िया लगते हैं।
0: संगीत के प्रेमी हैं आप?
2: हाँ सर,
0: संगीत प्रेमी हैं आप?
2: हाँ हाँ मैडम, सब एकदम बढ़िया है। और शेरशाह सूरी वाला गाना, शेरशाह का
0: गीत सुनना चाहेंगे? बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
2: कोई गाना जो बढ़िया हो मैडम वही गाना सुनवा दीजिए। कनम से आप कुछ नाम भी ले लें थोड़ा सा, सुनीता कुशवाहा और दीपिका कुशवाहा, शुभम कुशवाहा, सीएम कुशवाहा, सत्यम कुशवाहा।
0: जी जी बिल्कुल, इन सभी लोगों के लिए आपका ये गीत उनकी हम नजर करते हैं। लीजिए, इंजॉय करिए अपना फेवरेट ट्रैक।
2: थैंक यू मैडम, नमस्ते
0: नमस्ते।

0: अभी आप सुन रहे थे कारगिल युद्ध के महान नायक कैप्टन विक्रम बत्रा की शहादत पे बनी ये फिल्म शेरशाह का गाना। और हम इसी के साथ हमारे दूसरे कॉलर हमसे जुड़ गए हैं। हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताएं।
1: आपका नेम श्वेता, धीरज गबारी बात कर रहा हूँ।
0: अरे वाह धीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज आपसे बात करने का मौका मिला हमें। कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ, और मेरे ख्याल से कंचन जी और दीप्ति जी
0: जी,
1: और
0: जी बिल्कुल
1: जी सर और पूरी टीम अच्छे होगी।
0: बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सब अच्छे से हैं। और आप बताइए कैसा है?

0: मौसम इस समय गुजरात का।
1: मौसम देखा जाए तो बिगड़ा है मौसम। बारिश बहुत हो रही है अहमदाबाद में, कल ज्यादा थी, कल
0: अच्छा
1: भगवान ने रेन कोस्टल बचा लिया, क्योंकि बारिश रुकने से पानी जो भरा हुआ था वो निकल गया, वरना जल भराव के थोड़ा बहुत निकलने को तकलीफ पड़ती, लेकिन ऊपर वाले ने सुन ली और जल भराव कम हो गया। अभी बारिश है लेकिन धीमी गति से,
0: जी
1: यानी कोई
0: जी
1: नुकसान करता नहीं है,
0: जी
1: लेकिन जम के
0: मौसम
1: बारिश
0: ही
1: हुई कल।
0: है धीरज जी, मौसम ही है बारिश का, तो वो तो होना ही है। ये
1: जी
0: बताइए
1: जी
0: कि आज दो फिल्में हैं हमारे पास, बाटला हाउस और शेरशाह। कौन सी फिल्म का कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: बाटला उसका गाना सुनना है,
0: जी
1: कोई भी गाना हो तो चलेगा।
0: अच्छा,
1: और
0: आपने फिल्म देखी थी?
1: नहीं, हम मैं देखा जाए तो मेरी उम्र 57 साल है और मैं पुरानी फिल्म देखता हूँ,
0: अच्छा
1: लेकिन
0: अच्छा
1: नई नई फिल्में भी अच्छी होती है,
0: जी
1: और
0: जी
1: आज के जो जनरेशन है, आज के जो युवा पीढ़ी है,
0: जी जी
1: उनके लिए फिल्में अच्छी बनती है, और समय जाते सब कुछ बदलता है, फिल्में भी बदलती है,
0: जी
1: फिल्में की जो पटकथा वो भी बदलती है,
0: जी
1: लेकिन हमें पुरानी फिल्में ज्यादा पसंद है।
0: जी जी आपने हमने फोन किया, और सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। बहुत बहुत
1: धन्यवाद।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप ट्यून्ड हैं 100.3 FM पर और कार्यक्रम है हेलो गृहलक्ष्मी। तो अब हम ये भी बताते चलें भाई, आज हम जो दो फिल्में लाए हैं, शेर शाह और बाटला हाउस जी, तो इसमें से शेर शाह जो थी वो परम वीर चक्र विजेता विक्रम बत्रा जी की कहानी पर आधारित है, उनके जीवन लीला पर आधारित है ये फिल्म। शायद हमारे एक कॉलर का संकेत आ गया है, कोई कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो
1: मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, आप अपना शुभ नाम बताएं।
1: रेडियो से है दोस्ती आकाशवाणी से, रेडियो से है दोस्ती आकाशवाणी से, होठों पे है मुस्कान है निखारे, कुंडा प्रतापगढ़ नाम है मेरा राज, इसी बात की दीप्ति और कंचन को हमारा प्यार।
2: आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में राजेंद्र जी।
0: जी राजेंद्र जी, तो क्या कर रहे हैं आजकल आप?
1: बस मैं क्या करूं, कुछ जोर पकड़े हुए हैं।
0: हाँ, आवाज आपकी कट रही है राजेंद्र जी, एक बार और बताएं।
1: खेती बाड़ी का काम चल रहा है।
0: नहीं, वही हम पूछ रहे हैं, खेती बाड़ी में आजकल आपकी धान की रोपाई बढ़िया चल रही है?
1: जी मैम जी।
0: तो ये बारिश आपको कितना सहयोग कर रही है इसमें?
1: बहुत सहयोग कर रहे हैं।

0: तो बस
1: 90% बारिश।
0: तो इसी बारिश ने जो आपको माहौल दिया है खुशी का, ऐसे हम भी अपने संगीत से आपको खुश करना चाहते हैं। बताइए, दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: शेरशाह का कोई सा भी।
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आपके लिए आपका पसंदीदा ट्रैक आपके रेडियो सेट पर, एंजॉय करिए।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते राजेंद्र जी।

0: बी प्राग द्वारा गाया ये गीत आंखों में आंसू और दिल में देश प्रेम की भावना भर देता है। इसी गीत के साथ हमारे कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी बताइए, अपना शुभ नाम बताएं।
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार, अपना नाम बताएं।
1: जी मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है।
0: अच्छा वीरेंद्र कुमार जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: कौशाम्बी ग्राम से कहीं मधेपुर।
0: अच्छा अच्छा, कौशाम्बी से। तो कैसा मौसम है वहाँ पर वीरेंद्र जी इस समय?
1: यहाँ तो कभी कभी बारिश होती है, धूप भी निकल जाती है।
0: जी जी, तो आप बताइए कि हमारे पास आज दो फिल्में हैं, बाटला हाउस और शेर शाह। इन दो फिल्मों से कौन से गीत आप सुनना चाहेंगे? और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या इन दो फिल्मों के बारे में आपको पता है, क्या आपने देखी है?
1: जी हम नहीं, हम तो नेत्रहीन हैं।
0: जी ठीक है, आप नेत्रहीन हैं, लेकिन हमसे एक जिज्ञासा है आपसे, एक प्रश्न की, कि आप ये फोन कैसे मिलाते हैं हमसे, हमसे कैसे बात होती है आपकी?
1: जी मैं आपका कार्यक्रम मोबाइल पे सुनता हूँ, एफएम पे।
0: जी जी, नहीं हमारा
1: और
0: फोन
1: मेरे
0: नंबर,
1: पास कीपैड फोन है।
0: अच्छा मोबाइल फोन आप खुद मिलाते हैं उसको?
1: हाँ जी, बटन वाला फोन है ना, उसमें से लगा लेते हैं।
0: कितना हमको सुनने में कितना साहसिक लगता है ना कंचन जी?
2: बहुत अच्छा लगता है कि संगीत के प्रति और हमारे कार्यक्रमों के प्रति आपका इतना प्रेम है, ये हम लोग को भी बहुत बल देता है वीरेंद्र जी। और जहाँ तक मुझे याद है वीरेंद्र जी, आपसे पहले भी बात हुई और आपने भी कुछ गुनगुनाया है हमारे लिए, क्यों?
1: जी आप कंचन मैडम बोल रही हैं?
2: जी जी हाँ बिल्कुल
1: जी।
2: तो आपने भी कुछ हमें सुनाया है, दो लाइन फिर से कुछ सुनाएंगे?
1: जी गीत सुनाना चाहते हैं।
2: बिल्कुल, तो सुनाइए।
1: फिल्म संगीत का कार्यक्रम है।
2: हाँ हाँ बिल्कुल।
1: जो भी कसमें खाई थी हमने, वादा किया।

0: मुझे याद है।
1: वाह क्या बात है, इसीलिए देखिए मुझे भी याद है, आपने इतना अच्छा गाया था कि मुझे भी याद है कि आप गाते हैं, और अपनी इस कला को हमेशा आप बरकरार रखिएगा। और आज अब हमारी तरफ से ये एक गिफ्ट है आपके लिए कि बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे दोनों फिल्मों में से।
0: जी फिल्म का नाम क्या?
1: बाटला हाउस और शेरशाह।
0: वाटला हाउस का कोई भी गाना।
1: ठीक है, चलिए तो फिर इंजॉय करिए अपना फेवरेट गीत, सुनिए।
0: जी जी ओके।

0: और अपनी इस कला को हमेशा आप बरकरार रखिएगा। और आज अब हमारी तरफ से ये गिफ्ट है आपके लिए कि बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे दोनों फिल्मों में से,
1: जी फिल्म का नाम क्या?
0: बाटला हाउस और शेरशाह।
1: वाटला हाउस का कोई भी गाना।
0: ठीक है, चलिए तो फिर इंजॉय करिए अपना फेवरेट गीत, सुनिए।
1: जी जी ओके।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी हाँ हेलो, स्वागत
1: जी
0: है
1: सर,
0: आपका।
1: मैं प्रयागराज से सुरेंद्र यादव जी बोल रहा हूँ।
0: जी, सुरेंद्र जी स्वागत है आपका। प्रयागराज से ही बोल
1: बांका
0: रहे हैं
1: जलालपुर,
0: आप या आसपास किसी इलाके से?
1: प्रयागराज महुआ में बांका जलालपुर। सर
0: अच्छा, क्या करते हैं आप सुरेंद्र जी?
1: ये खेती हो रही है, धान लग रहा है।
0: तो आजकल तो बिल्कुल आपकी व्यस्तता बढ़ी होगी धान की रोपाई में।
1: जी सर
0: और बारिश ने आपके लिए तो अच्छा एक अवसर दिया है धान के लिए, ये तो
1: हाँ
0: फेवरेबल
1: जी
0: है
1: मैडम।
0: जी। तो और बताइए, तो संगीत आप हमारा कार्यक्रम सुनते हैं या सिर्फ संगीत के ही प्रोग्राम सुनते हैं?
1: सुनता हूँ जी, पहलदार मेरा फोन लगी हुई है आपके पास।
0: हाँ,
1: हाँ
0: अच्छा,
1: जी
0: अरे
1: सर,
0: वाह, तो बताइए।
1: पहलदार मेरा लगा
0: हाँ, आज आपने पहली बार ट्राई किया
1: जी
0: है,
1: मैम।
0: वाह क्या बात है। देखिए, हमें भी आपसे बात करने का अवसर मिला इसी बहाने, तो ऐसे ही आप फ़ोन कॉल्स ट्राई किया करिए हमारे जितने भी फ़ोन इन प्रोग्राम्स होते हैं, ताकि हम भी आप लोगों से बातचीत कर पाएँ।
1: जी सर,
0: और ये बताइए सुरेंद्र जी, आज हम जो दो फिल्में लेकर आए हैं, बाटला हाउस और शेरशाह, तो कौन से फिल्म का गीत आप सुनना चाहते हैं?
1: बरसात का कोई भी फिल्म सुना दीजिए।
0: नहीं भैया, हम लोग दो फिल्में, पर्टिकुलर दो पिक्चर्स लेकर आते हैं हर बार अपने कार्यक्रम में, उन्हीं दो फिल्मों के कोई गीत आप चुनिए और बताइए।
1: सर कौन सा फिल्म का?
0: एक पिक्चर है बाटला हाउस और दूसरी फिल्म का नाम है शेरशाह।
1: पैसा की सुना दीजिए कोई भी
0: तो
1: गीत।
0: आपने ये फिल्म देखी है सुरेंद्र जी?
1: जी नहीं, सुना दीजिए
0: अच्छा,
1: सुनना
0: बिल्कुल, चलिए
1: चाहता
0: आप पहले इसका गीत एंजॉय करिए
1: जी सर मैम।
0: जी।

0: मेरी गल्ला हो गई मशहूर। कुछ लाइनें मैंने देखा कि कंचन जी आपने लिखी हुई हैं।
1: जी बिल्कुल, वो मैं कुछ संगीत के
0: हाँ
1: ऊपर
0: हाँ
1: कहना
0: हाँ
1: चाहती
0: हाँ
1: हूँ कि सुरों के बहते दरिया का नाम है संगीत, दिल की हर धड़कन का पैगाम है संगीत, जो रूह को छूकर सीधे खुदा से मिला दे, इंसानियत का सबसे खूबसूरत इनाम है संगीत।
0: और इसी संगीत की सरिता में हम लगातार अपने श्रोताओं को बहा ले जा रहे हैं। और इसी के साथ हमारे दूसरे कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार मैम,
0: नमस्कार, कहाँ से
2: मैं
0: बोल रहे
2: विकास
0: हैं?
2: साधनपुर प्रयागराज से,
0: हाँ, प्रयागराज से। जी, एक बार अपना नाम फिर से बताएंगे।
2: मैं विकास दादनपुर प्रयागराज से।
0: विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। कैसे हैं विकास जी आप?
2: बहुत अच्छे मैम, आप बताइए, आकाशवाणी परिवार कैसा है?
0: बहुत अच्छा है। आपकी हमारी आवाज़ आपको बता रही होगी कि हम कितने अच्छे हैं, और जब हमारे
2: बिल्कुल
0: श्रोताओं से हमारी बात होती है तो हम और भी अच्छे हो जाते हैं।
2: बिल्कुल,
0: जी, तो क्या करते हैं विकास जी आप?
2: हम ट्रक चलाते हैं।
0: अच्छा, तो इस समय आप प्रयागराज में हैं या कहीं रास्ते में हैं?
2: उदयपुर झीलों की नगरी में।
0: अरे
2: क्या
0: वाह,
2: बात
0: बहुत
2: है
0: खूबसूरत शहर।
2: विकास
0: क्या
1: विकास जी
0: वहाँ पर?
1: हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं, और
0: हाँ
1: हर बार इनका कॉल हमारे पास आता है और हमें हर बार उतनी ही खुशी होती है विकास जी से बात
2: जी,
1: करके।
2: आपका कार्यक्रम, हम सारे कार्यक्रम सुनते हैं,
1: जी
2: और आपकी पसंद कार्यक्रम जो मधु जी प्रस्तुत करती है, वो बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है।
1: वाह, क्या बात है। तो ये हेलो गृहलक्ष्मी आपको कैसा लगता है विकास जी, आप ये बताइए।
2: बहुत अच्छा लगता है मैम, जब आप लोगों की बातचीत होती है, जो उसमें खाने पीने की चीज बताती है, वो बहुत अच्छा लगता है।
1: और ये देखिए, हम मुख्यतः आपके लिए गीतों और संगीत का कार्यक्रम भी लेकर आए हैं। तो ये बताइए, आज हमने जो दो पिक्चरें रखी हैं, बाटला हाउस और शेरशाह, पहले तो ये बताएं किस फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे आज?
2: शेरशाह का कोई भी गीत?
1: तो ये फिल्म देखी है आपने?
2: नहीं मैम, देखी तो नहीं है, लेकिन इसके गाने जरूर सुने हुए थे। आप इसका कोई भी गाना चलाइए, चलेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप सफर में हैं या कहीं रुके हुए हैं उदयपुर
2: नहीं
1: में, मतलब
2: रुके,
1: इस वक्त आप ठहरे हुए हैं?
2: जी, एक होटल है, वहीं पर रुके हुए हैं।
1: अच्छा, नहीं तो बिल्कुल, आप हमारा अपने रेडियो सेट पे, अपने फोन के जरिए, जैसे भी आप सुन रहे हैं, अपना गीत ये इंजॉय करिए। हम शेरशाह का गीत आपके लिए प्ले करते हैं।

0: आप ट्यून है 100.3 FM पर अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो गृहलक्ष्मी में। देखिए हमसे एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, उनका कॉल लेते हैं और उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो,
1: प्रभाकर तिवारी
0: जी,
1: रसूलपुर गुलरहा पोस्ट रामनगर भोजपुर बाबा घुष्टन नाथ धाम जनपद प्रतापगढ़ से प्रभाकर तिवारी बोल रहे हैं।
0: क्या बात है प्रभाकर तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो आप हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते हैं?
1: हाँ मैडम जी, कार्यक्रम बड़ा अच्छा लगता है मैडम जी, अभी सुन रहे थे तो फोन मिला दीजिए मैडम जी।
2: अरे वाह, आपका फोन मिल गया, ये बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर लोग,
1: हाँ मैडम जी, कार्यक्रम बड़ा अच्छा आता है, सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे आते हैं मैडम जी, सब सुनते रहते हैं।
0: इसके लिए तो हम आपको बहुत दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप लोग हमारा कार्यक्रम सुनते हैं, पसंद करते हैं, और यही असली में हमारी ताकत भी है प्रभाकर जी।
1: हाँ मैडम जी,
0: आप जैसे श्रोता ही हमारे कार्यक्रम में चार चांद लगा देते हैं। तो ये बताइए, आज हम जो दो फिल्में लेकर आए हैं, बाटला हाउस और शेरशाह, कौन सी फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: शेरशाह का सुनवा दीजिए मैडम जी, कोई भी
0: गीत सुनवा दें आपको शेरशाह का। अच्छा, तो
2: गीत सुनवाने से पहले एक सवाल है प्रभाकर जी, ये जो शेरशाह मूवी है वो किसी की जीवनी पर आधारित है, क्या आपने फिल्म देखी है?
1: नहीं मैडम जी, पिक्चर फिल्म तो नहीं देखे हैं।
2: हाँ जी, विक्रम बत्रा जी जो कैप्टन थे हमारे कारगिल युद्ध में, महानायक जिनकी अदम्य साहस की ये सच्ची कहानी है, जिनका कोड नेम शेरशाह था, और इनका जो नारा था वो ये दिल मांगे मोर था, और ये पूरी फिल्म उन्हीं पे बेस्ड थी, उनके निजी जीवन और उनके सार्वजनिक जीवन दोनों से। तो शेरशाह का ये गीत हम आप तक पहुँचा रहे हैं।
1: नमस्ते मैडम।
2: नमस्कार, आपने फ़ोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप ट्यून्ड हैं 100.3 FM और आज आप सुन रहे हैं हेलो गृह लक्ष्मी में बाटला हाउस और है शेर शाह के गीत। हेलो
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते, अपना नाम बताएं।
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: अच्छा, उज्जैन से, महाकाल की नगरी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम हेलो गृह लक्ष्मी में। बताइए कैसे
1: जी,
0: हैं आप?
1: थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है।
0: अरे वाह, हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। क्या
1: जी
0: करते
1: आपको
0: हैं आप?
1: बताऊँ, खेती किसानी का काम करता हूँ और एक भजन गायक भी हूँ।
0: अरे वाह, भजन गायक हैं, तब तो हम अपने
2: तो
0: कार्यक्रम में
2: पंक्तियाँ
0: जरूर
2: भजन आपसे जरूर सुनना चाहेंगे हम।
0: बिल्कुल
1: जी, भजन तो सुना दूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ा घर से बाहर हूँ
0: जी।
1: और मोबाइल ऐप पर कार्यक्रम सुन रहा हूँ, तो यहाँ पे गाना ठीक नहीं रहेगा।
0: अच्छा,
1: जी
0: जी ठीक है,
1: लेकिन जब
0: अगली
1: नेक्स्ट टाइम
0: बार
1: लगेगा ना कॉल मेरा,
0: जी
1: तो मैं जब घर पे रहूँगा तो आपको जरूर सुनाऊंगा।
0: बिल्कुल, और हम इंतज़ार करेंगे कि आप नेक्स्ट टाइम हमें फ़ोन करें और आप हमें अपना एक अच्छा सा भजन ज़रूर
1: जी
0: सुनाएं। तो बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे हमारी इन दो फिल्मों से?
1: बाटला उसका सुनवा दीजिएगा, रुला दिया
0: अरे वाह, ये हमारे पास
1: जी।
0: अभी बचा हुआ था, बाकी तो बच चुके
1: हाँ
0: थे। धन्यवाद हमारी जो उहा पोह थे उसको ख़त्म करने के लिए।
1: जी, लेकिन मैं आपको बताऊं, हमको किसी ने भी नहीं रुलाया है, बड़ा खुश हूं मैं तो।
2: नहीं, आप ऐसे हंसते रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं।
1: जी, क्योंकि
0: जी
1: सॉन्ग ही ऐसा है कि रुला दिया, तो हम तो बड़ा खुश लग रहे हैं और आप भी खुश हो।
0: बिल्कुल, हम तो खुश हैं, हम तो अपने श्रोताओं से बात करके वैसे भी बहुत खुश हो जाते हैं।
1: जी हाँ, और यही तो कार्यक्रम की रोचकता होती है।
2: जी बिल्कुल,
0: जी, जी,
2: और
1: जी.
2: आप इतनी संजीदगी से, गंभीरता से हमारा कार्यक्रम सुनते हैं, उसे समझते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही प्रशंसनीय बात है।
1: जी हाँ, मोबाइल ऐप पे आने लगे ना कार्यक्रम, तो हमें
2: जी
1: हर राज्य के कार्यक्रम सुनने को मिल जाते
2: बिल्कुल
1: हैं।
2: बिल्कुल, ऐसे ही आप ज़रूर ट्यून रहा करिए, हमारे कार्यक्रम सुनते रहा करिए, यही
1: जी
2: आपसे गुजारिश है। और इसके साथ हम आपको भेजते हैं आपका पसंदीदा गीत आपके ट्रैक पर, आपकी मोबाइल फ़ोन पर। सुनिए, इंजॉय करिए।
1: जी थैंक यू सो मच।

0: हमको रुला दिया। खैर, ये पूरा प्रोग्राम आपको हंसाने के लिए है, लेकिन ये गीत वाकई बहुत खूबसूरत था, है ना कंचन जी?
1: बिल्कुल।
0: और इसी के साथ हमारे कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो।
1: हाँ हेलो
0: हाँ जी, अपना नाम
1: जी,
0: बताएं।
1: नमस्ते नमस्ते मैम
0: नमस्ते।
1: जी। महेंद्र यादव बोरो ठंडिया प्रयागराज से बोल रहा हूँ। इस समय मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली से मैं फोन लगाया हूँ।
0: अरे, इस समय आप दिल्ली में हैं, तो दिल्ली की क्या स्थिति है महेंद्र जी?
1: दिल्ली में स्थिति सब फिलहाल चल ही रहा है, इस समय छात्र आंदोलन ज्यादा करके चल रहे हैं।
0: जी, और मौसम
1: और
0: कैसा है?
1: मौसम जो है कि मौसम सुहाना मौसम है, बारिश है लेकिन बहुत ज्यादा बारिश नहीं है।
0: अच्छा, तो चलिए,
1: शेरशाह
0: इस सुहाने मौसम बताइए, किस फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: फिल्म का राता लंबिया लंबिया।
0: अच्छा, चलिए, बिल्कुल। और आपको बता दें, अब आप हमारे इस कार्यक्रम के आज के लास्ट कॉलर हैं, तो आपके पसंद के गीत के साथ ही हम इस कार्यक्रम का भी समापन करेंगे। तो हमें
1: जी
0: कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हम भी चाहते हैं कंचन जी कि ये रातें लंबिया लंबिया हो और हमारे श्रोताओं के साथ
1: जो
0: हमारी
1: बाता है वो भी लंबिया लंबिया हो।
0: और इसी के साथ जो ये समय का पहिया है इतनी तेजी से घूमता है ना कि जब शुरू की ये महफिल जमती है और अपनों से बातें होती हैं तो ये 45 मिनट कब बीत जाता है
1: पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। और भैया जो दोपहर की सुस्ती है ये आप सबसे बातें करके इन गीतों के साथ इतने खुशनुमा एहसास में बदल जाता है कि पता ही नहीं चलता ये कार्यक्रम कब शुरू हुआ और कब खत्म हो जाता है।
0: और इस खूबसूरत प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारी टेक्निकल टीम का साथ रहा और साथ ही हमारी अनाउंसर महोदय दीप्ति मिश्रा जी का साथ रहा और आपके लिए इस कार्यक्रम को होस्ट किया कंचन पांडे और दीप्ति मिश्रा ने और प्रस्तुति रही अभय कांत तिवारी जी की। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं अगली बार फिर से मिलने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।

0: The Dermatological Department, IMD, has issued a red colour warning for very heavy to extremely heavy rainfall over East Rajasthan, Gujarat and Madhya Maharashtra for the day. Heavy rainfall is also expected over Bihar, Karnataka, West Bengal, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh and Uttarakhand till tomorrow. Similar weather conditions will continue over northeast India during the next 2 days. IMD said thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds are likely to prevail over Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, West Bengal, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Kerala, Mahi and Telangana till tomorrow. For Delhi, the weather agency has forecast a spell of very light rain accompanied by strong surface winds for the day. Prime Minister Narendra Modi today extended his best wishes to the Indian contingent who are participating in the Commonwealth Games in Glasgow, Scotland. In a social media post, Mr. Modi expressed confidence that Indian athletes will compete with passion, determination and a spirit of excellence. The Prime Minister said the skills and dedication of the country's athletes continue to inspire countless Indians. India's Anahat Singh has entered the semi-finals of World Junior Squash Championships after beating Egypt's Habiba Rizk 11-7, 11-5, 6-11, 11-9 in the quarterfinals. With this win, Anahat has become the first Indian to reach back-to-back semi-finals in the World Juniors and a firm favourite to win the title. Benchmark domestic equity indices pared their initial losses and were trading around 0.5% lower in afternoon trade today. The Sensex slipped 403 points to 75,989 and the Nifty fell by 116 points to 23,754. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for strict action against paper leaks, assures early passage of bill for proposing fast-track courts and stricter punishments to culprits. Second round of talks between government and CJP begins at Constitution Club over NEET paper leak row. Showdown continues in Parliament over NEET paper leaks. Lok Sabha adjourned for the day amid opposition uproar. Supreme Court directs Centre and NTA to file detailed affidavits on progress made in implementing reforms after NEET UG paper leak. India calls out United Nations for ignoring repression in Pakistan-occupied Kashmir, accuses Islamabad for systematically crushing rights of the people. IMD forecasts very heavy to extremely heavy rainfall over East Rajasthan, Gujarat and Madhya Maharashtra today, and India's Anahat Singh enters semi-finals of World Junior Squash Championships. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पेपर लीक घटना के बाद 2.5 महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और सीजेपी के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमनकारी गतिविधियों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर निराशा व्यक्त की। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
2: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक

0: सुरक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के निर्णय की सराहना की है। श्री मेघवाल ने मीडिया से कहा कि इन अदालतों में मामलों की सुनवाई प्रतिदिन होगी।
1: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा को देश के शिक्षा प्रणाली के लिए मील का पत्थर बताया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तथा कई अन्य भाजपा नेताओं तथा कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की बातचीत जारी है। ये बैठक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर युवाओं के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद हो रही है। सीजेपी के प्रतिनिधियों सौरभ दास, आशुतोष रांका, अभिजीत दिपके और दीपक बलियान ने सरकार द्वारा उनकी दो शर्तों को स्वीकार करने के बाद वार्ता के लिए सहमति जताई है। ये शर्तें हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और हाल में हुई परीक्षाओं में अनियमितताओं से प्रभावित विद्यार्थियों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में आज लगातार पांचवें दिन नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। कई बार के स्थगन के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है।
2: पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूँ, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टी के एमपी भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज पांचवा दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते।
0: सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्ष को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इससे पहले नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला सहित सदन के सदस्यों ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
3: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया।
0: करगिल शहीदों की याद में सदन में मौन भी रखा गया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर शोर शराबे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा जारी रखा। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है।
4: On this occasion, this house pays its respectable homage to the gallant martyrs who made the supreme sacrifice in service of the nation. We also express our profound gratitude to all the members of the armed forces.
0: राज्यसभा में भी शहीदों के सम्मान में मौन रखा गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जब तक शिक्षा मंत्री को पद से नहीं हटाया जाएगा, विपक्ष नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले पर किसी भी चर्चा में हिस्सा नहीं लेगा। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि छात्रों की तीन प्रमुख मांगे हैं, जिनमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी शामिल है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने

0: नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज नई दिल्ली सहित 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन नई दिल्ली स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बारे में धमकी भरे बयान देने के वीडियो का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो फर्जी है और एआई से बनाई गई है। इकाई ने बताया कि श्री गोयल ने प्रदर्शनों के संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी के एक वीडियो को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस वीडियो को फर्जी और डीप फेक बताया है। वीडियो में दावा किया गया है, जो गलत है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर जनरल पुरी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के विरोध प्रदर्शनों के बीच राजधानी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। चेन्नई के पास मधुरंथकम में आज एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। पुडुचेरी से चेन्नई जा रही एक कार की लॉरी से टक्कर के कारण ये दुर्घटना हुई। हादसे के समय पिता और पुत्र सहित 3 लोग चेन्नई हवाई अड्डे जा रहे थे। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा जारी है। पहंडी अनुष्ठान पूरा हो चुका है और तीनों देवी देवताओं को विधिपूर्वक उनके अपने अपने रथों पर विराजमान कर दिया गया है। अन्य पारंपरिक अनुष्ठानों के संपन्न होने के बाद रथों को खींचने की प्रक्रिया शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
1: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पहंडी रस्म सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और इन भाई बहन देवताओं को बाहुड़ा यात्रा, श्री जगन्नाथ मंदिर वापसी की शुभ यात्रा के लिए उनके रथों पर विधिवत विराजमान किया गया है। श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक फैली पूरी ग्रांड रोड लाखों भक्तों से खचाखच भरी हुई है। वापसी की यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसी माँ मंदिर पर पारंपरिक रूप से रुकेगा, जहां भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @eairnewshindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि प्रस्तावित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता व्यापार, निवेश और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देकर आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।
2: इंडिया EU फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन इन इंडिया EU स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन आर सेंट्रल टू द कंटेम्पोररी पार्टनरशिप विथ ए कंबाइंड मार्केट ऑफ नियरली 2 बिलियन पीपल एंड एन इकोनॉमिक जोन ऑफ अराउंड 25 ट्रिलियन डॉलर्स। द इंडिया EU FTA इज एमंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक पार्टनरशिप इन द वर्ल्ड।
0: भारत

0: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित दमन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया को लेकर निराशा जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने कहा कि कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी घटनाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है। ये टिप्पणी पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश के बाद आई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 403 अंक गिरकर 75,989 जबकि निफ्टी 116 अंक गिरकर 23,754 पर पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिस्क को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बार्ब समेह से खेलेंगी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात में पिछले 3 दिन से मूसलाधार वर्षा के कारण राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त है। एक रिपोर्ट।
1: दक्षिण गुजरात में 2 दिन तक भारी बारिश के बाद आज उत्तर गुजरात में भी भारी बारिश हो रही है। पिछले 6 घंटों में उत्तर गुजरात के वाओथरा और पाटन जिलों में 6 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। सुबह से अब तक राज्य के 239 तहसील में बारिश हुई है। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए अहमदाबाद, नवसारी और वलसाड में NDRF SDRF की कुल 49 टीमें और भारतीय सेना की 6 टीमें तैनात की गई है। दूसरी ओर राज्य में भारी बारिश के बीच राहत और बचाव का काम भी जोरों पर चल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक घटना के बाद 2.5 महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और CJP के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं NCERT की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश, आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जीवन के दुख हमें सुधरने और आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, जबकि जीवन में लगातार सुख कभी कभी हमारे आत्म विकास में बाधा बन सकता है।
3: आपने बहुत सुंदर विचार भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी जी,
3: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
2: भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा,
3: और गाँव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, अनाया गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और बेटी प्रियांशी।
2: अयोध्या धाम से राजबाबू शर्मा, रामबाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीना पांडे और विनय शंकर पांडे के साथ साथ नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: धन्यवाद आप सबको और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में।
3: श्रोताओं,

0: आज हम चर्चा करेंगे दक्षिण भारत के एक अनूठे उत्सव की।
1: अब तक हमने असम, नागालैंड और झारखंड के उत्सवों की चर्चा की। आज रुख करते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहां का अनूठा उत्सव है कैल पोध। ये उत्सव कर्नाटक राज्य के कुर्ग क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
0: तो श्रोताओं, आपको बता दें कि कुर्ग भारत के सबसे सुंदर और रमणीय स्थानों में से एक है। यहाँ की हरी भरी वादियाँ और पर्वतीय प्राकृतिक सुंदरता सबका मन मोह लेती है।
1: जी,
0: यहाँ के खूबसूरत कॉफी के बाग दुनिया भर में जाने जाते हैं, इसीलिए कुर्ग को कर्नाटक का स्कॉटलैंड कहा जाता है।
1: इसी कुरुक्षेत्र में रहती है कोडावा जनजाति। कोडावा लोग प्राचीन भारत में योद्धा समुदाय माने जाते थे और इनकी वीरता की गाथाएं वहां की लोक कथाओं में भी मिलती हैं।
2: भारतीय सेना में भी इनका योगदान बहुत अहम रहा है।
1: तो हम बात कर रहे थे कैल पोध उत्सव की। सबसे पहले जानते हैं कि कैल पोध का क्या अर्थ है।
0: श्रोताओ, कैल का मतलब है हथियार या उपकरण और पोध का मतलब है उत्सव, यानी हथियारों और उपकरणों का उत्सव। यह हर साल 3 सितंबर को मनाया जाता है। तब तक धान की रोपाई हो चुकी होती है।
1: उस दिन कड़ावा जनजाति के लोग

0: योगदान बहुत अहम रहा है। तो हम बात कर रहे थे कैलपोध उत्सव की। सबसे पहले जानते हैं कि कैलपोध का क्या अर्थ है।
1: श्रोताओ, कैल का मतलब है हथियार या उपकरण और पोध का मतलब है उत्सव, यानी हथियारों और उपकरणों का उत्सव। यह हर साल 3 सितंबर को मनाया जाता है। तब तक धान की रोपाई हो चुकी होती है।
0: उस दिन कड़ावा जनजाति के लोग अपने घर से हथियार और कृषि के उपकरण निकालते हैं, उन्हें फूलों से सजाते हैं। फूलों में खासकर फ्लेम लिली फूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो वहाँ प्रचुरता से पाया जाता है। अब थोड़ी सी जानकारी फ्लेम लिली फूल के बारे में।
1: श्रोताओ, ये भारत, अफ्रीका और एशिया के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला अत्यंत आकर्षक और दुर्लभ फूल है।
0: जी,
1: इसकी पंखुड़ियाँ तेज लाल और पीले रंग की होती हैं, जो आग की लपट की तरह दिखाई देती हैं। इसी कारण इस फूल का नाम फ्लेम लिली पड़ा।
0: जी,
1: कुर्ग की वादियों में जब ये फूल खिलते हैं तो बहुत ही मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ये फूल तमिलनाडु का राजकीय फूल भी माना जाता है।
0: उत्सव के दिन मवेशियों को भी नहला धुलाकर फूलों से सजाया जाता है और उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है, क्योंकि वे खेती बाड़ी के कार्य में सबसे बड़े मददगार हैं।
1: बता दें श्रोताओं कि हथियारों की पूजा से संकेत हिंसा का नहीं है, लेकिन सुरक्षा का है।
0: जी,
1: वे हथियारों के प्रति आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में किसी भी आक्रमण के समय उनके कारण ही, यानी हथियारों के कारण ही सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी थी।
0: जी,
1: साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पुराने समय में उन्हें अपने परिवार, पशुओं और गांव की रक्षा खुद करनी होती थी। इसी कारण हथियार उनकी सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक बन गए।
0: कैलपोध उत्सव में कृषि उपकरणों का भी सम्मान किया जाता है, क्योंकि वे भी खेतीबाड़ी का प्रमुख माध्यम हैं। पूजा के बाद कुरुक्षेत्र में जगह जगह पर समारोह होते हैं। जगह जगह पर विशेष साज सज्जा के साथ मेले लगते हैं। कोडावा समुदाय की वीरता की कथाओं की झांकी प्रस्तुत की जाती है।
1: श्रोताओं, कोडावा संस्कृति से संबंधित चित्रकला और नृत्यों का भी सामूहिक प्रदर्शन होता है। उस दिन कोडावा पुरुष अपनी पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, जिन्हें चक्कली कहा जाता है।
0: कैलपोध उत्सव के दिन पारंपरिक व्यंजनों की भी भरमार रहती है। चावल की बनी कंडबट्टू विशेष लोकप्रिय है। इस दिन लोग एक दूसरे को फूलों की भेंट देकर सम्मानित करते हैं।
1: श्रोताओं, कैलपोध उत्सव कोडावा जनजाति की योद्धा संस्कृति, कृषि जीवन और गौरवशाली परंपराओं की याद दिलाता है।
0: ये भारत के दुर्लभ उत्सवों में से एक है, जहां हथियारों की पूजा हिंसा के लिए नहीं बल्कि सामाजिक कर्तव्य, सुरक्षा और आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में की जाती है।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, कैलपोध उत्सव कहाँ और किनके द्वारा मनाया जाता है और कैलपोध शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कैलपोध उत्सव कहाँ और किनके द्वारा मनाया जाता है और कैलपोध शब्द का क्या अर्थ है?
1: 8800-440-5559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
0: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है दो मेंढकों की यात्रा।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक जापानी मनोरंजक हास्य लोक कथा पर आधारित है, जिसमें दो मेंढकों की मजेदार यात्रा का वर्णन किया गया है।
1: दो मेंढकों की यात्रा।
2: नमस्कार साथियों, आज हम आपसे साझा करने जा रहे हैं एक मजेदार जापानी लोक कथा। कुछ समय पहले की बात है, जापान में दो मेंढक रहते थे। एक मेंढक ओसाका नगर के पास एक छोटे से खड्ड में रहता था और एक क्योटो नगर के बाहर एक छोटे से तालाब में निवास करता था। एक दिन ओसाका नगर के मेंढक के मन में एक विचार आया।
3: क्या वही शहर, वही गलियां, वही लोग, इस जगह पर रहते रहते अब बहुत दिन हो गए हैं। मुझे जरा बाहर निकलकर दुनिया देखनी चाहिए।
2: ये संयोग ही था कि उसी समय क्योटो में रहने वाले मेंढक के मन में भी यही विचार आया कि उसे भी बाहर निकलकर कुछ भ्रमण करना चाहिए। अगले ही दिन दोनों मेंढकों ने अपनी अपनी यात्रा शुरू कर दी। दोनों नगरों को जोड़ने वाला एक ही मार्ग था। रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। ओसाका के मेंढक ने क्योटो के मेंढक से पूछा,
3: तुम कहाँ जा रहे हो मित्र?

0: मित्र, मैं ओसाका जा रहा हूँ। और तुम?
1: मैं क्योटो जा रहा हूँ।
2: दोनों मेंढकों ने लंबा रास्ता तय किया था। वे बहुत थक भी गए थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना थोड़ा आराम भी कर लिया जाए। वे पास स्थित एक बड़ी सी चट्टान की छाया में जा बैठे और बातचीत करने लगे।
1: यहाँ थोड़ा आराम है, थोड़ा सुस्ता लिया जाए, हैं? तो जरा मुझे भी बताओ कि यहाँ तक की यात्रा कैसी रही?
0: भाई, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। रास्ता बहुत सुंदर है। तुम तो जानते ही हो कि ये चेरी ब्लॉसम का समय है। चारों ओर चेरी के फूलों की भरमार है। और हाँ, जब मैं एक पहाड़ी के पास से गुजर रहा था ना, तो ट्रेन भी देखी। वहाँ रहने वाले एक मेंढक भाई से पूछा तो उसने बताया कि इसे बुलेट ट्रेन कहते हैं। क्या तेज गति थी। जब तक मैं ठीक से देख पाता तो वो गायब हो गई। कहते हैं कि इस ट्रेन से सिर्फ 15 से 20 मिनट में ओसाका से क्योटो पहुंचा जा सकता है।
1: भाई वाह।
0: अब तुम अपनी यात्रा के बारे में भी तो बताओ।
1: मेरी यात्रा भी बड़ी अच्छी गुजरी।
0: अच्छा,
1: पूरे रास्ते में हरी भरी प्रकृति और साफ सुथरे शहर। और हाँ, मैंने भी रास्ते में चेरी ब्लॉसम के फूल देखे।
0: वाह,
1: हल्के गुलाबी और सफेद रंग के ये फूल बहुत सुंदर हैं। सुना है इन फूलों को हमारे देश की पहचान माना जाता है। बहुत अच्छा हुआ जो मैंने यात्रा करने का निर्णय लिया, वरना मैं तो वहीं खड्ड में पड़ा रह जाता।
0: ये तो है।
2: दोनों मेंढक एक दूसरे को अपनी यात्रा का हाल सुना रहे थे। अचानक ओसाका के मेंढक के मन में एक विचार आया। वो बोला,
1: मित्र, कितना अच्छा होता यदि हमारा आकार थोड़ा और बड़ा होता।
0: क्यों? आकार बड़ा होने से क्या होने वाला है?
1: आकार बड़ा होने से हमें इतनी यात्रा तो नहीं करनी होती।
0: हैं? वो कैसे?
1: अरे भाई, मैं समझाता। आकार बड़ा होता तो हम किसी भी पहाड़ पर चढ़कर देख लेते कि जहां हम जा रहे हैं वे शहर देखने लायक भी हैं या नहीं।
0: हाँ, कहते तो तुम ठीक हो, पर इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये काम तो हम अभी भी कर सकते हैं।
1: वो कैसे?
0: अरे वो ऐसे कि हम पास के पहाड़ पर चढ़कर एक दूसरे का सहारा लेते हुए अपने पिछले पांवों के सहारे खड़े हो जाएं। हाँ, इससे हमारा आकार भी बड़ा हो जाएगा और फिर हम आसानी से उन शहरों को देख सकेंगे जहाँ हम जाना चाहते हैं।
1: भाई वाह।
2: दोनों मेंढक इतने उत्साहित हुए कि वे उछलते हुए पास के एक पहाड़ पर चढ़ने लगे। दोनों बड़ी मेहनत के बाद एक पहाड़ के शिखर पर जा पहुंचे। लंबी और ऊंची चढ़ाई के कारण दोनों काफी थका हुआ महसूस कर रहे थे।
1: बड़ा ऊंचा पहाड़ है। पसीने आ गए, चारों टांगे दुख रही हैं।
0: ये तो है। चढ़ते रहो, चढ़ते रहो।
3: बड़ी मुश्किल चढ़ाई थी। चलो, पहुंचे तो सही।
0: वो तो है, लेकिन मित्र, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हाँ, क्योंकि अब हम शिखर से उन शहरों को देख सकेंगे।
3: मैं क्योटो देखूंगा।
0: और मैं ओसाका।
3: क्यों नहीं, चलो
0: चलो।
2: तो साथियों, हुआ ऐसा कि ओसाका के मेंढक ने उछलकर अपने अगले पैरों को क्योटो के मेंढक के कंधों पर रख दिया और क्योटो के मेंढक ने भी ऐसा ही किया। अब दोनों मेंढक अपने पिछले पैरों पर खड़े थे। उनके अगले पैर एक दूसरे के कंधों पर थे। दोनों ने गिरने के डर से एक दूसरे को कसकर पकड़ रखा था।

0: ध्यान से।
1: चलो
0: संभल कर
1: कहीं गिर ना पड़े मित्र। ये ठीक है।
2: बचे।
3: यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन दोनों ने एक बात की ओर ध्यान नहीं दिया था कि उन्होंने अपनी पीठ उन्हीं शहरों की ओर कर रखी थी जिन्हें वे देखना चाहते थे। इस प्रकार ओसाका से आया हुआ मेंढक ओसाका को ही देख रहा था और क्योटो से आया हुआ मेंढक क्योटो को।
0: हैं? ये क्या? क्योटो तो बिल्कुल ओसाका की तरह दिखाई पड़ता है, अब तुम्हें क्या दिखता है मित्र?
1: क्या बताओ मित्र, मुझे भी ओसाका क्योटो की तरह ही दिखाई दे रहा है।
2: ये तो सचमुच बड़ा धोखा हुआ। मुझे लगता है यहाँ तक आकर मेरा समय ही नष्ट हुआ। मैं तो उसी खड्ड में ही ठीक था
1: और मैं उसी छोटे से तालाब में ही ठीक था। क्या लाभ हुआ इतनी यात्रा करने से, इतना कष्ट सहने से। चलो चलो यहाँ से।
0: हाँ चलो।
3: फिर क्या था, दोनों मेंढक अपने अपने घर वापस लौट गए। तो साथियों, अभी आपने सुनी ये जापानी लोक कथा, आशा है आपको पसंद आई होगी। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा सोचिए, इन दो मेंढकों की यात्रा क्यों व्यर्थ हुई? किसी यात्रा से पहले हमें किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इसकी एक सूची बनाइए। क्या आपके क्षेत्र में कोई ऐसी हास्य प्रधान लोक कथा है जिससे ये संदेश मिलता हो कि यदि कोई कार्य सोच समझकर नहीं किया जाए तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? जापान के क्योटो और ओसाका शहरों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए और पता लगाइए कि वे क्यों प्रसिद्ध हैं।
4: अभी आपने सुना कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम दो मेंढकों की यात्रा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान, कलाकार मुइनुल हसन नियाजी, वैभव श्रीवास्तव और ममता मलकानी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सौम्या मलिक। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। आशा है श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: आइए अब चलते हैं एक और यात्रा में कार्यक्रम नमक के साथ।
2: इस कार्यक्रम में भारत पाक विभाजन के पश्चात एक स्त्री की यात्रा के बारे में बताया गया है। जब वो पाकिस्तान से भारत आती है, उसने महसूस किया कि बेशक दोनों देशों के बीच सीमाएं खींच दी गई हैं, लेकिन लोगों के हृदयों में आज भी कोई सीमा रेखा नहीं है।

0: गुड़िया मैंने छिपा तो दी, अगर कस्टम वालों ने खोज ली तो? नहीं नहीं, ऐसा करती हूँ मैं ये गुड़िया हाथ में ले लेती हूँ, मैं खुद ही बता देती हूँ उन्हें। हाँ ये ठीक रहेगा।
1: अच्छा बाजी, अब लाहौर कब आएंगे आप?
0: मालूम नहीं राहिल, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं।
1: अरे कहाँ जा रही हैं बाजी आप?
0: नमक का मोल पूछने।
2: आइए आइए जनाब, आप आइए, इधर आइए, इधर आइए। ए जनाब, आपसे कह रहा हूँ, आप इधर आइए। हाँ हाँ ठीक है।
0: लगता है यही कस्टम ऑफिसर है, इन्हीं से बात करती हूँ। सुनिए
2: जी, फरमाइए।
0: अब आप कहाँ के रहने वाले हैं?
2: मेरा वतन दिल्ली है, आप भी तो हमारी तरफ की मालूम होती, अपने अजीजों से मिलने आई होंगी।
0: जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी, वो लोग इधर ही आ गए हैं। आप
2: जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है।
0: अब जी ये थोड़ा सा लाहौरी नमक।
2: नमक? देखिए, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। और हाँ, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा, और जिन खातून के लिए आप ये नमक लेकर जा रही हैं, उन्हें मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा।
0: जी शुक्रिया।

0: चलो, खैरियत से दिल्ली तो पहुंच गई।
1: आप इधर आइए, इधर आइए।
2: मैं जनाब,
1: आप
2: लीजिए जनाब,
1: अपना सामान चेक कराइए।
2: लो जनाब, देख लो जनाब, हो गया जनाब, जाएं।
1: हाँ ठीक है,
2: ठीक है जी, खुदा।
1: आप भी इधर आइए, दिखाइए सामान।
0: साहब, मैं एक गैर कानूनी चीज, ये देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा।
3: आप इधर आइए।
0: हाँ जी,
4: हमको पूरा बात समझ में आ गया। चाय खाबो?
0: हाँ?
4: माफ कीजिए, चाय पियेंगे क्या आप?
0: नहीं,
4: मैं आपको कमाल का चीज दिखाता हूँ।
0: जी?
4: मेरे पास नजरुल इस्लाम और रविंद्रनाथ टैगोर की ये किताबें। जी हाँ, ये मेरे मित्र सुनील दास गुप्ता ने 1946 में तोहफे के तौर पर दिया था।
0: तो साहब, क्या आप ईस्ट बंगाल के हैं?
4: हाँ, मेरा वतन ढाका है। जब डिवीजन हुआ तभी आए। मैं कोई 12-13 साल का था। ढाका में दोस्तों के साथ नजरुल इस्लाम को खूब मन से पढ़ता था। मेरा वतन ढाका है। और नमक, इसका वतन कौन सा? आपको राज का बात बताऊं? हम डाब आज भी अपने वतन ढाका का ही पीता है, किसी से कहना मत। वतन तो कस्टम वालों का होता है, इंसानों का वतन यहाँ दिल में है, दिल में।
0: सही कहा साहब, इंसानों का वतन यहाँ दिल में है। मोहब्बत नमकीन भी तो होती है ना साहब।

0: इन आंसुओं की तरह।
1: नक्शे पर लकीर खींच देने से जमीन और लोग बट नहीं जाते।
0: ठीक कहते हो साहब।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नमक, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार,
1: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में 3 बजने को हैं। हमारी आज की ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। अगली सभा में शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। हमारे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। 5 बजे हैं, अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में नन्हे मुन्ने सुनेंगे अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया।

0: बच्चों
1: जय
0: जय हिंद।
1: हिंद।
0: दीदी, अपने नन्हे साथियों से मिलने का कितना इंतजार रहता है ना हमको,
1: बिल्कुल
0: और उनसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को।
1: बिल्कुल सही कहा दीप्ति दीदी आपने। जब हम इतने छोटे थे तो हम भी अपने साथियों से कितनी बातें करते थे ना, कितना मजा आता था।
0: बहुत मजा आता था। पर कंचन दीदी, बचपन से लेकर अभी तक मुझे एक बात बिल्कुल पसंद नहीं रही,
1: वो क्या?
0: ये कि जब भी कोई कुछ बात कर रहा होता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, इंक्लूडिंग मैं भी, जो बीच में ही बात को काट देते हैं, अपनी बात कहने ही नहीं देते हैं।
1: वाह, आप कितनी अच्छी हैं दीप्ति दीदी, अपनी गलती को बता रही हैं ना। लेकिन ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, ऐसे व्यवहार पे भाई गुस्सा तो आता है ना। पता है ऐसा क्यों होता है?
0: क्यों भला?
1: क्योंकि ऐसे लोग जो बातचीत के दौरान बात काटते हैं ना, वो अच्छे श्रोता नहीं होते हैं। और
0: हाँ,
1: उनमें पता है किस चीज की कमी होती है?
0: किस चीज की?
1: धैर्य की, पेशेंस
0: ओ
1: की, दूसरों
0: अच्छा
1: की बात सुनने की, समझने की।
0: अच्छा ये तो आपने सही कहा दीदी। बोलना अपनी बातों को, कहना तो आसान है, जरूरी है अच्छे श्रोता बनना।
1: बिल्कुल
0: क्यों? क्योंकि बच्चों, आपको भी तो बुरा लगता होगा ना जब आपकी बात कोई नहीं सुनता या बीच में ही उसको काट देता है।
1: अच्छा बच्चों, ये सोचो और बताओ, क्या हुआ जब टीचर क्लास में कुछ जरूरी बात बता रही थी पर आपने ध्यान नहीं दिया, सुना ही नहीं? कितनी मुश्किल होती है ना बाद में, क्योंकि कोई भी टीचर की उस बात को हमें उसी अच्छे तरीके से नहीं बता पाता है ना।
0: हाँ, जैसे कि अभी कंचन दीदी ने बताया, बच्चों, नन्हे मुन्ने साथियों, कि अगर आप अच्छे श्रोता नहीं हैं तो आप अपने क्लास में अटेंशन में नहीं रह पाएंगे। आपकी टीचर जो भी आपको पढ़ा रही हैं, जो भी लर्न करा रही हैं, आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे, तो कितना बुरा है ना।
1: ये तो है ही।
0: तो अच्छा श्रोता कैसे बने दीदी?
1: अच्छा श्रोता बनने के लिए आपको सबसे पहले पता है क्या करना चाहिए? शांत रहकर बोलने वाले की पूरी बात सुननी चाहिए। उसे कहने तो दो पूरी बात, बीच में बिल्कुल ना टोकिए। और दूसरा तरीका ये है कि जब आपसे कोई कुछ कह रहा हो तो अपने खिलौने या फोन, कोई भी ऐसी चीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, मतलब जो आपका ध्यान बटा सकती है, उसको साइड में रख दीजिए। तब आप ध्यान से बात सुन पाएंगे और जो बता रहा है उसे भी अच्छा लगेगा।

0: कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो मेरी बात अच्छे से सुन रहा है मन लगाकर।
1: हाँ, और इससे बहुत ढेर सारे फायदे भी हैं, है
0: वो क्या
1: ना।
0: है दीदी?
1: वो ये है कि इससे आपके जो है दोस्त बहुत अच्छे ज़्यादा भी बनेंगे और अच्छे भी बनेंगे, और जो टीचर की बातें आपने बहुत ध्यान से सुनी है ना, तो एग्ज़ाम में आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आ
0: वाह वाह,
1: जाएंगे।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: और एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि बड़े होने पर हमें ऐसा, अगर हम व्यवहार करते हैं अपने बड़ों के साथ, हमें
0: हाँ
1: सम्मान भी
0: हाँ
1: मिलेगा।
0: क्या बात है दीदी। दीदी आप और मैं बातें कर रहे थे ना कि आपने कहा था कोई कहानी सुनाओ बच्चों
1: हाँ
0: को,
1: हाँ
0: तो मेरे पास एक
1: हाँ
0: कहानी है,
1: हाँ
0: सुनाऊं?
1: कंचन दीदी के मुंह से कहानी तो बहुत अच्छी लगती है।
0: तो चलो आज सुनते हैं दो बंदर और तोते की कहानी,
1: हाँ
0: है ना।
1: हाँ
0: और ये भी आपको सिखाएगी कि अच्छे श्रोता बनना चाहिए। पता है बच्चों, एक बार जंगल में चिंटू और मिंटू दो बंदर रहते थे। दोनों बहुत तेज और शरारती थे। एक दिन पेड़ पर एक घायल तोता आकर बैठा। उसके पैर में कांटा चुभ गया था, वो चल भी नहीं पा रहा था, उड़ भी नहीं पा रहा था। तोते ने धीरे धीरे कहा, भाइयों मेरी मदद कर दो, मेरे पैर में कांटा है, नदी के किनारे जड़ी बूटी मिलती है, वही लगा दो तो मैं ठीक हो जाऊंगा। चिंटू ने कहा, पर सुना पूरा नहीं, वो बीच में ही बोल पड़ा, अरे हाँ हाँ मैं जानता हूँ, चलो कूदते हैं पानी में। और वो नदी की तरफ भाग गया और गलत पत्ते ले आया। तोते का दर्द और बढ़ गया, तोता बेचारा परेशान हो गया। फिर मिंटू ने कहा, रुको मैं एक बार और कोशिश करता हूँ। वो चुपचाप बैठा, आंख में आंखें डालकर उसने फिर से सुना, पूरी बात समझी। फिर उसने सिर हिलाकर कहा, अब मैं समझा। वो गया फिर से उसी जगह और एकदम सही जड़ी बूटी लाया। उसने पूछा उसे कि वो कैसी दिखती है, उसका रंग कैसा है, क्या उसमें फूल आते हैं कि नहीं। सारी बातें जानकर वो गया और जड़ी बूटी ले आया। अब
1: क्या
0: उसने जब तोते को लगाया तो तोता 2 दिन में ही बिल्कुल ठीक
1: ठीक
0: हो
1: हो गया,
0: गया।
1: क्या बात
0: तो
1: है।
0: तोता ठीक होकर बोला, चिंटू तुम अच्छे हो पर तुमने सुना ही नहीं, मिंटू तुम बहुत अच्छे श्रोता हो, इसीलिए तुमने मेरी जान बचा ली। तो उस दिन से चिंटू ने भी सीखा, पहले सुनो समझो फिर बोलो।
1: बिल्कुल, और इससे तोते की जान
0: तो
1: बच
0: बच
1: गई।
0: गई।
1: और इसी के साथ चलो बच्चों क्या सुनते हैं, एक प्यारा सा अपना बाल गीत।

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो।

0: कंचन दीदी की कहानी और दूसरी हमारे अमिताभ बच्चन जी की कहानी, और इन दोनों कहानियों को हम आगे
1: लेकिन
0: बढ़ाते
1: दीदी ये
0: हैं।
1: देखिए,
0: हाँ
1: कहानियों
0: हाँ
1: से ही तो हम अच्छे श्रोता बनना भी सीखते हैं। जब
0: हाँ
1: नानी दादी कहानी सुनाती थी तो हम
0: हाँ
1: कितने शांत होकर सुनते
0: हाँ
1: थे,
0: बहुत बहुत।
1: है
0: और
1: ना?
0: अब इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं और इसे
1: ज्ञान की बातों में
0: और
1: लगाते
0: उसको
1: हैं,
0: किससे चिपक जाइए, चुंबक की
1: चुंबक
0: तरह।
1: से।
0: हाँ तो
1: हाँ
0: चलिए फिर हम कहानी सुनाते हैं अब, मैग्नेट की, चुंबक की। आप सभी ने बचपन में खेला होगा चुंबक के साथ, है ना। जब हम चुंबक को किसी लोहे के पदार्थ, मतलब लोहे की चीज के पास ले जाते हैं, बच्चों जैसे आलपिन हो गई, चाबी हो गई, सिक्के हो गए, कुछ भी एनीथिंग, वो चिपक जाता, चट से चिपक जाता है उससे, है ना। पर उसी चुंबक को हम जब ले जाएंगे लकड़ी के पास तो वो भाग जाता है। तो बच्चों ऐसा क्यों होता
1: तो
0: है?
1: दीदी ऐसा जादू आखिर होता कैसे है? क्या चुंबक को लकड़ी से दुश्मनी है और लोहे से दोस्ती? दीदी हंसिए मत, बताइए बच्चों को इसके पीछे क्या
0: इस
1: राज
0: के
1: है?
0: पीछे बहुत ही सुंदर विज्ञान है बच्चों। दुनिया की हर चीज छोटे छोटे कणों यानी एटम से मिलकर बनी है। इन परमाणुओं के अंदर ना बहुत ही छोटे छोटे कण, जिसको कह सकते हैं छोटे छोटे सिपाही होते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ना नन्हे चुंबक की तरह होते हैं।
1: तो फिर अब अंतर समझ में आया। लकड़ी या प्लास्टिक में इलेक्ट्रॉनों की जो चुंबकीय दिशाएं इधर उधर बिखरी होती हैं, मतलब उनके सिपाही यूनाइटेड नहीं होते,
0: हाँ,
1: है ना?
0: कोई ऊपर होता है, कोई
1: हाँ
0: नीचे होता है, कोई दाएं होता है तो कोई बाएं होता है।
1: इसी से उनका जो असर है वो एक दूसरे पे खत्म हो जाता है। और लोहे में क्या होता है ये

0: इलेक्ट्रॉन्स छोटे छोटे समूह में होते हैं जिन्हें डोमेन्स कहते हैं। जब एक चुंबक लोहे के पास आता है तो लोहे के अंदर के ये सारे डोमेन एक ही दिशा में सीधे अनुशासित होकर खड़े हो जाते
1: एकदम
0: हैं।
1: सिपाहियों की
0: यूनिटी
1: तरह,
0: वाली चीज ना,
1: यूनिटी वाली
0: संगठन में शक्ति
1: चीज।
0: है।
1: अगर आप संगठित हैं तो
0: हाँ,
1: आप शक्तिशाली
0: तो आप
1: हैं।
0: चुंबकीय हो जाते
1: हाँ,
0: हैं।
1: हर चीज आपकी तरफ खिंची चली आती है ना। तो आसान भाषा में कहें तो लोहे के अंदर ये जो नन्हे सिपाही छिपे होते हैं, जो चुंबक को देखते ही एक लाइन में खड़े हो जाते हैं, दूसरे उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। जबकि लकड़ी के अंदर ऐसे डोमेन नहीं होते हैं, इसलिए चुंबक लकड़ी पर कोई असर नहीं डाल पाता है ना। मजेदार विज्ञान दीदी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और इससे बच्चों ये भी सीखें कि अपने अंदर अच्छी अच्छी आदतें डेवलप करिए ताकि आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व भी चुंबकीय हो जाए और जो आपसे मिले वो आपको भूल ना पाए, है ना दीदी?
1: और अब समय हो चला है, तो अब हम अपने बच्चों को कहते हैं जय
0: जय
1: हिंद।
0: हिंद।

0: अभी नन्हे मुन्ने सुन रहे थे अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम में 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब युवा श्रोता सुने अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं युवाणी, जहां हम बात करते हैं उन टॉपिक्स पर जो होते हैं हम सब की लाइफ से डायरेक्टली कनेक्टेड। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उन्नति।
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी यानी कि अभिषेक। और आज का टॉपिक शायद हम सब के दिल के बहुत करीब है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं युवाओं में बढ़ता अवसाद यानी डिप्रेशन के बारे में।
0: सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर देते हैं, डिप्रेशन का मतलब सिर्फ उदास होना नहीं होता। कभी एग्जाम खराब हो गया, किसी से झगड़ा हो गया या मूड ऑफ हो गया, तो ये सारे नॉर्मल इमोशंस होते हैं। लेकिन जब उदासी, बेचैनी और होपलेसनेस हफ्तों तक साथ रहे और जिंदगी के हर हिस्से को अफेक्ट करने लगे, तब बात सीरियस हो जाती है।
1: बिल्कुल। और सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है कि डिप्रेशन हमेशा दिखाई नहीं देता उन्नति। कई बार लोग हंसते हुए मीम्स शेयर करते हुए या कॉलेज ऑफिस जाते हुए भी महीनों सालों तक अंदर ही अंदर स्ट्रगल कर रहे होते हैं। मगर एक सवाल आता है कि आज का यूथ इतना स्ट्रेस्ड क्यों लगता है?
0: इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला कंपटीशन, स्कूल से लेकर कॉलेज और फिर जॉब तक हर जगह रेस चल रही है। 90% से कम आया तो क्या

0: होगा, प्लेसमेंट मिला या नहीं, पैकेज कितना है, हर तरफ कंपैरिजन ही कंपैरिजन। और जब कंपैरिजन की बात आती है तो भला सोशल मीडिया को कोई कैसे भूल सकता है। और अभिषेक, जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं ना, तो स्क्रीन टाइम जो है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
1: बिल्कुल।
0: तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम रील्स वगैरह स्क्रॉल कर रहे हैं, मीम्स शेयर कर रहे हैं, और उसमें हमारा स्क्रीन टाइम इतना हो जाता है कि हम लोगों को खुद से कंपेयर करने लग जाते हैं कि लोग कितना सक्सेसफुल है लाइफ में, और फिर हम अपने आप को देखते हैं कि हमने तो अभी तक कुछ खास किया ही नहीं है। तो उस वजह से भी डिप्रेशन होता है, और ऐसे डिप्रेशन को एसिम्प्टोमेटिक डिप्रेशन कहा जाता है।
1: हाँ।
0: और फिर यही सब चीज़ों की वजह से हम अपनी रियल लाइफ को किसी और की हाईलाइट रील से कंपेयर करने लगते हैं।
1: एक और फैक्टर है इसमें फैमिली एक्सपेक्टेशंस का। कई बार हमें ऐसा लगता है कि पेरेंट्स हम पर बहुत अधिक प्रेशर बना रहे हैं, पढ़ाई का, करियर का, लेकिन उस वक्त हमें लगता है कि शायद पेरेंट्स हमारा बुरा सोच रहे हैं, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। पेरेंट्स कभी भी हमारा बुरा नहीं सोचते, बस वो अपने बच्चों को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी हाई एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हो जाती हैं जिसके कारण पीयर प्रेशर भी बढ़ जाता है, और स्टूडेंट्स पर इस तरह के जो प्रेशर्स होते हैं ना, वो काफ़ी अफेक्ट करते हैं उनकी स्टडी को, उनके माइंड्स को, और वो अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर पाते दूसरों से। तो ये जो एक्सप्रेशंस की बात आती है, जब अपनी बात दूसरों से नहीं कह पाते, चाहे वो अपने पीयर्स से हो, अपने पेरेंट्स से हो, अपने पड़ोसियों से, या किसी अपने खास मित्र से, तो ये सिचुएशन बहुत ख़तरनाक होती है।
0: बिल्कुल। और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, जॉब करने वाले जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उन पर भी प्रेशर रहता है। टारगेट्स, डेडलाइंस, वर्कलोड, जॉब इनसिक्योरिटी और वर्क लाइफ बैलेंस का स्ट्रगल। और इसके अलावा जो रिलेशनशिप इश्यूज़ होती हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, लोनलीनेस और फ्यूचर की अनसर्टेनिटी भी डिप्रेशन को बढ़ा सकती है। बट वन थिंग फॉर श्योर,
1: यानी कि युवाड़ी आपका वो स्टॉपेज है, कहें वो स्टेशन है, जहाँ दुनिया भर और दिन के सारे स्ट्रेस को ज़रा साइड करके हम करते हैं टेंशन और तनाव को टाटा बाय बाय, और देते हैं आपको जानकारी और एंटरटेनमेंट का बैलेंस डोज। तो लीजिए, पेश है आज का ये पहला गीत।

0: वेलकम बैक लिसनर्स, यू टर्न लेके आ चुके हैं हम. नाउ लेट्स कंटिन्यू एंड कंक्लूड आवर टॉपिक. अभिषेक, मान लो अगर हमारा कोई दोस्त है तो हमें कैसे पता चलेगा दैट ही और शी इज डिप्रेस्ड?
1: इसके कुछ लक्षण होते हैं जिनकी हम पहचान कर सकते हैं. जैसे अगर कोई इंसान हर वक्त उदास रहता है या किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता, नींद या भूख बहुत बदल गई है, उसका जो साइकिल होता है नींद का और भूख का वो एकदम चेंज हो चुका है, होपलेसनेस फील करता है बहुत ज़्यादा, या बार बार कहता है कि मुझसे ये काम नहीं होगा, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो वाकई में इसे बहुत ही लाइटली नहीं लिया जा सकता है. ये कुछ सीरियस इसके लक्षण हो सकते हैं जो हमको इस ओर इशारा करते हैं कि हम इस टॉपिक को समझें और किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लें जो हमें इसके बारे में जागरूक करें.
0: और एक और इम्पॉर्टेंट बात, हर डिप्रेस्ड इंसान रोता हुआ नहीं दिखेगा. जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था, ऐसे लोग अंदर से कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड होते हैं. वैसे अभिषेक, अभी जो लिसनर्स हमें सुन रहे हैं तो उनके लिए क्या सोल्यूशंस और टिप्स देना चाहोगे तुम?
1: सबसे पहले कम्युनिकेशन करना, जैसे मैंने कहा कि कम्युनिकेशन एक क्योर की तरह होता है, तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है. दोस्त, भाई, बहन, परिवार वाले, आपके पड़ोसी, दोस्त, कुछ भी हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, काउंसलर्स हो सकते हैं, किसी से भी आप सलाह ले सकते हैं, उनसे बात करके अपनी समस्याओं को उनका समाधान ढूंढ सकते हैं. और कहते हैं कि साइलेंस इज़ नेवर द सॉल्यूशन, और ये बात हमेशा याद रखने की है कि हेल्प मांगना वीकनेस नहीं होती उन्नति बल्कि एक मैच्योरिटी की पहचान होती है.
0: बिल्कुल सही कहा. और कुछ सिंपल हैबिट्स भी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, जैसे रोज़ थोड़ा वॉक करना, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, प्रॉपर स्लीप, हेल्दी खाना और फिर डिजिटल डिटॉक्स. और याद रखिए कि हर इंसान की जर्नी अलग होती है, तो अपनी लाइफ की स्पीड किसी और के टाइमलाइन से डिसाइड बिल्कुल ना करें.
1: और उन्नति, मुझे ये भी लगता है कि जो चीज़ें हमारे साथ घटित हो रही होती हैं या ये इस तरह के लक्षण जब हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में, हमारे इमोशंस के साथ उभर कर आ रहे होते हैं, तो आखिर हो तो हमारे साथ रही होती हैं, तो उनको हम रियलाइज़ कर सकते हैं बजाय कई बार कि हम बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स को दिखाते हैं. लेकिन एक अगर सिस्टम को, एक पैटर्न को फॉलो करें कि हमारे साथ ये क्या क्या ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हमको अफेक्ट कर रही हैं, जिसको कहते हैं कि अपने माइंड को रीड करना, अपने इमोशंस को पढ़ना, अगर वो भी हम करना थोड़ा थोड़ा शुरू करें तो एक पॉजिटिव बदलाव हमारे माइंड पर, हमारे इमोशंस पर और हमारे काम करने की एक्टिविटी पर आ सकता है.
0: मतलब अपनी एक्टिविटीज़ को जो है हम नोटिस करें कि मतलब हम क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें ऐसा फील हो.
1: बिल्कुल,
0: रहा है.
1: उस गलत पैटर्न को हम पकड़ें, फॉलो करें कि ये क्यों हो रहा है और क्या ऐसा काम करें कि जिसकी वजह से ये दिक्कतें हमें ना आए, तो ये भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन के रूप में काम करेगा.
0: बिल्कुल सही कहा.
1: और साथियों, कहते हैं सक्सेस इंपॉर्टेंट है, मार्क्स

0: है, करियर इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है, लेकिन मेंटल हेल्थ उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो याद रखिए, आप अकेला महसूस कर सकते हैं, लेकिन सच ये है कि आप अकेले होते नहीं। इस वक्त बहुत सारे यार दोस्त, आपके पेरेंट्स, आपके साथी आपके साथ होते हैं।
1: और अगर आप बात करेंगे, आप उनसे सपोर्ट मांगेंगे, तो आपको वो सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। और ज़रूरत हो तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स और थेरेपिस्ट, बी इट पेड और अनपेड, उनसे भी मिलिए। और उनसे हेजिटेट ना करें बिल्कुल भी मिलने के लिए, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताने के लिए। बिकॉज डिप्रेशन इज़ नॉट अ डिजीज़ बट अ कंडीशन दैट कैन बी क्योर्ड टाइमली विद प्रॉपर असिस्टेंस।
0: एग्जैक्टली उन्नति, और बहुत सारी बातें जो ज़रूरी बातें हमने अपने श्रोता साथियों से करी। लेकिन अब अगले गीत की ओर बढ़ने से पहले मैं अपने श्रोता साथियों को एक छोटी सी और योजना के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि हमारी गवर्नमेंट उसको चला रही है, जिसे हम राहवीर योजना के नाम से जानते हैं। तो साथियों, जब भी आप और हम सफ़र कर रहे होते हैं, रास्ते में होते हैं, वैसे आजकल बारिश का महीना भी है तो रोडें भी स्लिपरी होती हैं और कई बार एक्सीडेंट होने की भी संभावना होती है। तो ऐसे में अगर हमारे आसपास कोई घटना होती है तो कई बार होता है कि हम ये सोचकर उनके पास नहीं जाते कि केस कहीं हमारे ऊपर ना हो जाए, या कोई पुलिस से वार्तालाप या कोई ऐसी बात ना हो कि जिससे हम उस घटना में फंसें। तो ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। एक अच्छे नागरिक की तरह उस घटना स्थल पर तुरंत पहुंचे अगर आप आसपास हैं, और उस घायल व्यक्ति की जो भी मदद हो सकती है हमें करनी चाहिए। और हमारी ड्यूटी ये भी होनी चाहिए कि हम उसे नज़दीकी स्वास्थ्य अस्पताल या किसी भी जो भी हॉस्पिटल हो आसपास के एरिया में उसको पहुंचाएं। और ऐसा काम करने वाले व्यक्ति को, ऐसे अच्छे नागरिक को हमारी जो गवर्नमेंट है पुरस्कृत भी करती है, और उन्हें उन्नति गुड्स अमेरिटन के नाम से जाना जाता है।
1: अच्छा, मतलब हमारे जो हम अपने आप को कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, तो उसके टूवर्ड्स हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ जिम्मेदारी होती है, ताकि जिससे हम अवेयर रहें। तो ये भी अवेयरनेस का ही हिस्सा होता है कि हमारे सामने अगर कुछ हादसा हो रहा है तो हम उसके टूवर्ड्स कैसे एक्शन लेते हैं, ये भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की निशानी होती है।
0: बिल्कुल, और ऐसी सिचुएशन से हमें डरना नहीं चाहिए बल्कि मदद के लिए आगे आना चाहिए।
1: बिल्कुल सही।
0: तो उन्नति, हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में भी और अपने श्रोता साथियों को सुनाते चलते हैं ये गीत।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर 2 लाख?
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
8: साथियों, अब हम सफर करने चल रहे हैं युवाणी के उस मोटिवेशनल सेगमेंट यानी प्रेरणा पुंज की ओर, जहां हम मिलते हैं उन महान व्यक्तित्वों से जिनके जीवन की रोशनी आज भी लाखों युवाओं को मार्गदर्शन दे रही है।
9: हम बात कर रहे हैं उस दूरदर्शी वैज्ञानिक की जिन्होंने ये साबित कर दिया कि यदि इरादे बड़े हों तो सीमित संसाधन भी असीमित संभावनाएं पैदा कर सकते हैं। आज के हमारे प्रेरणा पुंज हैं भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई।
8: डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को गुजरात के

0: अहमदाबाद में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें विज्ञान, गणित और नई चीज़ों को जानने की उत्सुकता थी।
1: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता केवल पढ़ाई नहीं थी, बल्कि हर ज्ञान को समाज के हित में उपयोग करने की सोच थी।
0: जब दुनिया अंतरिक्ष की दौड़ में आगे बढ़ रही थी, तब डॉक्टर साराभाई ने एक अलग सपना देखा। उनका मानना था कि अंतरिक्ष विज्ञान केवल शक्ति प्रदर्शन का माध्यम नहीं, बल्कि शिक्षा, मौसम, संचार और ग्रामीण विकास का साधन भी बन सकता है।
1: और इसी सोच के साथ उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई। आज भारत के चंद्रयान, मंगलयान और अनेक उपग्रह मिशनों की सफलता की नींव उसी दूरदर्शी सोच पर टिकी हुई है।
0: दोस्तों, उस समय भारत के पास ना आधुनिक तकनीक थी और ना ही पर्याप्त संसाधन, लेकिन डॉक्टर साराभाई ने कभी परिस्थितियों को अपनी मंजिल के बीच नहीं आने दिया।
1: वो कहा करते थे, साथियों, जो लोग परिस्थितियों की प्रतीक्षा करते हैं वे इतिहास नहीं बनाते, इतिहास वही बनाते हैं जो परिस्थितियां बदल देते हैं। उनकी यही सोच आज भी हर युवा के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाती है।
0: डॉक्टर साराभाई केवल वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी योजनाकार भी थे। उन्होंने अंतरिक्ष तकनीक को गांवों तक शिक्षा पहुंचाने, मौसम की जानकारी देने और आपदा प्रबंधन में उपयोग करने का सपना देखा था।
1: हाँ, और उन्होंने भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यानी PRL, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद IIM अहमदाबाद की स्थापना में भी उनका उल्लेखनीय योगदान रहा है।
0: दोस्तों, डॉक्टर विक्रम साराभाई का जीवन हमें सिखाता है कि बड़े सपने देखने से मत डरिए।
1: संसाधनों की कमी कभी भी सफलता की बाधा नहीं होती।
0: विज्ञान और ज्ञान का उपयोग समाज की भलाई के लिए होना चाहिए।
1: नेतृत्व का अर्थ है दूसरों को आगे बढ़ने का अवसर देना।
0: और हर असंभव कार्य किसी के साहसिक सपने से ही शुरू होता है।
1: और आज जब भारत विश्व के अग्रणी अंतरिक्ष देशों में गिना जाता है, तब हमें याद रखना चाहिए कि इस यात्रा की शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति ने की थी जिसने सीमाओं में नहीं बल्कि संभावनाओं में विश्वास किया था।
0: यदि आपके सपने भी बड़े हैं तो उन्हें परिस्थितियों के भरोसे मत छोड़िए। मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। कौन जानता है, अगला इतिहास आपके नाम ही हो।

0: दोस्तों, अब आज के खेल जगत सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं 25 अगस्त 2006 को इटली के शहर में जन्मे युवा खिलाड़ी फॉर्मूला वन ड्राइवर आंड्रिया किमी एंटोनेली की। एक ऐसा नाम जो बहुत कम उम्र में दुनिया के सबसे कठिन मोटर स्पोर्ट्स मंच पर अपनी पहचान बनाया।
1: और बचपन से ही किमी का रुझान रेसिंग की ओर था, क्योंकि पिता मार्को एंटोनेली खुद रेसिंग से जुड़े हुए थे। लेकिन कहते हैं ना साथियों, पहचान बनाने के लिए सिर्फ परिवार का माहौल काफ़ी नहीं होता है, बल्कि असली पहचान तो तब मिलती है जब हम अपनी मेहनत से उसे निखारते हैं।
0: इसीलिए किमी ने छोटी सी उम्र में ही कार्टिंग यानी एक लोकप्रिय मोटर स्पोर्ट खेल में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था और लगातार जीत हासिल कर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। और उनकी प्रतिभा को देखकर मर्सिडीज जूनियर टीम में उन्हें कम उम्र में ही अपने साथ उन्होंने शामिल कर लिया।
1: और इसके बाद 19 वर्षीय ये खिलाड़ी इटालियन फॉर्मूला 4, ADAC फॉर्मूला 4 और फॉर्मूला रीजनल जैसी कई प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करता है, और हर नई चुनौती से उसने सीखने का एक नया अवसर अपने लिए ढूंढ निकाला।
0: दोस्तों, सफलता कभी अचानक नहीं मिलती। उसके पीछे वर्षों की मेहनत, अनुशासन और धैर्य छिपा होता है। किमी एंटोनेली की कहानी भी हमें यही बताती है, क्योंकि फॉर्मूला वन में प्रवेश करना किसी भी रेसिंग ड्राइवर का सपना होता है, और किमी ने रेस करते हुए दुनिया को ये दिखा दिया कि प्रतिभा और तैयारी साथ हो तो बड़े मंच पर भी आत्मविश्वास के साथ खड़ा हुआ जा सकता है।
1: दोस्तों, किमी की सबसे बड़ी खासियत है शांत दिमाग, सीखने की ललक और कभी हार ना मानने का जज्बा। यही कारण है कि उन्होंने बहुत कम समय में अपनी तेज़ रफ्तार और मजबूत सोच से फॉर्मूला वन की दुनिया में विशेष पहचान बनाई। कई बार उन्नति होता है ना कि हम कोई काम करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं, यानी कि हमारा जो माइंड होता है कंसंट्रेट नहीं कर पाता, किसी एक टारगेट को गोल नहीं कर पाता है, फोकस नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह से भी हम ज़्यादा समय खर्च करते हैं, ज़्यादा एनर्जी खर्च करते हैं, फिर भी हम एक सटीक रिजल्ट तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो यानी कि अगर हम किमी के जीवन से सीखें कि शांत दिमाग से और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से कोई काम करें तो हम सफलता के करीब अधिक

0: जल्दी होंगे, कम समय खर्च करते हुए सफलता तक पहुंच सकेंगे।
1: बिल्कुल। और साथ ही वो आंड्रिया किमी एंटोनेली के अब तक के छोटे से मगर सफल करियर से हमें भी बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं, जैसे बड़े सपने देखने से मत डरिए,
0: हर दिन खुद को बेहतर बनाइए,
1: ध्यान रहे सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता,
0: और इसीलिए अनुशासन और निरंतर अभ्यास ही असली जीत दिलाते हैं।
1: और अंत में बस यही कहेंगे कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।

0: उन्नति उम्मीद है हमारे डियर लिसनर्स इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी कड़ी में अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चनेयर सेगमेंट की। हमारा कल का सवाल था, कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज क्लाइमेट समिट किस ग्लोबल इशू से रिलेटेड है, जिसका जवाब है क्लाइमेट यानी जलवायु से संबंधित है।
1: इसी के साथ हमारा आज का सवाल है, लैंड ऑफ द राइजिंग सन किस देश को कहते हैं? आप अपना जवाब हमारे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, जो कि है yuvvaniald@gmail.com, और हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, जो कि है 8004926250 पर। आप अपने फीडबैक्स और सजेशंस भी हमें दे सकते हैं। और इसी के साथ अभिषेक, मुझे लगता है कि हमें चलते चलते हमें श्रोताओं को एक और गीत सुनवा देना चाहिए।
0: बिल्कुल।

0: तो दोस्तों, आज का ये अंक, आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप अपने प्रीशियस फीडबैक दे सकते हैं हमारी मेल आईडी पर, जो कि है yuvvaniald@gmail.com।
1: तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, मुझे यानी उन्नति
0: और मुझे यानी अभिषेक को
1: नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। 6 बजने को हैं, थोड़ी देर में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। सूत्रों ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में घोषणा की थी कि पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। इस बीच संसद परिसर में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक के दौरान परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी पार्टी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
2: लगभग 2 घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है।
3: डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पेंसेशन और FIR का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उनसे सरकार पॉजिटिव है।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार 5वें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे सदन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। उधर लोकसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। इससे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
4: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की 3rd और 4th लाइन और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उससे जुड़ी घटनाएं भारत के लिए गहन चिंता का विषय हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संघर्ष शुरू होने के बाद से ही भारत संघर्ष में शामिल पक्षों अमरीका और ईरान के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकार के साथ लगातार संपर्क में है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी प्रयागराज। अब प्रस्तुत है आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रमों पर एक नज़र। आज रात 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा। रात 9:30 पर गजलों पर आधारित कहकशा कार्यक्रम होगा। रात 10 बजे सुनिएगा नाटक अपनी अपनी जंग, लेखक विनोद रस्तोगी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 10:30 पर श्री ऋषि मिश्रा का ख्याल गायन होगा। शाम 7:31 पर आप सुनेंगे संस्कृत कार्यक्रम में डॉक्टर मनीष जुगरान की वार्ता, कौटिल्य अर्थशास्त्रे सैन्य विज्ञानम। 7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगी मंजू नारायण, आप इनके स्वर में गीत और भजन सुनेंगे। रात 8:30 अंग्रेजी कार्यक्रम होगा जिसमें आज कस्तूरी डे की वार्ता होगी, सुभाष चंद्र बोस द विजनरी लीडर ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की, और अब एक नज़र कल के प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल रात 8 बजे आप सुनेंगे इस सप्ताह संसद में। रात 9:30 पर विज्ञान भारती कार्यक्रम होगा। 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा। रात 8:15 पर सेहत की बात, स्वर्ण प्राशन एक जानकारी, इस विषय पर डॉक्टर जीएस तोमर से अभिनव प्रज्ञ पांडे की बातचीत होगी। सबरस कार्यक्रम का समय होगा रात 8:30 का। 6:35 पर कल प्रातः कृषि जगत कार्यक्रम में हेमलता पंत से बातचीत सुनिएगा, विषय होगा मशरूम की खेती और सावधानियां। 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर अजीत चौरसिया की वार्ता होगी, प्रमुख वायरस जनित बीमारी और उनका उपचार। 7:30 से आप सुनेंगे राष्ट्रमंडल खेल 2026 का दैनिक रिपोर्ट, नमस्कार प्रयागराज, ये कार्यक्रम होगा 8:45 से। 9:50 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में प्रीति मिश्रा के गाय गीत और भजन होंगे। इसी कार्यक्रम में शाम 7:45 पर आप सुनेंगे कौशिकी राय के स्वर में गीत। 10:05 पर लोक माधुरी कार्यक्रम होगा जिसमें कल भरतलाल और उनके साथी और रीता देवी के गाए लोकगीत होंगे। 10:30 पर हमारे संग्रहालय से आकाशवाणी प्रयागराज के पूर्व प्रोड्यूसर केशव चंद्र वर्मा से डॉक्टर जीवनलाल गुप्ता की भेंट वार्ता होगी। 11 बजे फिल्म संगीत एक ही कलाकार। 12:15 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां का ख्याल गायन होगा। ग्रामीण बहनें अपना पनघट कार्यक्रम सुनेंगे 1:15 पर, जिसमें बीना सिंह से बातचीत होगी, बचत समूह और आर्थिक आज़ादी। इसके अलावा आप सुनेंगे सुषमा मौर्य के स्वर में लोकगीत। दिन में 2:30 लोकगीत होंगे राम प्रसाद और साथियों के स्वर में, और इसके अलावा कलाकार होंगे श्याम बाबू यादव और साथी और बाबूलाल दिवाकर। धरती के गीत कार्यक्रम में शाम 5 बजे बरम दीन यादव और साथियों के स्वर में लोकगीत आप सुनेंगे। शाम 5:15 युवाणी कार्यक्रम में कल आज की शाम आपके नाम, जो कि अभिनेता शाहरुख खान पर केंद्रित होगा। शाम 6:30 ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे पंचायत घर, जिसमें लोकगीत सुनिएगा रघुराज सिंह यादव और साथियों के स्वर में, और सुशील चौरसिया से अभिनव प्रज्ञ पांडे की बातचीत होगी, तैरना एक जरूरत। 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में डॉक्टर चितरंजन सिंह की वार्ता सुनिएगा, डॉक्टर नामवर सिंह की आलोचना दृष्टि। ये थी जानकारी कल के कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए अब सुनिए देशभक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 6:20 होने को हैं। थोड़ी देर में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। थोड़ी देर में ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम पंचायत घर।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अब ग्रामीण भाई सुने अपना कार्यक्रम पंचायत घर।

0: राम राम।
1: आहो घनश्याम भैया, का हाल चाल बाहो?
0: ये बैजू भैया, हाल चाल बड़ा निक बा हो, लेकिन एक बात जौन है ना कहे की बात।
1: का हो
0: भैया? हो बहुत दिन बाद हम भैया गए जौन है ना एक रिश्तेदारी।
1: अच्छा अच्छा।
0: ये भाई जहाँ हम उतरत रहे हो बसी से, जौन बाजार रहल, जौन भैया ओकर रहन सहन वहाँ देखे ना, ये हो हम तो भुलाई गए। जवन चकाचक भैया चकाचौध भाई, बढ़िया बढ़िया सड़क हो भैया, जहाँ रेलवे स्टेशन भैया देख के लगत बा जैसे हवाई जहाज का भैया हवाई अड्डा, इतना विकास भेल बा
1: भाई। कहे के मतलब कि सब बदल गए बाटे,
0: बदल गया भाई, बदल गया बदल
1: भाई। बदले की जरूरत भी बाटे है, देश के विकास तब देखा जात भाई जब हर चीज में बदलाव आवत है। तो भैया हो, हम तो कई बदलाव आए बा, अपने खेती किसानी में भी बदलाव बा भाई। जहाँ पहले ठड़खती है खेती होत रही, आज खेती भी व्यावसायिक होत बाटे।
0: व्यावसायिक होत बा भैया हो, अब तो देखा ऐसा ऐसा मशीन आ गल बा बैजू भैया ना, कि जो जैसा काम भैया अब तो खाली खाली ध्यान रखे का जरूरत हो।
1: सही कह भैया, आराम भी काफी हो गया है। जहाँ कटाई मड़ाई में देखा मैं हाथे से काम होत रहा, मशीन हो लगा, अब तो धान लगावे वाली भी मशीन आई गई है भैया।
0: बिल्कुल बिल्कुल बैजू भैया, तो देखा हो तो ये तो समझ ला कि जब आपन देश भैया हो विकास करत होने, तो मन बहुत बड़ा योगदान जौन हमार आयकर देवे वाले भैया लोग हैं।
1: हाँ।
0: तो भैया उनकर भी हो
1: भैया हो, आयकर आवत तभी तो का कहा थीन भाई, जितना सब विकास काम हो तो जो हमें लगा है ना, उनका मजदूरी जोन मिलत भाई वही से तो मिलत बा, या तनख्वाह मिलत बाटे जो नौकरी चाकरी करत भैया। तो कहूँ न कहूँ से जब आए कर आए जोन बाटे है, तो भैया हो हम तो कही कि ईमानदारी से जो वहाँ दायरे में आवत है उनका देख चाहे जो है।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया हो, तो देखा आज जौन है ना आयकर दिवस हो।
1: बात सही कह भैया।
0: भैया हो आयकर दे वाले भैयन के प्रति आप सम्मान भैया, उनका आदर। और ये देखा हो बैजू भैया, ये कहल जात है ना कि देश का सेवा में जरूरी ना हो कि सीमा पर जाके लड़ा,
1: नहीं हर तरफ से योगदान,
0: हर तरह से योगदान,
1: बस बसरते कि अपने प्रति ईमानदार रहे।
0: या बिल्कुल। तो भैया देखा 1860 में ना 24 जुलाई के दिन भैया पहले भारत में आयकर का भैया ये जो ना प्रचलन आया।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: मतलब
0: तो भैया
1: कि 1860 मतलब भैया तब अपन देश गुलाम रहा
0: अंग्रेज के समय में भैया। लेकिन
1: हाँ।
0: वो देखा ही एक जौन विचार बनल ना कि देश का विकास करे के, हम कहीं भाई हो तो समझा कि सड़क बनावे के बाद तो कैसे जाके पैसा

0: भाई
1: सरकार कैसे पैसा मांगे।
0: सड़क भाई, पुल भाई,
1: हाँ
0: कहाँ से इतना लागत लागत
1: बिल्कुल
0: बाद
1: बिल्कुल।
0: कहाँ से आए हो
1: तो
0: भाई?
1: हम कहीं भाई हो आयकर भर के भैया, ईमानदारी से अगर देश सेवा लोग करत हैं तो अपन देश भैया बहुत आगे जाए, राष्ट्र का समृद्धि अगर चाहते हैं तो भैया ईमानदारी से जे आयकर भरे लायक हो,
0: भारे के चाहिए भाई,
1: हाँ आयकर भैया भरे, ये मन कोताही ना करें।
0: ना है भाई, तो बड़ी नेक बात कहे। अब भाई हमार किसान भाई भी समझत बाटे ना भैया हो। एक बात और कि खेती किसानी समझ

0: या भरें या मन कोताही ना करें।
1: ना है ना है भाई, तो बड़ी नेक बात कह। अब भाई हमार किसान भाई भी समझत बाटे ना भैया हो। एक बात और कि खेती किसानी एक समय चलत बा, इस समय देख बा बारिश भी समय समय पे हो जात बा। तो धान के जोन खरीफ के मुख्य फसल धान बाटे भैया, उ तो लगाए बाटन किसान भाई। माला जे बकाया बा उ लगा लें। साथे साथे जरूरी बा कि भैया जोन कुछ खाती खेत या जगह जमीन खाली बा ना, ये बड़ा उचित समय बा कि पेड़ भी लगाऊ है जोन बा।
0: देखा भैया धरती अगर देखा पेड़ से भैया ना भैया सजल रही हो तो समय पर गर्मी, समय पर बरसात, समय पर जाड़ा।
1: सही कहे भैया
0: आपन। भैया पर्यावरण जितना मजबूत रही बैजू भाई, समझा आपन जीवन आपन जिंदगी उतने मजबूत रही।
1: बात कही गया भैया, पर्यावरण तभी बढ़िया रहे जब हमें सब रहाई वाले सबके अनुपात बराबर।
0: हाँ,
1: चाहे पेड़ पौधा हो चाहे जंगली जीव हो, जौन भी जीव बाटन भाई, जब जंगल रही तबे जीव भी रही।
0: बिल्कुल।
1: कुल कट जाए तो कहाँ रही है।
0: कहो देखा लड़कई में भैया गांव गांव बगीचा लौके हो, गांव पेड़ नीम के पेड़ से तोपायल रहे
1: भाई, कुल पेड़ ही दिखा
0: पेड़ ही दिखाए बैजू भाई। तो वो समय भैया हो न पंखा गांव में, न बिजली न बत्ती,
1: जरूरत
0: ही नहीं रहा भाई हो। न गर्मी बुझाए न जाड़ा बुझाए भाई, भरपूर पानी बरसे ही नहीं, किसान दौ के मुँह ताकत बाटन
1: नहीं भाई। इतना पानी बरसे कि पता चले वो देखा हरा हरा खाए कई आवत रहा पनीर, पता चले वो हरा हरा खाए कि पानी।
0: बिल्कुल आवाज सुना है,
1: आवाज सुना
0: दूर से, आवाज सुना है वो बढ़िया धारदार पानी बरसे, इंद्र धनुष बने।
1: हाँ
0: भैया जब घटा घिरे हो डरावना सा लगे, इंद्र धनुष बने इतना मनोरम रहे हो, नार खो सब भर भर के बहत रहे।
1: कह गया
0: पशुअन के पिए के पानी भैया, नदी तालाब पोखरा ये बैजू भाई हो, गांव गांव पोखरा गिनाए हो, जौने गांव में बड़ा पोखरा रहे वो बड़का पोखरा वाला गांव कहा है।
1: कह गया भैया हम कही वही पानी भैया भाई, पशु जवन चरें जाए हमें नहाए। और भाई खेती किसानी के जब पानी रहे तो काम भी आवे जवन
0: काम
1: बा।
0: आवे काम आओ
1: भैया
0: भैया
1: हो उसे सबसे बड़ा बात फायदा होत रहा कि जलस्तर बना रहत रहा,
0: अरे हो
1: पानी कभी घटे ही नहीं। अब तो देखा गर्मी में पिए के पानी नहीं रह जाता
0: हो, कुआं सुखा जाता भाई, कुआं में झांका ना तो झाई आवत अनहार लौकत हो, पानी दूर दूर तक भैया नहीं बुझत।
1: हम तो कही जल संरक्षण भी बहुत जरूरी बा,
0: बहुत बहुत
1: नहीं तो पता चले जल स्तर कम हो। जब जल स्तर हो जाए तो भैया पेड़ पालो अपने सुखाए जाते,
0: सुखाए जी भैया। तो जल स्तर तो तब ना अच्छा हुई बैजू भैया जब खूब बढ़िया बारिश हुई।
1: बारिश जवन हुई वो का बचत भी करे।
0: हाँ,
1: पानी के ना भाई।
0: अब बारिश तो भैया तब हुई जब पेड़ पौधा धरती पर रही है।
1: कह गया भैया।
0: तो भैया सब एक दूसरे से देखा हो, प्रकृति जन जब तक संतुलित न रही ना तब तक बैजू भैया जीवन बहुत अपार हो जाएगी
1: भाई। प्रकृति संतुलन तब ही रहे जब बताया ना कि पेड़ पौधा लगा रहे हैं, जोन बारिश हो तो तालाब पोखरा मौका रोका जाए।
0: बिल्कुल
1: तब हर चीज के बना रहे जोन जीव जंतु सब बना रहे, तब पूरा भैया पर्यावरण सही रहे, बारिश भी होए, हम तो स्वस्थ भी रहा ना,
0: बिल्कुल
1: बेरामी
0: बिल्कुल
1: भी
0: भैया
1: होए।
0: बिल्कुल हो, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ मतलब अपने जीवन के साथ छेड़छाड़।
1: तो कही कि भाई ये बात बहुत जरूरी बा। अब भैया देखा ये तो चर्चा का बात रही और आज का पंचायती में ले आया है टर किसान भाई के बतावा था।
0: बिल्कुल भैया हो देखा आज जो है ना एक जोन बात बत कही कहला कि भैया खेती किसानी के साथ साथ अगर हम और कोनो काम करत है, मुर्गी पालन, पशुपालन, बकरी पालन या मधुपालन, तो भैया हो देखा पशुपालन से किसान का आय दुगना कैसे करें, एकरे बारे में भैया देखा डॉक्टर गौरव पांडे का बातचीत हुई अपने जयकृष्ण नारायण शर्मा से के सुनल जाए। लेकिन देखा थे भैया आज छेदी लाल उनकर संघातीन, अब भरम दीन यादव उनका संघातीन भैया ढोलक मजीरा लेके बैठल हुआ।
1: तो हम तो कही पहले छेदी लाल संघातीन का गौनई विकास गीत सुनवा दी जाए,
0: बिल्कुल
1: फिर आगे बात बात कही।
0: हाँ सुना दा।

0: या चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: भैया
3: घनश्याम भैया देखा गौ नई हो गई छेदी लाल के। अब हम कही और का कहते सनेश भी हो गए। अब देखा बात बत कही होत रही भाई, अपन किसान भाई खेती किसानी के साथ पशुपालन का काम करत बाटे ने, और आज समय में एक बढ़िया लाभदायी व्यवसाय बन चुका अगर ढंग से पशुपालन किया जाए।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो यही सब पे जानकारी बा है कि भाई

0: और अच्छे से कैसे उनका जो है आमदनी बढ़ सकत है। तो पशुपालन द्वारा किसानों की आय दुगना करने का सरल एवं उत्तम सुझाव का बे पे डॉक्टर गौरव पांडे से जय कृष्ण नारायण शर्मा के बात बत कही भाई बे, तो हम कही किसान भाई एक सुनई और समझें।
1: बिल्कुल सुनवा दा
2: किसान भाई, एक अच्छे किसान के पहचान पशुपालन से भी होता है। जोने किसान के दरवाजे पे बेहतरीन पशु रहते हैं ओके अच्छा किसान मानल जाते हैं प्राचीन समय से। बढ़िया बैल, बढ़िया गाय, बढ़िया भैंस अगर दरवाजे पे हो तो एक तो भाई दुग्ध उत्पादन से घरेलू जौन हो उपयोग बच्चन के लिए, अपने उपयोग के लिए दूध घी मिलत है, साथ साथ बाजार में ओकर अच्छी आमदनी हो सकत है। और गोबर और अपशिष्ट पदार्थ जौन होते हैं वो खाद के रूप में खेतन में काम करत है। आज जौन बातचीत का विषय हो पशुपालन द्वारा किसानों की आय दोगुना करने का उत्तम सुझाव या उपाय, जानकारी देव दे विशेषज्ञ के तौर पे हमारे बीच में डॉक्टर गौरव पांडे जी आल बाटे। भैया गौरव पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने पशुपालक भाइन या किसान भाइन के लिए चाहब कि अपन पशुपालन द्वारा वो कोने ढंग से आमदनी बढ़ा सकते हैं, थोड़ा ये विषय पे बतावें।
3: हाँ तो किसान भाइयों, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन का विशेष महत्व है। सकल घरेलू कृषि उत्पाद में पशुपालन का 28 से 30% का योगदान सराहनीय है, जिसमें दुग्ध एक ऐसा उत्पाद है जिसका योगदान सर्वाधिक है। देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 53% भैंसों से, 43% गायों से एवं 3% लगभग बकरियों से प्राप्त होता है। भारत लगभग 121.8 मिलियन टन दुग्ध का उत्पादन करके विश्व में प्रथम स्थान पर है, और यह एक मिसाल पेश करता है जिसमें उत्तर प्रदेश भी अग्रणी है।
2: जी जी जी
3: यह उपलब्धि पशुपालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं जैसे मवेशियों की नस्ल, पालन पोषण, स्वास्थ्य एवं आवास प्रबंधन इत्यादि पर किए गए अनुसंधान एवं उसमें प्रचार प्रसार का परिणाम है। लेकिन आज भी कुछ अन्य देशों की तुलना में हमारे पशु दुग्ध उत्पादन अत्यंत कम कर रहे हैं। इस दिशा में सुधार की बहुत सी संभावनाएं हैं। छोटे भूमिहीन तथा सीमांत किसान जिनके पास फसल उगाने एवं बड़े पशुओं को पालने के अवसर सीमित हैं, उन्हें छोटे पशुओं जैसे भेड़ बकरियां, सुअर एवं मुर्गी पालन कर रोजी रोटी के साधन व गरीबी से निपटने का एक आधार है। विश्व में हमारा स्थान बकरियों की संख्या में दूसरा एवं कुक्कुट की संख्या में पांचवा है, जो कम खर्चे में और कम स्थान में मेहनत कम मेहनत में और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए उपयुक्त है। छोटे पशुओं का इसमें अहम योगदान है। अगर इसमें संबंधित उपलब्ध नवीन तकनीकियों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए तो निसंदेह ये छोटे पशु गरीबों के लिए आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। देश की लगभग 70% आबादी कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है। छोटे एवं सीमांत किसानों के पास कुल कृषि भूमि का लगभग 30% जोत है, जिसमें से 70% कृषक पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हैं, जिनके पास कुल पशुधन का 80% भाग मौजूद है। स्पष्ट है कि देश का अधिकांश पशुधन आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग के पास है।
2: जी जी पांडे जी, आप बहुत अच्छी जानकारी देना। अब सबसे बड़ी चीज हो कि चाहे वो फसल हो चाहे पशुपालन हो, प्रजाति का बड़ा महत्व है। फसल में भी प्रजाति का महत्व होता है, और आजकल अब वो जमाना नहीं बाय कि भैया देसी गाय पालत बैठा, 3 पाव दूध होता तो उसे काम चली। तो आज गायन के कौन कौन से अपने यहाँ प्रजाति, और अब तो बहुत तरह तरह के प्रजाति आ गल बाटी,
3: जी जी।
2: तो ओके बताओ कौन कौन प्रजाति का यहाँ पालन करे
3: तो
2: में
3: भारत
2: ठीक
3: में
2: हो।
3: भारत में गाय की लगभग 41 नस्ल रजिस्टर्ड हैं एनबीएजीआर द्वारा,
2: जी,
3: जिसमें गाय की प्रमुख नस्लें हैं गिर है, रेड सिंधी है, साहिवाल है, हरियाणा, थारपाकर, कांकरेज, मालवी, मेवाती, राठी एवं नागौरी है। तो कांकरेज, नागौरी और हरियाणा की जो ब्रीड है उसके जो बैल हैं वो खेती के लिए उत्तम होते हैं।
2: जी जी।
3: गिर नस्ल के अपने अर्धचंद्राकार जो सींग होती है,
2: हाँ हाँ,
3: उसकी वजह से पहचानी जाती है, और इस नस्ल में बीमारियों की प्रतिरोधक क्षमता भी थोड़ी ज्यादा होती है। और साधारणतः गिर नस्लें जो है गायें प्रति ब्याद लगभग 1200 से 1800 लीटर दूध देती हैं, और साहिवाल गाय जो होती है वो एक उसकी देसी नस्ल है जो प्रति ब्याद लगभग 1400 से 2500 लीटर दूध देती है, और जो थारपाकर नस्ल होती है वो उसके बैल जो है वो खेती में उपयोग आ सकते हैं, और जो गाय होती है वो अत्यंत दुधारू होती है, वो एक ब्याद में लगभग 1800 से 2600 लीटर दूध देती है। और जो इसमें अपने यहाँ कुछ विदेशी नस्लें भी हैं, तो जैसे उसमें विदेशी नस्लों में हॉलैंड की होल्स्टीन फ्रिजियन, इंग्लैंड की जर्सी और स्विट्जरलैंड की ब्राउन स्विस को अपने यहाँ भारत में मान्यता मिली है, तो इन गायों की दूध उत्पत्ति क्षमता अधिक है और इन नस्लों को देसी नस्लों के साथ मिलाकर जैसे जर्सिन और करन स्विस और करन फेज की नस्ल

0: एनडीआरआई करनाल द्वारा विकसित की गई हैं
1: हाँ
0: और इस संकर किस्मों का दूध की क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है और ये स्थानीय वातावरण के अनुसार भी अनुकूल होती हैं। तो सर्वप्रथम हम आपको बताना चाहेंगे कि एक डेयरी फार्म यदि खोलना है तो उसमें सबसे पहले किसान भाइयों को प्रशिक्षण बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: उनका जो है प्रशिक्षण पहले कहीं ना कहीं किसी जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है या कृषि विज्ञान केंद्र है या जो है किसान मेला होता है, ऑर्गेनाइज होता है कई जिलों में अलग अलग जगहों पे, तो उसमें जो है वो जाएं और उसका प्रशिक्षण लें, उसका अनुभव प्राप्त करें। उसके बाद सबसे पहले जब चुनाव करें तो डेयरी फार्म की लोकेशन देखें, जैसे
1: हाँ
0: कहाँ पे है ये है, मतलब वहां पे हरा चारा उपलब्ध रहेगा या नहीं
1: बिल्कुल
0: रहेगा,
1: हाँ
0: जो है मार्केट के नजदीक है या दूर है वहां
1: हाँ
0: से,
1: दूध
0: क्योंकि
1: पहुंचाने
0: जब
1: की
0: दूध
1: सुविधा
0: बेचना है तो
1: जी
0: दूध के जो आपको भूसा चारा हरा चारा लाना पड़ेगा, राशन लाना पड़ेगा और फिर उसके बाद दूध बेचने ले जाना है या लोग आएंगे खरीदने के लिए, तो मार्केट के नजदीक होना चाहिए।
1: कुशल
0: पानी,
1: प्रबंधन जी
0: जी कुछ, और पानी की व्यवस्था भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो गाय पीते हैं अदरवाइज बीमार पड़ेंगे सब पशु।
1: बिल्कुल हाँ
0: और रोड की फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए जहां पे चुनाव कर रहे हैं। और जमीन, तो जमीन का जो है वो पर्याप्त जमीन होना चाहिए। जैसे आपने सोचा है कि हाँ हमें 100 गायें पालनी है तो
1: हाँ
0: उसके
1: नहीं उनके
0: हिसाब से,
1: सोते बैठे बैठे
0: जी
1: पर्याप्त जगह चाहिए, भगदड़
0: जी
1: वाली स्थिति न
0: हाँ,
1: रहे।
0: मतलब
1: हाँ
0: पर्याप्त जगह रहे
1: हाँ
0: तभी वो
1: हाँ
0: मतलब अपने प्रतिकूल वातावरण अनुकूल वातावरण में रहेंगे,
1: जी
0: और ऊंचाई पर हो, ढलान पे ना हो, मतलब
1: हाँ
0: सीलन
1: पानी न
0: वगैरह
1: लगे,
0: नमी ना
1: कोनो
0: रहे
1: कीड़ा
0: वहां पे।
1: मकोड़ा न रहे।
0: और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि देखिए कोई भी चीज चलती है अर्थ से, तो किसान भाइयों को ये एक अंदाजा लगा लेना चाहिए कि हमारे पास कितना अर्थ है, हम कितना पशुपालन कर सकते हैं,
1: जी
0: क्योंकि शुरू करना आसान है, उसे चला पाना कठिन है, कि मतलब बाद में ऐसी दिक्कतें ना आए उनको। तो पहले वो अपना बजट डिसाइड कर लें कि
1: हाँ
0: हाँ
1: हाँ
0: कितना मतलब हम कर सकते हैं, उसी हिसाब से वो अपना काम करें। और उसके बाद बहुत सी संस्थाएं हैं, जैसे एनडीडीबी है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, और एनबीआरडी है, नाबार्ड है, और नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। ये जो है फंड बहुत से देते हैं, प्रोजेक्ट्स देते हैं आपको कि अपना काम करिए। आईसीआर है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, केजीके हैं, केवीके हैं, और किसान मेला ऑर्गेनाइज होता है। तो ये
1: जी
0: आपको बहुत सारे जो है फंड देते हैं कि आप अपना जो है कैसे कैसे जो है, बहुत से प्रोजेक्ट आते हैं गौ पालन पे, पशु उस पे, मुर्गी पालन पे, मछली पालन पे, तो आप अच्छी अपनी आमदनी कर सकते हैं।
1: हाँ भैया दिखा कोनो चीज हो पशुपालन में सबसे महत्वपूर्ण आहार होता है, लेकिन अगर संतुलित आहार न मिली
0: जी
1: तो बेहतर पशुपालन हो ना सकत, तो आहार के बारे में थोड़ा बतावें।
0: जी तो दुधारू गायों को आहार उसके दूध उत्पादन क्षमता और उसके वजन के अनुसार देना चाहिए, और सूखा व हरा चारा नियमित आधा आधा मिलाकर देना चाहिए। प्रति 2 लीटर दूध के उत्पादन पर 1 किलो राशन देना चाहिए। तो गायों को जो है प्रति 2 लीटर दूध पर 1 किलो दाना जो है जरूर देना
1: जी
0: चाहिए।
1: जी
0: और नमक उसको, जैसे गायों गायों में देखते हैं आप ही कभी कभी वो दीवाल चाटने लगती हैं, तो उनको जो है नमक देना चाहिए, एग्रीमिन फोर्ड देना चाहिए, ताकि उनकी मिनरल मिक्सचर रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी होती रहे। उसके बाद दूध देने वाली नस्लों को गर्भधारण के 2 महीने बाद से ब्याने के 15-20 दिन पहले तक धीरे धीरे राशन को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना चाहिए, जो कि लगभग 4 से 5 किलो तक जाने के बाद फिर
1: जी
0: धीरे धीरे उसी पे कांस्टेंट रख के फिर बंद करना चाहिए। और बछियों को भी, जो गाय की जो बछिया होती हैं, तो बछियों को भी संतुलित आहार देना चाहिए, जिसके मतलब कि क्योंकि उन्हीं से फिर आगे दूध का प्रोडक्शन होना है,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: उनको भी मतलब अच्छा खान पान रखना चाहिए। और वर्ष भर क्या होता है कि हमें हरे चारे नहीं मिल पाते हैं,
1: जी
0: तो
1: जी
0: हमें जो है जैसे साइलेज बनाना है तो साइलेज बना के थोड़ा सा डेयरी पर रख लिया और हे बना लिया, तो वो क्या करते हैं उससे जो है आप वर्ष भर हरा चारा जो है गायों को उपलब्ध करा सकते हैं।
1: अब भैया आवास बहुत जरूरी है, लिए कि अब पहले जैसा
0: जी
1: ये सब जो महंगी नस्ल के गाय हैं या भैंस हैं
0: जी
1: इनके लिए उत्तम आवास की व्यवस्था होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए?
0: तो गायों का आवास की उचित व्यवस्था होना बहुत ही जरूरी है, जैसा कि आपने कहा, तो जिसमें पशु के लिए पर्याप्त जगह और उसके साथ पानी आहार का पूरा प्रबंध होता है। साधारणतः एक पशु के लिए लगभग 8 से 6 वर्ग फीट का स्थान पर्याप्त माना जाता है, और पशुओं की संख्या के हिसाब से पशुशाला का निर्माण होना चाहिए। और पशुओं को बाहर लूज, जैसे या तो लूज हाउसिंग सिस्टम में या कन्वेंशनल बार में रखते हैं, तो उसमें या तो खुले बाड़े में रख सकते हैं या बांध के रखते हैं। तो जो बांध के रखते हैं उसमें कन्वेंशनल बार, उसमें 2 टाइप की हाउसिंग होती है, एक जो है हेड टू हेड, जिसमें सर जिसमें बीच में मांद होती है,
1: हाँ
0: मतलब क्या नाम कहते हैं, नांद होती है,
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: उसमें दोनों तरफ से सामने से खाते हैं,
1: जी एक
0: और
1: उधर एक
0: जी
1: इधर।
0: उधर सामने
1: हाँ
0: सामने
1: जी
0: से। और एक होता है टेल टू टेल सिस्टम, जिसमें दोनों जो है उनकी जो पूंछ वाला सिरा होता है वो पीछे होता है, दोनों
1: हाँ
0: जो है खाने वाला अलग
1: जी
0: होता
1: जी
0: है।
1: जी जी
0: और इनकी जो छत की हाइट होनी चाहिए वो भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में 175 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट।
1: छत

0: छत की हाइट, और जो है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में 220 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए।
1: अब रोग और बीमारी से बचाई बहुत जरूरी है, तो ओकर टीकाकरण कैसे करें, ओकर रोकथाम कैसे करें, कौन कौन रोग लगते हैं इनके?
0: जी जी, तो गायों की महामारी, गायों में जो है जनरली महामारी, खुरपका, मुंहपका, माता, रेबीज, ये सब विषाणु जनित जो है रोग हैं। और गायों में जहरी बुखार, गला घोंटू, जहरवाद, सूखा रोग, निमोनिया, क्षय रोग, थनैला, ये सब जीवाणु रहित जनित हैं। और इनके रोकथाम के लिए पशुशाला में अच्छी साफ सफाई रखनी चाहिए एवं समय पर सभी पशुओं का टीकाकरण करवाना चाहिए। अधिकतर टीकाकरण बरसात के पहले
1: समय समय पर पशु चिकित्सक से भी संपर्क रखें,
0: सलाह लेना चाहिए। तो परजीवियों के रोग में जैसे लाल पेशाब, लीवर फ्लू एवं दुधारू गायों में देखा गया है, तो दुधारू पशुओं में कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जो सड़ा गला खाने से हो जाते हैं।
1: जी, अब ये प्रजनन और नवजात बछड़न का देखभाल के बारे में बताओ थोड़ा।
0: जी, तो गाय लगभग 2 साल की उम्र में प्रजनन योग हो जाती है, तो दुधारू गायों को गर्भित करवाने के लिए 2 विधियां यहाँ प्रचलित हैं। एक तो प्राकृतिक विधियां, और जिसमें हम सांड द्वारा जो है जनरेट कराते हैं और गाय जो है फलित किया जाता है, और दूसरा कृत्रिम गर्भाधान, जिसमें अच्छी नस्ल के साड़ों का सीमेन जो होता है उसे जो है AI गन द्वारा गायों को फलित किया जाता है। तो प्राकृतिक रूप से गर्भित करने वाले गाय जो होती है वो बछिया जो होती है वो उसी साड़ वाली प्राप्त होती है, पर उसमें जो है जो AI गन द्वारा होती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से उसमें जो है अच्छा हम प्राप्त कर सकते हैं क्रॉस इंसेमिनेशन।
1: अब नवजात बछड़न का देखभाल कैसे करें थोड़ा एक बताओ।
0: जी, बछड़े जो होते हैं, देखिए जब होते हैं तो जब नए नए पैदा होते हैं तो बहुत ही कमजोर होते हैं, तो उनका देखभाल करना बहुत ही आवश्यक है। तो नवजात उसमें क्या करते हैं, उसमें सबसे पहले जब वो पैदा हो तो उनके नाक और मुंह में जो है म्यूकस लगा होता है, तो उसको उंगली डाल के और उसे थोड़ा पैरा से उसको थोड़ा साफ करना चाहिए, और थोड़ा सा उन्हें ब्लड सर्कुलेशन के लिए उसे जो है थोड़ा सा रगड़ना चाहिए, उनकी पीठ थपथपाना चाहिए।
1: जी जी।
0: और उसके बाद उनके अम्बिलिकल कॉर्ड बांध के काटना चाहिए, फिर जो उनका वीनिंग की जाती है माँ से हटाया जाता है उसमें काफ स्टार्टर और रिप्लेसर देना चाहिए दोनों।
1: भैया गौरव पांडे जी, पशुपालन द्वारा किसानन के आय दोगुना करे का उत्तम सुझाव आप देने, आपके जानकारी देव दे बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भैया घनश्याम, हम कही देखा ही बात बत कही जो रही पशुपालन द्वारा किसानों की आय दुगुना करे के सरल उत्तम सुझाव पे बढ़िया जानकारी।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: पांडे से जयकृष्ण नारायण शर्मा के, तो हम कही जे भी किसान भाई ये पशुपालन करे चाहत बाटे तो प्रशिक्षण जरूर ले भाई, बिना जानकारी के फायदा नहीं मिलत।
1: कौनो भी काम हो भैया, चाहे खेती किसानी हो भैया, चाहे कौनो रोजी रोजगार,
2: हाँ सीखे के चाहिए।
1: हाँ भैया, पूरी जानकारी रख के तब भैया ओकर शुरुआत करबे ना, तो ओकर मौज कुछ और हो जाला।
2: सही कह भैया, तो हम तो कही ना कि एक ठी और गौनई सुनवाई दिया जाए फिर बात बत कही।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: तो देखा बरम दिन यादों के संघातिन गाय गौनई किसान भाई एक सुने जो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सुनवा दा।

0: उठकर जंगल वर निहारी पैर पकड़ कर रोई
1: नारी।
0: अरे सजनवा हमें माई न कह।

0: घनश्याम भैया देखा बरम दिन यादव संघातिन बिरहा किसान भाई सुना
1: खूब
0: साने
1: खूब
0: सुने।
1: भैया। हाँ
0: हम तो कहीं देखा चलत चलावत अपने कार्यक्रम के प्रतिक्रिया के भाई जोन फोन नंबर बा वो बताई दे है जाए।
1: बिल्कुल
0: तो भैया हो गांव में सबके पास मोबाइल बा व्हाट्सएप चलावत हैं तो नंबर एक ही लिख लें और फिर अपन क्रिया प्रतिक्रिया कैसे कथिन सुझाव दे चाहत हैं या का अच्छा लागत बा अपन बताई सकत हैं।
1: हाँ हाँ
0: तो नंबर लिखें 800-4926-2500 ई
1: हाँ
0: नंबर पे व्हाट्सएप पे अपन संदेश लिख भेज सकते हैं। एक अलावा इंस्टाग्राम और का कहते हैं फेसबुक पे भी प्रोफाइल बनी बा प्रयागराज आकाशवाणी प्रयागराज के नाम से वहाँ पे भी अपन पसंद कर सकते।
1: बिल्कुल बिल्कुल सुझाव भैया निश्चित रूप से ओकरे अनुसार कार्यक्रम में हमने सुधार भी करब।
0: अब देखा चले के भी
1: हाँ
0: बेला हो गई पंचन से विदा ले जाए तो पंचो
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में कड़ी सजा देने के लिए सदन में मसौदा विधेयक पेश करेगी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की

0: अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मिली मंजूरी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति की मांगी जानकारी। केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को हलफनामा दाखिल करने के दिए निर्देश। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने झांसी में 83 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से पेयजल योजना का किया लोकार्पण। कहा, बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। और राज्य के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। बाराबंकी में घाघरा का जलस्तर खतरे के निशान के पार। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में गरज चमक के साथ वर्षा का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। वहीं इस मामले पर संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विधेयक के पारित होने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए। इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हटकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा था कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं।
2: पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया।
0: इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों की भूख हड़ताल समाप्त कर दी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक के दौरान परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी पार्टी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। उन्होंने बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी ने 3 मुख्य मांगे रखी और परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने हमेशा युवाओं के हितों को ध्यान में रखा है। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में समय रहते कार्रवाई के साथ दोबारा परीक्षा भी करवाई गई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को इस मुद्दे पर सड़कों पर उतरने के बजाय सदन में चर्चा करनी चाहिए।
3: युवा हमारा देश का भविष्य, और युवा किसी राजनीतिक दल का नहीं है बल्कि देश का एसेट, और प्रधानमंत्री हमेशा उस युवाओं पे फोकस किया है। और हमने देखे होंगे कि नीट परीक्षा के लीक होने के बाद तत्काल उस पर सख्त कार्रवाई भी की, और बच्चों का भविष्य खराब ना हो जल्द से जल्द नीट का अच्छी तरीके से परीक्षा भी कराया लाखों परीक्षार्थियों को मांग। और हम विपक्ष से भी कह रहे हैं कि आप आओ सदन में बात करो कि युवाओं के लिए आगे कोई दिक्कत ना आए, वैसा जो आपके पास सुझाव हो दें ताकि उसका कानून बनावे नया, ताकि आगे से पेपर लीक ना हो।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। पीठ ने कहा कि वो इस मामले पर कड़ी निगरानी रखेगी और नियमित रूप से इसकी समीक्षा करती रहेगी। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से ये भी पूछा कि वो परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह

0: ऑनलाइन माध्यम में बदलने के लिए क्या कदम उठा रही है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश में 3 समर्पित रासायनिक पार्क स्थापित करने के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भव्य रसायन योजना के लिए कुल 3030 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन किया जाएगा। ये योजना वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगी।
1: भव्य रसायन स्कीम का बेसिक थीम है प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क्स। प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क्स टाइम टेस्टेड स्ट्रेटजी है, दुनिया के कई देशों ने की है ये, और 5 इयर्स रहेंगे। टोटल फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल आउटले 3000 करोड़ का है। 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स बनेंगे, चैलेंज बेस्ड कॉम्पिटिटिव सेलेक्शन होगा।
0: नगर विकास व ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने झांसी में 83 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से निर्मित गुरसराय नगर पालिका परिषद और गरौठा नगर पंचायत संयुक्त पुनर्गठन पेयजल योजना का लोकार्पण किया। इस परियोजना से लगभग 7,740 घरों को नियमित रूप से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इस मौके पर श्री शर्मा ने कहा कि आज प्रदेश सरकार बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में पेयजल, बिजली और आधारभूत ढांचे के विकास पर अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं। उन्होंने बुंदेलखंड में विकसित हो रहे डिफेंस कॉरिडोर और सौर ऊर्जा परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आगामी सावन माह में कांवड़ यात्रा को लेकर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में जौनपुर में कल कांवड़ यात्रा को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में यात्रा के दौरान आपसी सौहार्द, शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की गई। शामली में प्रदेश के अधिकारियों और हरियाणा प्रशासन के बीच बैठक आयोजित हुई, जिसमें सुरक्षा, ट्रैफिक डायवर्जन, CCTV निगरानी और सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान पर चर्चा की गई। प्रयागराज के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए कई विभागों और जनता के बीच समन्वय बनाया जा रहा है।
2: कांवड़ यात्रा को लेके जो भी से जुड़े हुए, चाहे वो सरकारी विभाग हो या फिर आम जन हो या जो भी समितियां, उनके साथ एक संवाद स्थापित किया गया है। जनपद स्तर पर भी एक बैठक की गई थी, जिसके मुख्य जो घाट हैं जहां से गंगा जल लेके लोग शिवालयों में जाते हैं, वहां का निरीक्षण किया गया, रूट का निरीक्षण किया गया। घाटों पर जहां जहां पे जल पुलिस की सहयोग लेनी है, जल पुलिस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस तरह से श्रद्धालुओं को कहीं कोई कठिनाई न हो, इसके लिए हमारे पूरे अधिकारी पूरे अलर्ट मोड में हैं।
0: राज्य के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बाराबंकी में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं अयोध्या और बलिया में घाघरा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बदायूं में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। बाढ़ की आशंका के दृष्टिगत प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में कड़ी सजा देने के लिए सदन में मसौदा विधेयक पेश करेगी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मिली मंजूरी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति की मांगी जानकारी। केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को हलफनामा दाखिल करने के दिए निर्देश। नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने झांसी में 83 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से पेयजल योजना का किया लोकार्पण। कहा, बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। और राज्य के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। बाराबंकी में घाघरा का जलस्तर खतरे के निशान के पार। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में गरज चमक के साथ वर्षा का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन

सुगम संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मंजू नारायण के स्वर में युगल प्रिया का लिखा ये गीत, और लीजिए अब सुनिए कबीर दास का ये भजन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मंजू नारायण के स्वर में गीत और भजन। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने आज हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही पहले स्थगन के बाद 12 बजे दोबारा जैसे ही शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी आज सदन में मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि प्रमुख विपक्षी दल का

नेता होने के नाते और प्रधानमंत्री के पेपर लीक पर सख्त कदम उठाने की घोषणा के बाद विपक्ष को संसद में इस पर चर्चा कराने में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब सरकार कठोर कानून बनाने जा रही है, पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है और सरकार की मंशा मजबूत कानून लाने की है, तो फिर विपक्ष को चर्चा में सहयोग करना चाहिए। प्रमुख विपक्षी दल के नेता होने के नाते श्री गांधी को इस दिशा में पहल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि चर्चा नहीं होती है तो इसका संदेश गलत जाएगा। श्री रिजिजू के आग्रह के बाद भी विपक्षी दलों ने हंगामा जारी रखा। पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने भी कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए और उन्हें अपनी सीट पर जाना चाहिए। उनका कहना था कि आज महत्वपूर्ण विधेयक है, इसीलिए सदस्यों को अपनी सीट पर जाकर सदन को चलाना चाहिए। हंगामा जारी रहा तो पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिड़ला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। श्री बिड़ला ने सदस्यों से शोर शराबा नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन उनकी बात पर ध्यान दिए बिना सदस्य नारे लगाते रहे। इस पर श्री बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, सदस्य सवाल पूछते हैं और सरकार की जवाबदेही तय करते हैं। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कार्यवाही शुरू होते ही सदन को कारगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि कारगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई 2026 को कारगिल दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है, जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय योगदान दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि संपूर्ण राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। ये सदन उन वीर शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि देश में किसानों को उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक फसल मौसम से पहले राज्यों की आवश्यकता का आकलन किया जाता है और उसी के आधार पर मासिक आपूर्ति योजना बनाकर उर्वरकों का आवंटन किया जाता है। सरकार ने कहा कि खरीफ 2026 के दौरान यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस सहित सभी प्रमुख उर्वरकों की राज्यों में पर्याप्त उपलब्धता बनी रही तथा उनकी आपूर्ति की लगातार निगरानी की जा रही है। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि उर्वरकों की आवाजाही पर एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली के माध्यम से नजर रखी जाती है। जिला और ब्लॉक स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकारें करती हैं। उन्होंने कहा कि फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिए वर्ष 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति लागू है। इसके तहत कंपनियां अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, जबकि सब्सिडी पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर दी जाती है। किसानों को डीएपी 50 किलोग्राम की बोरी 1,350 रुपये के वहनीय मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए खरीफ और रबी 2025-26 तथा खरीफ 2026 के लिए एनबीए सब्सिडी के अतिरिक्त 3,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन का विशेष प्रावधान भी किया गया है, ताकि उर्वरकों की कीमतें स्थिर बनी रहें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 से अब तक देश भर में 26 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। विभिन्न अध्ययनों में पाया गया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के अनुसार उर्वरकों के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों की खपत में 8-10% तक कमी आई है, जबकि फसलों की उत्पादकता में 5-6% तक वृद्धि दर्ज की गई है। नीति आयोग ने भी एनबीएस योजना को संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए उपयोगी बताते हुए इसे और प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में कहा कि FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य योजक विनियम 2011 अधिसूचित किए हैं, जिनमें बिस्किट, खाद्य तेल तथा अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों के मानक निर्धारित किए गए हैं। इन विनियमों के अनुसार पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है। चूंकि पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है, इसका उपयोग स्नैक्स, बिस्किट, नमकीन और अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में खाद्य तेल के घटक के रूप में करने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक लेबलिंग और प्रदर्शन विनियमन 2020 के अनुसार खाद्य उत्पादों की सामग्री सूची में प्रयुक्त खाद्य तेल का विशिष्ट नाम देना अनिवार्य है। केवल खाद्य वनस्पति तेल जैसा सामान्य नाम लिखना पर्याप्त नहीं है, इससे उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिलती है और वे सूचित विकल्प चुन सकते हैं। सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है। FSSAI के मानक स्वतंत्र वैज्ञानिक जोखिम आकलन, वैज्ञानिक पैनलों और समितियों की राय पर आधारित होते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कोडेक्स मानकों के अनुरूप बनाए जाते हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने एक लिखित उत्तर में कहा कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजना मिशन वात्सल्य के माध्यम से राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में मदद करता है। मिशन वात्सल्य योजना अन्य बातों के साथ साथ किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 तथा मिशन वात्सल्य दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके और बाल देखरेख संस्थानों को छोड़ रहे पात्र युवा वयस्कों के लिए उत्तरोत्तर देखभाल सहायता प्रदान करती है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में बताया कि जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य के विषय हैं, अतः जन स्वास्थ्य सुविधाओं में मानव संसाधन की पर्याप्तता और सेवा उपलब्धता सहित स्वास्थ्य परिचर्चा प्रणाली को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज लखीमपुर खीरी, जिसकी वार्षिक प्रवेश क्षमता 100 MBBS विद्यार्थियों की है, को स्नातक चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग NMC द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार स्थापित किया गया है। वर्तमान में कॉलेज MBBS शिक्षा के लिए NMC विनियमों के तहत अनिवार्य विभागों, अवसंरचना और सुविधाओं से सुसज्जित है। वर्तमान में कॉलेज में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी आदि जैसे सुपर स्पेशलिटी विभाग स्थापित नहीं किए गए हैं। कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी आदि जैसे रोगों से संबंधित गंभीर रोगियों का उपचार सामान्य चिकित्सा विभाग के संकाय द्वारा किया जा रहा है और जिन रोगियों को सुपर स्पेशलिस्ट परिचर्या की आवश्यकता होती है, उन्हें KGMU लखनऊ, SGPGI रेफर किया जा रहा है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा और सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय बनाने के प्रावधान वाला एक विधेयक सदन में पेश किया गया। हंगामे की वजह से आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति CP राधाकृष्णन ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले करगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। सभापति ने कहा कि 26 जुलाई को देश करगिल विजय दिवस मनाएगा। ये दिन 1999 के करगिल युद्ध में भारत की जीत की याद में और हमारे सशस्त्र सेनाओं के उन बहादुर अधिकारियों तथा सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्होंने अद्भुत साहस, वीरता और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा के साथ देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर ये सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है, जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। हम सशस्त्र

0: सेनाओं के उन सभी सदस्यों के प्रति भी गहरा आभार व्यक्त करते हैं जिनका दम्य साहस, दृढ़ संकल्प और असाधारण चुनौतियों के बीच निस्वार्थ समर्पण देश को प्रेरित करता रहता है और देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के हमारे सामूहिक संकल्प को और मजबूत करता है। सभापति ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस सदन के सदस्य बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने में मेरे साथ शामिल होंगे। इसके बाद सदस्यों ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शूर वीर सैनिकों के सम्मान में कुछ पलों का मौन रखा। करगिल विजय दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन इस बार 26 जुलाई को रविवार होने के कारण अवकाश होगा और संसद की बैठक नहीं होगी, इसलिए आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और प्रश्नकाल शुरू करना चाहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर सोमवार को राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में तथा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई का जिक्र किया। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्ता पक्ष के सदस्य विरोध करने लगे। सभापति ने हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और उच्च सदन में आज भी शून्यकाल नहीं हो पाया। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने फिर से सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने के लिए आमंत्रित किया। श्री खड़गे ने कहा कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री को स्थिति स्पष्ट करते हुए बयान देना चाहिए। श्री खड़गे अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने भी हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। सदन में अव्यवस्था देख राधाकृष्णन ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा करने की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति हरिवंश ने विपक्षी सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए कहा कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम विधेयक 2026 को पेश किया जाना है जो आज के कामकाज की सूची में सूचीबद्ध है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। संशोधन विधेयक के विरोध में प्रस्ताव रखते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटस ने कहा कि संविधान में जो बात तय हो चुकी है संसद उसे सामान्य अधिनियम के जरिए संशोधित नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि ये संशोधन विधेयक पूर्णतः देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की मंशा पर आधारित है, किंतु ये संविधान के उन संदर्भों की अनदेखी करता है जिनके आधार पर मूल कानून बनाया गया था। श्री ब्रिटस ने कहा कि संविधान सभा ने लगातार 3 वर्ष तक गहन विचार विमर्श करने के बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को एक समान दर्जा नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि किसी कानून के जरिए देशभक्ति और राष्ट्रवाद पैदा नहीं किए जा सकते। विधेयक की मंशा समाज का ध्रुवीकरण करना है। विधेयक को पेश करने के विरोध में प्रस्ताव पेश करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संतोष कुमार पी ने कहा कि वंदे मातरम का उद्देश्य समाज को एकजुट करना है, बांटना नहीं है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज करने जा रहे हैं फिल्म गदर 2 के इस गाने के साथ। आवाजें हैं विशाल मिश्रा और नीति मोहन की, गीत सईद कादरी का, संगीतकार मिथुन।

लीजिए अब सुनिए बत्ती गुल और मीटर चालू फिल्म का ये गीत। आवाज़ है राहत फ़तेह अली खान की, गीत संगीत है नुसरत फ़तेह अली खान का।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए अंग्रेजी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कस्तूरी रे की ये वार्ता, सुभाष चंद्र बोस द विजनरी लीडर ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल।
1: I do not know how many of us who are going to participate in coming battles will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free.

0: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक

0: पदक जीता। और राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
2: लगभग 2 घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने 3 मुख्य मांगें रखी और परीक्षाओं के पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार 5वें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मानसून सत्र के पहले सप्ताह में कोई भी महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा रखी गई कुछ शर्तों के कारण इस मुद्दे पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारियों और सरकार की ओर से व्यवस्था बनाए रखने की बार बार अपील के बावजूद विपक्षी सदस्य दोनों सदनों में विरोध प्रदर्शन करते रहे। लगातार हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के 4 महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की 3री और 4थी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर

0: बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
1: आंध्र और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: ये परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और संबंधित पक्षों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। श्री रवनीत रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारेस्ट में रोमानिया के प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात कर भारत रोमानिया साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, संचार तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में हो रहे सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है, जिनका उनके राष्ट्रीय हितों पर असर पड़ सकता है, और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रासंगिक मंचों पर सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव के बारे में लगातार बात करता रहा है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बारे में। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारत आपसी हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बांग्लादेश के साथ निरंतर संपर्क में है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि भारत ने तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनःस्थापन परियोजना के संदर्भों तथा प्रस्तावित चीन म्यांमार बांग्लादेश आर्थिक गलियारे की रिपोर्टों पर ध्यान दिया है। भारत ने आज नई दिल्ली में आपदा जोखिम शमन पर तीसरी ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। बैठक का समापन आपदा जोखिम शमन पर ब्रिक्स संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ। सदस्य देशों ने 2025-28 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम शमन कार्य योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और मजबूत समाज के निर्माण के लिए सहयोग को गहरा करने की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की। उन्होंने बेहतर सहयोग, नवाचार और सतत विकास के माध्यम से आपदा से निपटने की कार्यप्रणाली को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ. कृष्णा वत्सा ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों ने एक साथ संयुक्त वक्तव्य, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए स्वैच्छिक सिद्धांत और प्रारंभिक चेतावनी डेटा एकीकरण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया है।
2: ब्रिक्स महत्वपूर्ण देशों का समूह है। हम मिलकर डिसाइड करते हैं कि किन सारे एरियाज को हम और उस पर ध्यान केंद्रित करें, कहाँ पर हम ज़्यादा एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। तो एक वर्क प्लान बनाने की बात थी और जो औपचारिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हमने अडॉप्ट किया।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित

0: क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं।
1: सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। नवसारी में आज NDRF, SDRF और भारतीय सेना की संयुक्त टीमों ने 14,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उधर अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आमली और घुमा जैसे जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच भारी जलभराव के कारण आज भी रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल वर्षा की चेतावनी दी है और राज्य के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कल बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में आज भीषण सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उदयपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन मार्ग पर कदुनाला राहुली के पास हुई, जब पहाड़ी से अचानक एक विशाल चट्टान लुढ़क कर वाहन पर गिर गई। घटना के बाद पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हमारी विशेष श्रृंखला पीपल्स पद्मा आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया से बात करेंगे, जिन्हें इस वर्ष प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चीन के हांगचाओ में ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार 5वें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। और निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves draft bill to set up fast-track courts and stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. National Testing Agency terminates 47 officials. Union Ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh meet CJP delegation in New Delhi. Cabinet Committee on Economic Affairs approves new rail lines in Karnataka, Andhra Pradesh and new chemical park scheme to boost industrial growth. Proceedings of both houses of parliament remain disrupted amid ruckus by opposition. Heavy rains continue to lash several parts of Gujarat, affecting normal life. And in ISSF Shooting World Cup, Sanyam wins silver medal in women's 10-meter air pistol event in China. And now the news in detail. The Union Cabinet today approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashwani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week.

0: पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के आज लगातार पांचवें दिन दोनों ऐवानों की कार्रवाई में अपोजिशन की जानिब से शोरगुल के बाद रखना पड़ा। इसके साथ ही इजलास का पहला हफ्ता अपने अख्ताम को पहुंचा और कोई खास काम इस दौरान नहीं हो सका। हुकूमत की जानिब से बार बार यकीन दहानी कराए जाने के बावजूद कि वो नीट पेपर लीक के मामले पर बहस के लिए तैयार है, अपोजिशन ने मरकजी वजीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए अपना एहतजाज जारी रखा। शोरगुल के दौरान दाखिली उमूर के वजीर मुमलकत नित्यानंद राय ने राज्यसभा में आज कौमी ताजीम की तौहीन की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पेश किया। लोकसभा और राज्यसभा में आज करगिल जंग के शहीदों को खिराज अकीदत भी पेश किया गया। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरेन रिजिजू ने कहा कि हुकूमत पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर बहस के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जानिब से आयद मुख्तलिफ शराइत की वजह से बहस नहीं हो सकी। सदर नशी और हुकूमत की जानिब से बार बार अपील किए जाने के बावजूद अपोजिशन अराकीन दोनों ऐवानों में शोरगुल करते रहे। रखनांदाजी का यह सिलसिला जारी रहने के सबब लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने फौरी तौर पर वुजरा की मरकजी काबीना से रवनीत सिंह के इस्तीफे को कबूल कर लिया है। वो रेलवे और गजा को डिब्बा बंद किए जाने की सनतों के महकमे के वजीर ममलिकत थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारेस्ट में रोमानिया के वजीर आजम इली बोलोजान से मुलाकात की और भारत रोमानिया शराकत दारी में पेशरफ के मामले में समर आवर तबादला ख्याल किया। दोनों लीडरों ने बाहमी ताल्लुकात का जायजा लिया और तजारत सरमायाकारी साफ तवानाई कनेक्टिविटी और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज में तआवुन को मुस्तहकम करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। दोनों लीडरों ने बाहमी मफादात के शुबों में शराकत दारी को बढ़ाने के सिलसिले में भी बातचीत की और दोनों मुल्कों के दरमियान कलीदी शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के अपने अज़्म की तौसीख की। ये आकाशवाणी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के वजीर मुमलिकत जितिन प्रसाद ने कहा है कि हुकूमत एक खुले महफूज काबिल भरोसा और जिम्मेदार इंटरनेट को सभी इस्तेमाल कुनिंदगान बिलखसूस बच्चों के लिए यकीनी बनाने के तहीं पुरअज़म है। राज्यसभा में आज एक सवाल का तहरीरी जवाब देते हुए जनाब प्रसाद ने कहा कि अब जबकि इंटरनेट का इस्तेमाल और डिजिटल रसाई तेज रफ्तारी के साथ वसत इख्तियार कर रही है, ऐसे में नामुनासिब कंटेंट और दीगर ऑनलाइन खतरात तक बच्चों की रसाई का खतरा भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के नुकसानदेह असरात से बच्चों और नाबालिगों को तहफ्फुज फराहम करने के लिए हुकूमत ने इस तरह की इत्तलाआत को आम होने की रोकथाम के सिलसिले में कई इकदामात किए हैं। नई दिल्ली ने आज कहा है कि इस्लामाबाद के साथ सिंध आबी मुआहिदा तब तक मुअत्तल रहेगा जब तक वो सरहद पार दहशतगर्दी से दस्तबरदार नहीं हो जाता। नई दिल्ली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान मीडिया की उन रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया कि भारत जानबूझ कर पड़ोसी मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर रहा है। चीन के बारे में बात करते हुए तर्जुमान ने जोर देकर कहा कि भारत ने कभी भी किसी भी अंदाज में चीन की सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं की है और इस बारे में भारत का रवैया हमेशा यकसा रहा है। उन्होंने कहा कि सालमियत के मामले तो दरअसल भारत को उठाने चाहिए। तर्जुमान ने मजीद कहा कि चीन साल 1963 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उन भारतीय इलाकों पर गैर कानूनी तरीके से काबिज है जिन पर भारत के हक को चीन तक ने सरकारी तौर पर तस्लीम किया है। बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपनी 5 साल मुद्दत कार खत्म होने से 2 साल कबल ही खराबी सेहत की वजह से इस्तीफा दे दिया है। पार्लियामेंट के स्पीकर हाफिजुद्दीन अहमद ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। वो नए सदर के मुंतखब होने तक कारगुजार सदर के तौर पर फराइज अंजाम देंगे। साबिक जज और साल 1971 की बांग्लादेश की जंग आज़ादी के सिपाही रहे शहाबुद्दीन अप्रैल 2023 में सदर बने थे। शदीद बारिश ने गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। गुजरात के मुख्तलिफ अजला में मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हैं। आज शुमाली गुजरात में शदीद बारिश हुई। पाटन ज़िले के राधनपुर में 9 इंच से ज़्यादा जबकि संतलपुर में भी 9 इंच के करीब बारिश रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल और नायब वज़ीर आला हर्ष सांघवी जनूबी गुजरात में सैलाब की सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। मज़ीद तफ़सील हमारे नामा निगार से।
2: गुजरात के सैलाब से मुतासर अजला नौसारी सूरत और वलसार में राहत और बचाव का काम जारी है। नौसारी में NDRF SDRF फौज और मकामी गोताखोरों ने एक मुश्तरक ऑपरेशन में

लीजिए अब सुनिए नवाब देवबंदी की ये गज़ल, आवाज़ है जगजीत सिंह की। तुमको हम दिल में बसा लेंगे, तुम आओ तो सही, सारी दुनिया से छुपा लेंगे, तुम आओ तो सही। एक वादा करो अब हमसे ना बिछड़ोगे कभी, नाज हम सारे उठा लेंगे, तुम आओ तो सही।

जगजीत सिंह की। तुमको हम दिल में बसा लेंगे, तुम आओ तो सही। सारी दुनिया से छुपा लेंगे, तुम आओ तो सही। एक वादा करो अब हमसे ना बिछड़ोगे कभी, नाज हम सारे उठा लेंगे, तुम आओ तो सही।

अभी आप सुन रहे थे अकबर इलाहाबादी की, एक गज़लनवाज थी गुलाम अली की। और अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं शाहिद अख्तर की गज़ल, आवाज़ है हरिहरन की। हर लम्हा बदलती दुनिया का एक तुम्हारा साथ है जो सबसे खूबसूरत है। जब तुम्हारा साथ होता है तब बारिश होती है, तब फूल खिलते हैं राहों में और दिल में फिर से हलचल होती है। तब दुनिया चाहे कितनी बदले, बाहर हो जितना भी अंधेरा, अंदर से किरणें फूटती हैं, अंदर से मौसम बदलता है।

तो ये था गजलों का कहकशां। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: मुझे आने में 10 मिनट देर हो गई मिस्टर भंडारी, आई एम सॉरी।
1: कोई बात नहीं मिस्टर शैलेन, बैठिए।
2: आपके लिए चाय मंगाऊं या कॉफी?
0: जी धन्यवाद, अभी कुछ नहीं चाहिए।
2: मर्जी आपकी। हाँ तो हम मूल विषय पर बातें शुरू करें।
0: जी हाँ।
2: फोन पर आपने बताया था कि आप अपनी श्रीमती जी को तलाक देना चाहते हैं।
0: यस, और कोई चारा भी नहीं है मिस्टर भंडारी।
2: ठीक है ठीक है। देखिए मिस्टर शैलेन, मैं तलाक का केस तभी लेता हूँ जब मुझे ये यकीन हो जाए कि तलाक ज़रूरी है। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जहाँ तक हो सके पति पत्नी के बीच सुलह समझौता हो जाए।
0: उसकी कोई गुंजाइश नहीं मिस्टर भंडारी, मैं अब अपना फैसला नहीं बदल सकता।
2: आई सी। अच्छा ये बताइए कि आप तलाक क्यों देना चाहते हैं? आप अपनी असली मंशा चाहे मुझे ना बताएं, पर आपको ये तो बताना ही पड़ेगा कि तलाक के लिए कानूनी आधार क्या है।
0: जी मैं आपका मतलब नहीं समझा।
2: क्या आपकी पत्नी चरित्रहीन है?
0: जी नहीं।
2: क्या किसी अन्य पुरुष से उसके संबंध है?
0: नहीं तो।
2: क्या उसने आपके साथ विश्वासघात किया है?
0: नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मिस्टर भंडारी।
2: फिर कैसी बात है, क्या बात है?
0: बात ये है वकील साहब, क्यों पागल है।
2: क्या पागल है?
0: जी हाँ।
2: वो पागल है। अच्छा आप ये बताएं कि आपकी शादी कब हुई थी?
0: जी यही कोई 5 साल पहले।
2: वो पागल है ये आपको कब पता चला?
0: देखिए 4 साल तक तो वो बिल्कुल नॉर्मल रही, लेकिन पिछले 1 साल से उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आया है।
2: कैसा परिवर्तन?
0: यही चीखना चिल्लाना, बात बात पर मुझसे झगड़ना, घर में तोड़ फोड़ करना, अनाप शनाप बकना।
2: भाई इस परिवर्तन की कोई खास वजह भी तो होगी।
0: जी मेरी समझ में तो कोई खास वजह नहीं।
2: देखिए मिस्टर,

0: वकील और डॉक्टर से कोई दुराव नहीं रखना चाहिए भाई, कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। सच सच बताइए मुझे आप।
1: सोनाली, आई मीन मेरी वाइफ बहुत शक की स्वभाव की है। मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाती कि मैं किसी गैर औरत से हंसूं बोलूं, घुल मिलकर बातें करूं, उसे जलन होती है।
0: भाई कोई पत्नी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती है। वैसे एक बात समझ लीजिए मिस्टर शैलेन, कि जलन ईर्ष्या प्रेम की ही निशानी है। इससे तो ये जाहिर होता है कि आपकी पत्नी आपको बेहद चाहती है और इसीलिए
1: इसकी ईर्ष्या ने मेरी जिंदगी नरक कर दी है। I'm fed up now.
0: ठीक है, मुझे आपसे हमदर्दी है, लेकिन मिस्टर शैलेन मुझे लगता है कि आप असली मुद्दा मुझसे छुपा रहे हैं। देखिए एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अगर आपने मुझसे कुछ भी छुपाया तो मैं आपका यह केस नहीं लूंगा, आपको किसी दूसरे वकील का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा फिर।
1: मिस्टर भंडारी, मैं आपके पास बड़ी आशा लेकर आया हूं, जानता हूं आप कोई केस नहीं हारते।
0: और उसकी वजह भी आप जान लीजिए कि मैं हमेशा वही केस लेता हूं जिसका कोई ठोस आधार होता है, और आपकी बातों से तो अभी मैं खुद भी कन्विंस नहीं हो पाया हूं, तो मैं भला कोर्ट को कैसे कन्विंस करूंगा। और फिर आपने खुद ही बताया कि 4 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पिछले 1 साल से ये टेंडेंसी डेवलप हुई है, क्यों? अच्छा खैर, ये बताइए कि आप दोनों के बीच वो औरत कौन है जिसने आपकी पत्नी को अपसेट कर दिया है?
1: जी
0: बोलिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए।
1: जी सोमी।
0: सोमी, आप उसके बारे में जरा मुझे विस्तार से बताएंगे कुछ?
1: जी सोमी मेरी पत्नी की सहेली है। उसकी शादी शहर के जाने माने रईस शेष नारायण जी से हुई थी।
0: मिस्टर शेष नारायण की तो 1 साल पहले हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी ना?
1: जी हाँ, सोमी पहले भी हमारे यहाँ आती थी, तब सोनाली उससे हंस हंस कर बातें करती थी, मगर विधवा होने के बाद उसका आना सोनाली को पसंद नहीं। उसके आते ही वो उत्तेजित होकर अनाप शनाप बकने लगती है। वो समझती है हम दोनों के बीच कुछ चक्कर चल रहा है।
0: वो डरती हैं कि सोमी आपको उनसे छीन लेगी। भाई हो सकता है उसके डर की कोई बुनियाद भी हो। मिस्टर शैलेन, सोमी तो आपकी पत्नी की हमउम्र होगी?
1: जी हाँ।
0: और मिस्टर शेष नारायण लगभग 60 वर्ष के थे, दोनों की उम्र में काफी अंतर था, फिर वो शादी हुई कैसे?
1: मुझे सोनाली नहीं बताया था, सोमी के माता पिता दहेज देने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए जब शेष नारायण जी का प्रस्ताव आया तो वो खुशी खुशी राजी हो गए।
0: और सोमी भी मान गई है? वेरी स्ट्रेंज। बाय द वे, शेष नारायण जी की तो वो दूसरी शादी थी ना?
1: जी हाँ।
0: और पहली पत्नी से कोई संतान भी नहीं है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए सोमी ही पूरी संपत्ति की एकमात्र स्वामिनी है। वाह, एक जवान धनी विधवा, पिक्चर साफ हो रही है। आप सोनाली जी को तलाक देकर सोमी से शादी करेंगे, यही योजना है ना?
1: जी, ऐसी तो कोई बात नहीं मिस्टर भंडारी।
0: दाई से पेट नहीं छुपता मिस्टर शैलेन। एनीवे, दैट्स योर प्रॉब्लम, नॉट माइन। मेरी प्रॉब्लम तो कुछ दूसरी ही है।
1: जी, वो क्या है?
0: भी आप कहते हैं कि आपकी पत्नी पागल है और पागलपन को ही आप तलाक का आधार बनाना चाहते हैं।
1: जी हाँ।
0: लेकिन मिस्टर शैलेन, आपके या मेरे कहने से कोर्ट ये नहीं मान लेगी कि वो सचमुच पागल है, इसके लिए मेडिकल रिपोर्ट जरूरी है। आपने सोनाली जी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाया?
1: जी अभी तक तो नहीं।
0: तो फौरन किसी अच्छे डॉक्टर से उनकी जांच कराइए। अगर डॉक्टर समझेगा कि वास्तव में आपकी पत्नी पागल हैं या उन पर कभी कभी पागलपन के दौरे पड़ते हैं, तो हो सकता है वो उन्हें किसी मानसिक चिकित्सालय में भर्ती करने की सिफारिश करें। आपको उसके लिए भी

0: तैयार रहना चाहिए।
1: लेकिन वकील साहब, इस सब में तो बहुत वक्त लग जाएगा।
0: और आपके पास वक्त है नहीं हा? आपका उतावलापन मैं समझ रहा हूं, मगर मेरी राय है कि ऐसे मामलों में उतावलापन ठीक नहीं है। हम सोनाली जी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। एवरीबडी मस्ट बी गिवन अ फेयर चांस, यही मेरा सिद्धांत है। अच्छा, अब आप घर जाएं। और हाँ, डॉक्टर बंसल मेरे अच्छे परिचित हैं, अगर आप चाहें तो उनकी सेवा ले सकते हैं। मैं उन्हें फोन पर कह दूंगा।
1: धन्यवाद मिस्टर भंडारी, मैं आज ही डॉक्टर बंसल को ले जाऊंगा। सोनाली, देखो मैं अपने साथ शहर के बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर बंसल को ले आया हूँ तुम्हारी जांच कराने के लिए।
2: शैलेंद्र, मुझे न बुखार है, न सरदर्द, न खांसी है, न जुकाम, फिर डॉक्टर क्यों लाए? क्या जांच कराओगे मेरी?
3: सोनाली जी, हर रोगी यही समझता है कि उसे कोई रोग नहीं।
2: और हर डॉक्टर ये समझता है कि संसार का प्रत्येक प्राणी रोगी है, क्यों?
3: वेरी विटी, वेरी विटी सोनाली जी। अच्छा चलिए, डॉक्टर न सही, एक सामान्य अतिथि समझकर ही चाय कॉफी पिला दीजिए।
2: ओह, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई थी, अभी लाती हूँ।
3: मिस्टर शैलेंद्र, मुझे तो सोनाली जी एकदम नॉर्मल लगती हैं।
1: आप किसी बहाने सोमी जी का नाम तो लीजिए, तब देखिए क्या होता है।
3: आई सी, सोमी फोबिया, दहशत, डर। ठीक है, मैं देखूंगा उनका रिएक्शन।
2: लीजिए, चाय नाश्ता हाजिर है।
3: अरे वाह वाह वाह, गाजर का हलवा और मठरी, मेरी मनपसंद चीजें। बहुत बहुत धन्यवाद सोनाल जी। भाई मजा आ गया। और चाय हर सिप में नया स्वाद, ऐसी चाय तो सोमी जी के यहाँ भी नहीं मिलती।
2: उस चुड़ैल का नाम न लो मेरे सामने। समझ गई, समझ गई मैं, उसी ने भेजा है तुम्हें। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ।
1: ये क्या बकवासी है सोनाली, सोनाली
3: प्लीज शैलेंद्र जी, आप खामोश रहिए। रिलैक्स रिलैक्स सोनाली जी, रिलैक्स। मुझे किसी ने नहीं भेजा है।
2: मैं जानती हूँ, सब जानती हूँ। वो चुड़ैल मेरे पति को मुझसे छीनना चाहती है। ये दोनों मिलकर मुझे पागल साबित करना चाहते हैं। तुम भी इसके षड्यंत्र में शामिल हो डॉक्टर। चले जाओ, वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। गेट आउट फ्रॉम हियर।
1: सोनाली, ये क्या पागलपन है?
2: ये पागलपन नहीं है, पागल मैं नहीं, तुम हो। उस कमीनी सोमी के रूप जाल में फंसकर तुम मेरा जीवन बर्बाद करना चाहते हो, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कान खोल कर सुन लो, मैं सोमी की बच्ची का खून कर दूंगी, उसका गला घोट दूंगी मैं।
3: लेकिन वो तो आपकी सहेली है सोनाली जी।
2: सहेली थी कभी, लेकिन अब वो मेरी दुश्मन है, दुश्मन।
1: सुन रहे हैं डॉक्टर साहब इनकी बातें।
3: मिस्टर शैलेंद्र, मेरी राय है आप दूसरे कमरे में चले जाएं। मैं सोनाली जी से एकांत में बात करना चाहता हूँ। प्लीज लीव अस अलोन।
1: ठीक है, मगर डॉक्टर साहब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि औरत पागल है।
2: मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ।
3: शांत रहें सोनाली जी, शांत रहें।
2: क्या आप समझते हैं कि मैं पागल हूँ?
3: नहीं, मैं जानता हूँ आप पागल नहीं हैं। देखिए सोनाली जी, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, मुझे अपना हितैषी समझें, वेल विशर।
2: आप उस डायन सोमी के यहाँ भी जाते हैं, फिर मेरे हितैषी कैसे हो गए? मेरे पास क्या है आपको देने के लिए? उसके पास धन की कमी नहीं, वो धन से सब कुछ खरीद सकती है, सब कुछ। मेरे पति को भी खरीद लिया है उसने।
3: सोनाली जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने सोमी जी के यहाँ की चाय वाली बात सिर्फ आपकी प्रतिक्रिया जानने के लिए ही की थी। मैं उनके यहाँ न कभी गया हूँ और न उनका डॉक्टर हूँ।
2: ओह, आई एम सॉरी डॉक्टर, मैंने आपको भला बुरा कहा। डॉक्टर, उसका नाम सुनते ही मेरा खून खौल जाता है, बहुत दर्द दिया है उसने मुझे।
3: मैं आपको दर्द समझता हूँ। डॉक्टर होने के नाते मैं समस्या की तह तक पहुँचने के लिए आपकी मदद चाहता हूँ। प्लीज़।

0: मुझ पर विश्वास करें, मैं आपका भला चाहता हूँ।
1: डॉक्टर, आपको मेरे पति लाए हैं ना यहाँ मुझे पागल सिद्ध करने के लिए?
0: आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। उनका कहना है कि आप पागल हैं और इसी आधार पर वो आपसे संबंध विच्छेद करना चाहते हैं। मिस्टर भंडारी ने मुझे फोन पर बताया था।
1: ताकि उस हत्यारिन से शादी कर सके?
0: आप सोमी जी को हत्यारिन क्यों कह रही हैं?
1: मुझे पूरा यकीन है कि उसने अपने पति की हत्या की है ताकि वो पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन बन सके। आप उसे नहीं जानते डॉक्टर, वो बहुत कमीनी और गिरी हुई औरत है। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो प्यार का ढोंग रचाती थी शेखर के साथ, मगर शादी की अधेड़ उम्र के धनी व्यक्ति से।
0: वो आपकी सहेली थी, आपने समझाया नहीं उसे?
1: समझाया था डॉक्टर। मैं फिर कहती हूँ सोमी, तेरा फैसला गलत है। शेखर तुझे कार बंगला ना दे सके, लेकिन सच्चा प्यार
2: प्यार तो... से पेट नहीं भरता माय डियर सोनाली, इसीलिए धनी सेठ से शादी कर रही हूँ। जानती है, मेरे माता पिता की गरीबी दूर हो जाएगी, छोटी बहनों की शादी धूमधाम से हो सकेगी, भाई को काम मिलेगा।
1: अच्छा, तो तू अपने परिवार के सुख के लिए अपनी खुशी का गला घोट रही है?
2: पागल हुई है तू। पैसे से हर खुशी खरीदी जा सकती है, और तो और प्यार भी। पैसा होगा तो प्यार करने वालों की कमी नहीं रहेगी।
1: वो प्यार नहीं, वासना का खेल होगा। सोमी, जरा सोच कर देख, तुझसे दूनी उम्र है उस सेठ की, तू सुखी रह पाएगी उसके साथ?
2: क्यों नहीं।
1: सुना है वो सेठ बीमार भी रहता है।
2: ये तो और भी अच्छा है, जल्दी मुक्ति मिल जाएगी, फिर मैं आजाद हो जाऊंगी, सारे बंधनों से आजाद, एक संपन्न युवा विधवा। बड़ा मजा आएगा, अ रिच यंग विडो।
1: ऐसे विचार थे डॉक्टर सोमी के।
0: और इसीलिए आप समझती हैं कि सोमी जी ने अपने पति की हत्या की है?
1: उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। शी इज वेरी कोल्ड एंड एम्बिशियस। भाग्य की बात है, मेरी शादी भी 2 महीने बाद ही इसी शहर में शैलेंद्र के साथ हो गई। सोमी अक्सर हमारे यहाँ आती रहती थी। हम लोग खूब बातें किया करते थे, हंसी मजाक करते थे। और सुना सोमी, तेरे वो यानी मेरे जीजा जी कैसे हैं?
2: मुझ जैसे शोपीस को पाकर बहुत खुश हैं। बड़े गर्व से मुझे अपने मिलने वालों को दिखाते हैं।
1: और शोपीस बनकर खुश है तू?
2: बहुत खुश हूँ। आई एम द मोनार्क ऑफ ऑल आई सर्वे। मैं अपने साम्राज्य की महारानी हूँ। कोई कमी नहीं, कोई अभाव नहीं।
1: अच्छा।
2: तो अपनी सुना, हमारे जीजा जी तुझे खूब प्यार करते हैं ना?
1: इन्हीं से क्यों नहीं पूछती?
2: मेरे प्यारे जीजा जी, आप हमारी सोनाली को प्यार करते हैं ना?
3: ये भी कोई पूछने की बात है भाई?
2: भाई, हम तो तब विश्वास करें जब हमें भी अपने प्यार का नमूना दिखाएं। आखिर साली भी तो आधी घरवाली होती है।
3: वही प्यार का नमूना तो हम अभी पेश कर दें, लेकिन सोमी जी हमें डर है कहीं।
2: डरने की कोई बात नहीं, सोनाली को बुरा नहीं लगेगा। क्यों सोनाली डियर, ठीक कह रही हूँ ना? आखिर जीजा जी पर कुछ हक तो हमारा भी है।
1: बहुत दुष्ट है तू।
3: हमें सोनाली का डर नहीं है।
2: फिर किसका डर है?
3: शेष नारायण जी का। अरे वैसे ही कमजोर दिल है बेचारे का, कहीं हमारे प्यार की खबर लग गई तो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
1: ये क्या बेकार की बातें लेकर बैठ गए तुम लोग।
2: अरे डरती क्यों है, मैं जीजा जी को तुझसे छीनूंगी नहीं। तेरे ये तो तुझे ही मुबारक, वैसे इन्हें बांध कर रखा कर।

0: क्यों क्यों क्यों क्यों?
1: बड़े दिल फेंक हैं, किसी और को दिल दे बैठे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। हाँ।
0: देखो भाई सोमी, मेरे पास सिर्फ एक अदद दिल है, आधे पर बीवी और आधे पर साले का कब्जा हो चुका
1: अच्छा?
0: है, अब और किसी की गुंजाइश ही कहाँ बचती है।
2: इसी तरह हंसी खुशी के साथ दिन गुजर रहे थे। फिर सोमी के पति की मृत्यु हो गई और वो अक्सर हमारे यहाँ आने लगी। वो पहले की ही तरह शैलेंद्र से हंसी मजाक करती, दिन पे कई बार उसके फोन आते। मुझे लगा शैलेंद्र मुझसे दूर होते जा रहे हैं और सोमी उनके पास आती जा रही है। सोमी का आना मुझे खटकने लगा और एक दिन जब वो आई तो सोमी, तुम्हारा इस तरह यहाँ आना, इनसे हंसना बोलना, फोन पर घंटों बातें करना मुझे पसंद नहीं।
3: इसमें क्या बुराई है सोनाली? अगर अपनों के पास नहीं जाऊंगी तो फिर कहाँ जाऊं? अब तुम लोगों का ही तो सहारा है।
2: लेकिन लोकलाज, कभी सोचा है लोग क्या कहेंगे?
0: सोनाली, हमें लोगों की चिंता नहीं करनी चाहिए। भाई सोमी यहाँ आती है, उसका मन बदल जाता है।
2: मन बदलता नहीं, बहल जाता है। मन पर नियंत्रण नहीं है तो किसी से दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? जवान है, सुंदर है, धनी है।
3: हाँ, मैं जवान हूँ, सुंदर हूँ, धनी हूँ, अगर चाहूँ तो नौजवानों की लाइन लग सकती है।
2: तेरे जी में जो आए सो कर, मगर भगवान के लिए हमारे घर में आग न लगा।
0: पागल हो गई हो सोनाली, बिना सोचे समझे क्या भगती जा रही हो?
3: तू समझती है मैं तेरी सौत बनूंगी?
2: हाँ, तुझे मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मगर मैं तेरा इरादा पूरा नहीं होने दूंगी। चली जा यहाँ से, फिर कभी यहाँ आई तो अच्छा नहीं होगा।
0: ये घर तुम्हारा नहीं, मेरा है। तुम कौन होती हो सोमी को यहाँ से निकालने वाली?
3: प्लीज जीजा जी, आप शांत रहें। फुआ सोनाली, तू तो ये भी नहीं जानती कि अगर मुझे इनसे मिलना ही होगा तो यहाँ आना जरूरी नहीं है। मैं इन्हें अपनी कोठी पर भी बुला सकती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो तुझे पता भी ना चले और मैं इन्हें तुझसे छीन लूँ। मगर यकीन कर, मैं ऐसा चाहूंगी नहीं। चलिए जीजा जी, मुझे कार तक छोड़ दीजिए।
0: चलो।
2: उसके बाद भी सोमी के फोन आते रहे डॉक्टर। मुझे पूरा विश्वास हो गया कि दोनों के बीच कोई खिचड़ी पक रही है। मुझे चिढ़ाने के लिए शैलेंद्र बार बार सोमी का नाम लेते हैं और मैं उसका नाम सुनते ही आपा खो बैठती हूँ। उन दोनों की योजना है मुझे पागल सिद्ध करने की। डॉक्टर, मेरा यकीन कीजिए, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। मैं शैलेंद्र को खोना नहीं चाहती। उनके खोने का डर ही मुझे कपा डालता है। मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ डॉक्टर, बहुत प्यार करती हूँ। उन्हें बांधे रखने के लिए मुझे ये जंग लड़नी पड़ रही है। इस जंग में मैं एकदम अकेली हूँ डॉक्टर, एकदम अकेली।
4: नहीं नहीं, आप तो बहादुर महिला है, अपने अधिकार के लिए लड़ रही है। विश्वास रखें मिस्टर भंडारी और हम आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अच्छा, आप जाकर आराम करें।
2: धन्यवाद डॉक्टर, आपकी सहानुभूति और सहायता के लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ मैं।
5: अंदर आ जाए मिस्टर सरेन।
0: कहिए डॉक्टर बंसल, आपकी क्या राय है?
4: मिस्टर शैलेंद्र, आपकी पत्नी पागल नहीं है।
0: क्या?
4: उन्हें डर है कि आप उन्हें छोड़कर सोमी जी से शादी करने की योजना बना रहे हैं।

0: यही डर उनके मानसिक तनाव का कारण है।
1: सोमी और
0: अगर
1: हमारे बीच
0: कुछ नहीं है तो फिर आप सोमी जी से दूर क्यों नहीं रहते? आपके मन में मैं आसानी से झांक सकता हूं, आप मुझसे अपनी भावनाएं छिपा नहीं सकते। आई नो आप सोमी जी को प्यार करने लगे हैं।
1: ये सच है डॉक्टर, मैं सोनाली को तलाक देकर सोमी के साथ शादी करना चाहता हूं।

0: क्या मिस्टर शैलेंद्र सोनाली को तलाक देकर मुझसे शादी करना चाहते हैं?
1: जी हाँ, उन्होंने खुद मुझसे कहा है।
0: लेकिन डॉक्टर बंसल,
2: तलाक के लिए वो मेरे पास भी आए थे।
0: मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है मिस्टर भंडारी, मिस्टर शैलेंद्र ने ये कैसे समझ लिया कि मैं उनसे शादी कर लूंगी?
1: ये आप जाने। स्वामी जी, सोनाली को पूरा विश्वास है कि आप उनके पति को उनसे छीनना चाहती हैं, इसीलिए वो आपसे छुड़ती हैं। आपके चरित्र के बारे में उनकी धारणा कोई खास अच्छी नहीं है। उनका कहना है कि आपने शेखर के सच्चे प्यार को ठुकरा कर सिर्फ शान और शौकत और ऐशो आराम के लिए शेष नारायण जी से शादी की।
0: ऐसा मैंने ही उससे कहा था। मैं अपना दर्द, अपनी पीड़ा, अपनी विवशता उससे छिपाना चाहती थी। सच्चाई ये है कि मैंने अपने परिवार के लिए अपने प्यार, अपनी खुशी, अपनी आशाओं का गला घोटा। विश्वास कीजिए, मैं सजावट की वस्तु बनकर इस कोठी में आई थी। पत्नी तो कभी बन ही नहीं पाई। हर पल, हर क्षण मैं दिल दिल कर खुलती रही हूं। जानते हैं आप, मेरे पति चाहते थे कि मैं उनके उत्तराधिकारी को जन्म दूं, जबकि वो स्वयं पिता बनने की क्षमता नहीं रखते थे। उन्हें तो बस किसी भी तरह संतान चाहिए थी। मैंने सदा इसका विरोध किया। बहुत मानसिक और शारीरिक यातनाएं झेली हैं मैंने, मगर मैं सोनाली को अपनी व्यथा की कथा सुनाकर दुखी नहीं करना चाहती थी। मैंने सदा खुश होने का अभिनय किया है। सोनाली ने मुझे गलत समझा, इसमें उसका कोई दोष नहीं है।
2: दोष आपका भी नहीं है। वास्तव में ये मनुष्य के मन की विकृतियां ही हैं, जो तरह तरह के आकार ग्रहण करके उजागर होती हैं।
1: अब देखिए ना, आपके सहज व्यवहार को मिस्टर शैलेंद्र ने अपनी आकांक्षा के अनुरूप ढालकर रंगीन सपने देखने शुरू कर दिए।
0: मैं उनका बहुत आदर करती थी डॉक्टर बंसल, मेरे मुक्त व्यवहार को उन्होंने गलत समझा। मुझे उनसे ऐसी आशा नहीं थी।
2: भाई, उनकी जगह कोई भी पुरुष होता तो यही करता।
0: भूल मेरी थी, मुझे ही उसका परिष्कार करना है। चलिए मेरे साथ, मैं सोनाली के सामने सारी स्थिति स्पष्ट करके उससे क्षमा मांगूंगी।

0: फिर आ गई सोमी, तुमने मुझे गलत समझा सुनाली, मुझे इसका दुख नहीं, क्योंकि तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो मेरी भी यही दशा होती। अफसोस तो ये है कि जीजा जी ने मेरे हंसी मजाक का गलत अर्थ लगाया। विश्वास करो सोनाली, मैं तुम लोगों को अपना समझ कर यहाँ आती थी। पति की मृत्यु के बाद मैंने जो यंत्रणा झेली है वो मैं जानती हूँ। चारों ओर गिद्धों से घिरी एक बेबस बेसहारा विधवा यहाँ आकर कुछ शांति कुछ शक्ति पाती थी।
1: लेकिन आपकी शांति की उस खोज ने तूफान खड़ा कर दिया, जिसने सोनाली के घर की नींव तक हिला के रख दी।
0: मैं आज उस तूफान को हमेशा के लिए शांत कर दूंगी। जीजा जी, मैं आपका बहुत

0: सम्मान करती थी। आपके व्यवहार ने मेरे मन को बहुत ठेस पहुंचाई है।
1: मैं बहुत शर्मिंदा हूं सोमी जी, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा।
0: सोनाली, एक वर्ष में ही मैं समझ गई हूँ कि एक युवा विधवा का मान सम्मान के साथ जीना बहुत कठिन है। यदि वो धनी है तो समस्याओं के भंवर जाल उसे और भी त्रस्त कर देते हैं। उसके लिए किसी पुरुष का सहारा जरूरी है, इसीलिए मैंने दूसरी शादी करने का फैसला किया है। पूछोगी नहीं सोनाली कि मैं किससे शादी कर रही हूँ? खैर, मैं खुद ही बताती हूँ। मेरे भावी पति का नाम है शेखर।
2: शेखर? सच?
0: हम अगले महीने ही शादी कर रहे हैं। लोग क्या कहेंगे इसकी हमें चिंता नहीं। सोनाली, हम दोनों अलग अलग स्तर पर अपनी अपनी जंग लड़ रही थीं, और आज हम दोनों ही जीत गई हैं।

अभी आप सुन रहे थे नाटक अपनी अपनी जंग, लेखक थे विनोद रस्तोगी, भाग लेने वाले कलाकार थे विपिन टंडन, सैयद इकबाल अहमद, अभिलाष नारायण, शगुन लाल और तेजिंदर वाष्णे। प्रस्तुति थी तेजिंदर वाष्णे की। अब ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में हम आज आपको सुनवाने जा रहे हैं श्री ऋषि मिश्र का ख्याल गायन राग है जोग। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं जोग कैसे धारण करूं। द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध हैं, बोल हैं स्वरन के साधे। तबले पर संगत की है श्री आरुष मिश्र ने और हारमोनियम पर श्री अनुराग मिश्र ने।

Nini sasa baba nini mama papa gaga mama sasa gaga nini sasa.

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्री ऋषि मिश्र का ख्याल गायन, राग था जोग। तबले पर संगत की थी श्री आरुष मिश्र ने और हारमोनियम पर श्री अनुराग मिश्र ने। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। 11 बजने को हैं, थोड़ी देर में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल CJP के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। राष्ट्रीय

0: परीक्षा एजेंसी एनटीए के महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। एनटीए ने एक बयान में कहा कि ये उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। चीन के हांगझोउ में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत के संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने कुल 243.4 का स्कोर बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया और स्वर्ण पदक जीतने से सिर्फ 0.2 पॉइंट्स से चूक गई। चीन की याओ क्यांग सुन 243.6 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर रही। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The Union Cabinet today approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. In a video message yesterday, Prime Minister Modi had announced about bringing a bill with provisions of strong action in cases of paper leaks. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, the National Testing Agency has terminated 47 officials from service. According to sources, legal and criminal action will also be taken against some of these officials. This is part of a complete overhaul of NTA that has been in controversy over paper leaks. The National Testing Agency NTA has issued advertisements for a set of senior professional appointments at the level of general manager. It has also opened the engagement of 16 young professionals through the Pratibha Setu portal of the UPSC. NTA in a statement said that these measures represent the first concrete step in the institutional rebuild of the agency that is being implemented in line with the recommendations of the High-Level Committee of Experts chaired by Professor K. Radhakrishnan. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh today met the CJP delegation in New Delhi. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said they gave a patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examination system. Mr. Nadda said that the CJP had put forth three main demands and also suggested some reforms to curb examination paper leak. Mr. Nadda added that the government will hold another round of discussion with the delegation tomorrow.
2: The meeting lasted for nearly 2 hours. I, along with Union Minister Jitendra Singh, participated in the discussion. The discussions were held in a cordial atmosphere and various issues were discussed from every perspective. Their proposal was also discussed.
1: Spokesperson of CJP, Ashutosh Ranga, who was part of the CJP delegation, claimed that the government has in principle agreed to two of their demands. The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the third and fourth rail line of Bellary-Guntakal section in Karnataka and Andhra Pradesh with a total cost of 1,264 crore rupees. It will increase the existing network of Indian Railways by about 46 kilometers. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said it will improve connectivity between Andhra Pradesh and Karnataka. He also informed about Cabinet's approval for Bharat Audyogik Vikas Yojana Rasayan or Bhavya Rasayan scheme for establishing three dedicated